श्रावण में गंगा जल से कांवर भरकर शिवधाम जाकर शिवालय की परिक्रमा करके जो भी भक्त शिवजी का गंगा जल से अभिषेक करता है और विधि विधान से पूजा करता है, महादेव उसके संपूर्ण कष्ट हर लेते हैं।

सुप्रभात, हम आकाशवाणी जोधपुर के FM सनसिटी चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की चतुर्थ तिथि। तदनुसार तारीख 25 जून सन 2026। इस वक्त सवेरे के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

हम FM Sun City से बोल रहे हैं, FM बैंड 102.1 MHz पर। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमरीका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम FM सन सिटी से बोल रहे हैं। FM बैंड 102.1 MHz पर सवेरे के 6:05 हुए हैं। अब से लेकर सवेरे 8 बजे तक आप सुनेंगे हमारे विविध भारती केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रम।

वंदन वार। सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है कि किसी भी व्यक्ति के विचार ही सब कुछ हैं। वो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। आइए सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

ईश्वर प्रेम का मार्ग नहीं बल्कि संपूर्ण प्रेम ही है। जो मनुष्य ईश्वर के प्रेम में लिप्त होता है उसे ये संसार अपना ही रूप लगता है। समस्त जीव जंतु सहचर प्रतीत होते हैं और वो स्वयं ब्रह्मांड की विशाल सत्ता के सामने नतमस्तक होता है।

पत्थर भी सुगंधित हो जाता है। ये सगुण भक्ति रूप है। तो उस पानी की कल्पना कीजिए जो चंदन और पत्थर के घर्षण के समय उपस्थित होकर चंदन ही बन जाता है। हमारी भक्ति उस पानी के समान ही होनी चाहिए।

सुबह 6:35 से श्री रामचरितमानस सुन सकते हैं। आज सुनिए 230वीं कड़ी। 6:45 से संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वायलिन वादक SL कंडारा। इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी सुनिएगा। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। 7:30 से हम है राही प्यार के और 8 से समाचार प्रभात। से सुन सकते हैं कार्यक्रम त्रिवेणी और 8:30 से नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है संगीतकार मदन मोहन पर। सुन सकते हैं सुबह 9:30 से। सुबह 10 से पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान कार्यक्रम में सुनिए चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत। संपादन काजल भदरगे का, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। 11 से रंग तरंग और 12 से हिंदी में समाचार।

सुनीरा सफर कार्यक्रम 1 बजे से 2 बजे से सुनिए त्रिवेणी। 2:15 से दोपहर समाचार, 2:30 से सदाबहार नगमे कार्यक्रम और 3 बजे से सुनिए सखी सहेली। 4 बजे होंगी आपकी फोन इन फरमाइशें पूरी हेलो फरमाइश कार्यक्रम के साथ। शाम 5 बजे छाया गीत का पुनः प्रसारण, तराने नए पुराने कार्यक्रम 5:30 से और 6 बजे से समाचार। छह बजकर 5 मिनट से जारी रहेगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। शाम 6:30 से झरोखा के अंतर्गत आज के शीश और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण सुनिएगा। 6:35 से संध्या रंजन और 6:45 पर सुन सकते हैं संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार 8वीं कड़ी। कलाकार है वायलिन वादक SL कंडारा। शाम 7 बजे से जयमाला, 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए कार्यक्रम में निर्देशक और फिल्मकार सुभाष जैन से नमदाकिनी जोशी की बातचीत की पहली कड़ी सुनिएगा, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। लो कर लो दर्शन, ये झलकी सुन सकते हैं रात 8 बजे से हवा महल में, लेखन आतिश का, निर्देशन हर्षवर्धन गवई का।

रात 8:15 से चित्रलोक, 8:45 से समाचार संध्या, 9 बजे से सुनेगा कार्यक्रम आपके लिए, 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम सुन सकते हैं, केंद्रित है संगीतकार मदन मोहन पर। रात 10 बजे से छाया गीत, 10:30 से ढलती जाए रात और 11 बजे से रंग तरंग कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। ये थे आज के मुख्य कार्यक्रम जिनका विवरण आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, श्री रामचरित मानस। सुनिए 230वीं कड़ी।

श्री राम वन से वापस न चले जाएं। अतः इंद्र सहित अन्य देवगण ने एक बार फिर सरस्वती से प्रार्थना की कि वे अपनी माया से भरत की मति फेर दें, ताकि श्री राम को लौटा ले जाने में भरत सफल न हो सके। किंतु सरस्वती जानती थी कि भरत की मति सुमेरु पर्वत के समान अटल है, और ये भी कि ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की प्रबल माया के लिए भी ये संभव नहीं कि वो भरत की मति फेर सकें। फेरना तो दूर, वो उनकी ओर देख भी नहीं सकेंगी। स्वार्थवश सब देवताओं ने प्रबल माया जाल रचकर चारों ओर भ्रम, अप्रीति और भय फैला दिया। देवराज इंद्र को ये आशंका बनी रही कि कार्य का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। उधर मुनिवर वशिष्ठ, राजा जनक तथा भरत श्री राम के समक्ष उपस्थित हुए। कुलगुरु ने भी इससे पहले जनक और फिर भरत का ये प्रस्ताव निवेदित किया कि स्वयं भरत श्री राम के साथ वन में रहें और लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं। मुनिवर ने निर्णय श्री राम पर छोड़ दिया।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी।
1: संगीत सरिता के सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आजकल आप सुन रहे हैं श्रृंखला वायोलिन का विहंगम संसार। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध वायोलिन वादक पंडित एसएल कंडारा जी। आपको तबले पर संगति कर रहे हैं श्री संतोष मिश्र। पंडित जी, प्रातः समय गाए बजाए जाने वाले रागों में एक मुख्य राग है अहीर भैरव
2: जी।
1: आज इस राग की चर्चा करते हैं।
2: बिल्कुल।
1: अहीर भैरव राग का हमें परिचय दीजिए, कैसा इसका चलन है, इसके आरोह अवरोह के बारे में कृपया बताइए।
2: इस राग में देखिए, ऋखव सा तो होता ही सब राग में। सा के बाद ऋखव कोमल है, गंधार शुद्ध है, मध्यम शुद्ध है, पंचम तो शुद्ध होता ही है।
1: हाँ।
2: वो तो शीर्ष स्वर है सा और पा। फिर धैवत भी शुद्ध है, निखात उसकी कोमल है। ऋखव और निखात दोनों कोमल है। सारे गामा पाधा निशा
1: जी,
2: मैं आपको इस पे करके बताता हूँ।

0: इस राग की खासियत यह है कि भैरव के प्रकारों में ये बहुत लोकप्रिय राग है।
1: जी जी।
0: और इस पे फिल्म वालों ने भी काफी काम किया है, कुछ अच्छे गीत बनाए हैं, और क्लासिकल म्यूजिक में भी ये बहुत लोकप्रिय राग रहा है। तो पहले मैं आपको इसमें एक बंदिश सुनाता हूँ, उस्ताद आमिर खान साहब की बंदिश है वो।

0: क्या बात है
1: पंडित जी। अहीर भैरव में ये खूबसूरत बंदी सुनने के बाद अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं मन्ना दा की आवाज में मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का गाना। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई,
2: वो ऑल टाइम ग्रेट गीत है वो।
1: जी जी।
2: और उसमें जिस तरह से पंडित रामनारायण के जो सारंगी के पीसेज हैं,
1: जी हाँ,
2: वो बहुत सुनने काबिल है।
1: बजाइए, सुनते हैं
2: जी।

0: मन्ना डे के स्वर में अहीर भैरव राग पर आधारित मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया श्रोताओं। ये रचना शैलेंद्र की, संगीतकार सचिन देव बर्मन। और इसी के साथ वायोलिन का विहंगम संसार श्रृंखला की ये कड़ी अब यहीं समाप्त हो रही है। अगली कड़ी में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने, तबला संगति संतोष मिश्रा की।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत बस कुछ ही पलों के बाद।
3: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

विविध भारती पर कार्यक्रम भूले बिसर गीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आज है संगीतकार मदन मोहन के जन्म की तारीख और उन्हें याद करते हुए उन्हीं के संगीतबद्ध गीत इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं।

0: मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे। भाई भाई फिल्म के इस गीत में गीता दत्त की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैला

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
1: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

अधूश फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज, राजा मेहंदी अली खां के बोल और मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत विविध भारती पर सुन रहे हैं। कार्यक्रम में वक्त एक अंतराल का।

0: चाचा जिंदाबाद फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और लक्ष्मी शंकर की आवाजों में मस्ताना फिल्म से गीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: छोटे बाबू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में, कैफ इरफानी के बोल, मदन मोहन का संगीत।
1: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: अब आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे मौसम फिल्म से एक गीत, मदन मोहन का संगीत, गुलजार के बोल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं हम है राही प्यार के विविध भारती पर।

0: मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे नीला आकाश फिल्म से। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, राजा मेहंदी अली खान के बोल।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

0: क्या कहा?
1: ठीक कहा।
0: ठीक कहा?
1: हाँ हाँ ठीक कहा।
0: चुप मोटे।
1: बको मत। यू

0: छाया।
1: हाँ जी।
0: पास बैठूं?
1: ना जी।
0: अरे मान जाओ ना।
1: नहीं।
0: अरे ये कहाँ चली, जरा ठहरो ना।
1: बिल्कुल नहीं।
0: तो फिर चली जा मोटी।
1: पागल, तुम सुधरोगे नहीं। क्यों करते हो बेशरम।

किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की आवाजों में आफत फिल्म का गीत आपने सुना, माया गोविंद की बोल, नितिन मंगेशकर का संकेत। कार्यक्रम हम हेराही प्यार की आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। कार्यक्रम में वक्त एक अंतराल का।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: आराधना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा होगी।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

کہ ہم بے قدر بے وفا ہی صحیح، بڑے شوق سے جائیے

प्रेम कहानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। हम है राही प्यार के कार्यक्रम में अब सुनते हैं जीने की राह फिल्म से ये गीत, जिसे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने गाया। आनंद बख्शी के बोल हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।

घट के पीछे जा बैठी, चुपके मेरी

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आशा मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली और

0: औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए एआई के उपयोग पर बल दिया तथा एनसीसी कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से ई जीरो एफआईआर व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नास।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
3: राजूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति

0: दी जाएगी। सामान कुलिपुलुई दर्जे तक पहुंचने के लिए नाभि डांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी की गई है।
1: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहां पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेकर पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP आर्मी व्यापारी और प्रशासन की, उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभि डांग के समीप भी एक पड़ाव चयनित किया गया है।
0: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
2: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
4: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
5: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों चार दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को एक गोल और एक असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ

0: खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के दो गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग। शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति। देश बंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल। पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को 1,15,00,000 डॉलर चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे
4: हैं एफएम सनसिटी और एफएम सनसिटी एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है। सवेरे के 8:15 हो चुके हैं। आइए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

तनु वेड्स मनु, इस फिल्म से आपने सुना पूर्णचंद वडाली और प्यारे लाल वडाली की आवाज में कृष्णा का लिखा हुआ, ये माफ कीजिए, कृष्णा की धुन थी और राजशेखर का लिखा हुआ ये गीत अभी आपने सुना। और अब विक्की डॉनर फिल्म से हम आपको सुना रहे हैं आयुष्मान खुराना की आवाज में ये गीत। आयुष्मान खुराना और रोचक कोहली का लिखा हुआ है, रोचक कोहली की।

वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, इस फिल्म से इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत को यहीं पर विराम देते हैं। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है। सवेरे के 8:30 हुए हैं। हमारा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन कार्यक्रम नमस्कार हम हमारे प्राथमिक चैनल से रिले करेंगे।

0: जी दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र और मैं हूं आपके आज के होस्ट मनीषा जोशी बोहरा और मेरे साथ हैं
1: हेमलता।
0: और इसके साथ ही दोस्तों, समय हो गया है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार का। प्रोग्राम वही जिसमें हम आपको रूबरू करवाते हैं कि आज के दिन क्या क्या खास हुआ। और इसके साथ ही आपको रखते हैं अपडेट, लेकिन दोस्तों उससे पहले हो जाए टीम का परिचय जो निर्बाध रूप से आप तक सभी प्रोग्राम्स पहुंचाती है। ट्रांसमीटर पर हमारा साथ दे रहे हैं नरेंद्र सिंह राठौड़। साथ ही ट्रांसमीटर पर हमारा साथ दे रहे हैं प्रकाश पवार। कंट्रोल रूम से हमारे साथ हैं प्रवीण कुमार। कंसोल पर हमारा साथ दे रही हैं सोनिया देवड़ा। और एफएम से हमारे साथ हैं नेमी। दोस्तों, कार्यक्रम के सहयोग एवं प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश लामरोड़।

सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन। जिंदगी कभी मुश्किल कभी आसान होती है, कभी ये उफ तो कभी वाह होती है। न भूलना कभी इसकी मुस्कुराहट को दोस्तों, क्योंकि इससे हर मुश्किल आसान होती है। तो मुस्कुराते हुए कीजिए अपने दिन की शुरुआत, और इस सकारात्मक संदेश के साथ और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ स्वागत करते हैं हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं का आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र पर।

बिल्कुल दोस्तों, अपने जीवन में हम जो भी उपलब्धियां पाते हैं, हम जो कुछ सफलताएं पाते हैं, उसमें दूसरों का भी बड़ा योगदान होता है। उनका भी त्याग हमारी इन उपलब्धियों में निहित होता है। वो कहते हैं ना, समंदर में भले ही पानी अपार है, मगर सच तो यही है कि वो नदियों का उधार है। तो हमें सदैव उन सभी का कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारे लिए और हमारी सफलता के लिए सदा हमारे साथ खड़े रहते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि सच जानिए, उन सब के बगैर हम अधूरे होते हैं।

0: जी दोस्तों नमस्कार, प्रोग्राम में हम बातें करते हैं कुछ मोटिवेशनल, कुछ जानकारियों से सजे इस प्रोग्राम में। तो आज की हमारी मोटिवेशनल जो कहानी है वो है बांस का पेड़। दोस्तों धैर्य और मेहनत की कहानी है। एक किसान अपने खेत में बांस का बीज बोता है, वो रोज उसे पानी देता है, खाद डालता है और साथ ही उसकी पूरी देखभाल करता है। एक साल बीत जाता है लेकिन जमीन से कुछ भी नहीं निकलता। किसान फिर भी मेहनत नहीं छोड़ता और अपनी मेहनत को जारी रखता है। दूसरा साल बीतता है, फिर भी कोई पौधा दिखाई नहीं देता है। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। तीसरा और चौथा साल भी बीत जाता है, फिर भी किसान हार नहीं मानता है और वो हर दिन उसी लगन से बीज की देखभाल करता रहता है। पांचवें साल अचानक जमीन से एक छोटा सा बांस का पौधा निकलता है और फिर कुछ ही महीनों में वो 80 से 90 फीट तक ऊंचा हो जाता है। लोग आश्चर्य से देखने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि किसान से वो पूछते हैं कि वो ये सब इतना जल्दी कैसे बढ़ गया, ये सब इतना जल्दी कैसे हो गया। तो किसान मुस्कुरा देता है कि ये 5 महीने नहीं बल्कि 5 सालों में बड़ा हुआ है। इन 5 सालों में इसकी जड़ें जमीन के अंदर मजबूत हो रही थी।
1: जी हाँ दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सीख ये मिलती है कि जीवन में भी कई बार हमारी मेहनत का परिणाम तुरंत हमें नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है लेकिन वास्तव में हमारी नींव मजबूत हो रही होती है। इसलिए कठिन समय में धैर्य रखें और मेहनत करते रहें। जब सफलता आएगी तो वह बांस के पेड़ की तरह तेजी से हमें दिखाई देगी। तो ये हमें सीख दे रही है कि धीरे धीरे की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह एक दिन बड़ी सफलता का आधार बनती है।

0: नाराज है जिंदगी ना नाराज है जिंदगी, बस जो है वो आज है जिंदगी। और आज की जिंदगी ये कह रही है कि इतनी उमस और गर्मी के बाद अब मन कर रहा है कि बागों में फिर से बहार आ जाए और हर मन गार्डन की तरह खिल जाए। और हमें ऐसा लग रहा है कि शायद आज हमारे मन की बात ईश्वर सुनने वाला है, मौसम बदलने वाला है। क्या लगता है?
1: बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आज शायद इंद्रदेव हम पर मेहरबान हो जाएं और हम इतने दिनों से जिस चीज़ के लिए तड़प रहे हैं वो हमें मिल जाए। बस बारिश का आज सुकून हो जाए और बस बारिश बरस जाए।
0: देखो बादल तो घिर आए हैं, देखते हैं कि अब ये जो है वो कहाँ तक पहुँचती है हमारी गुजारिश। फिलहाल हम सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: उफ़, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिक तब लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, फाल लिंक रोड, जोधपुर।
4: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
5: RGHS वचिरंजीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायक हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
6: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबरा कर अपनी आँखों की सर्जरी ना टाले, विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

इच्छाओं का समुद्र हमेशा अतृप्त ही रहता है। उसकी मांगे ज्यों ज्यों पूरी की जाती है त्यों त्यों वह और गर्जना करता है। इसलिए अपनी इच्छाओं को सीमित रखते हुए जीवन का असली मजा लेने में ही हमारी भलाई है। और दोस्तों हम भी यही कहेंगे कि आज जितना भी अगर बादल बरसता है तो बस बाहें फैलाकर मानसून का वेलकम कीजिए और जितना भी बरसता है उसमें मजे लीजिए।

आकाशवाणी का ये जोधपुर केंद्र है। इस समय सवेरे के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 जुलाई को पचपदरा रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ने की मांग को लेकर खंडीप में चल रहा किसानों का धरना सरकार के आश्वासन के बाद समाप्त। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की पांचों विद्युत कंपनियों में विभिन्न संवर्गों के कुल 2005 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी। और निर्जला एकादशी का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 जुलाई को पचपदरा रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही वे जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास और विभिन्न सरकारी नौकरियों में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री की इस प्रस्तावित यात्रा के संबंध में तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम से जुड़े सुरक्षा मानकों और अन्य सभी व्यवस्थाओं को समय रहते पूरा किया जाए। इस ऐतिहासिक आयोजन को विकास और रोजगार के उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें ग्राम पंचायत से लेकर जिला

0: स्तर तक आमजन और जनप्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से मुख्य समारोह से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कुशल क्रियान्वयन के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के उपयोग और पोर्टल पर आंकड़ों को समय पर अपडेट करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे परियोजनाओं में देरी और लागत को बढ़ने से रोका जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सक्रिय शासन और परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सड़क, बिजली, औद्योगिक कॉरिडोर और मेट्रो रेल क्षेत्रों से जुड़ी चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। चार राज्यों में फैली इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 30,000 करोड़ रुपए है। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-2026 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय पिछले 38 सालों से केंद्रीय विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता देश भर के 200 केंद्रीय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई थी। युवा संसद का उद्देश्य युवा पीढ़ी में आत्म अनुशासन, विभिन्न विचारों के प्रति सहिष्णुता, विचारों की सही अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक जीवन शैली के अन्य गुणों को विकसित करना है। करौली जिले के खंडीप में पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ने की मांग को लेकर चल रहा किसानों का धरना कल शाम समाप्त हो गया। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों से समझाइश की। डॉ. मीणा ने किसानों को आश्वस्त किया कि आगामी 6 दिनों के भीतर पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ दिया जाएगा। मंत्री के इस आश्वासन के बाद किसान नेताओं ने आंदोलन को फिलहाल स्थगित करते हुए धरना समाप्त करने की घोषणा की। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे करौली संवाददाता।
1: पांचना बांध के पानी को लेकर जारी गतिरोध समाप्त हो गया है। कैचमेंट क्षेत्र के 39 गांवों को प्राथमिकता से पानी देने की मांग को लेकर गुडला पांचना संघर्ष समिति बांध पर धरना दे रही थी, जबकि कमांड क्षेत्र में नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर किसान खंडीप में आंदोलनरत थे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के आश्वासन के बाद दोनों पक्षों ने अपना आंदोलन समाप्त और स्थगित कर दिया। अब प्रशासन किसानों के बीच समन्वय बनाकर स्थायी समाधान की दिशा में प्रयास करेगा। माकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने प्रदेश की 5 विद्युत कंपनियों में विभिन्न संवर्गों के कुल 2005 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ लेखाकार और कनिष्ठ सहायक सहित अन्य पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया अगले महीने से शुरू होगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि हाल ही में टेक्नीशियन थर्ड के 2163 पदों का अंतिम परिणाम जारी करने के तुरंत बाद ये निकाली गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है और ये भर्ती बजट घोषणा के अनुरूप की जा रही है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परीक्षा परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ये नतीजे जारी करेंगे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों से सीधा संवाद भी करेंगे। परीक्षा के नतीजे विद्यार्थी विभाग की वेबसाइट और अन्य निर्धारित माध्यमों से ऑनलाइन देख सकेंगे। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अनुपालना को लेकर जयपुर में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को

0: आगामी 31 मार्च तक राजस्थान को स्वच्छता के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर लाने के लक्ष्य के साथ काम करने के निर्देश दिए। श्री दिलावर ने आगामी 31 जुलाई तक 4000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक स्थापित करने और पुराने कचरे के ढेरों को पूरी तरह हटाने को कहा। साथ ही 31 अक्टूबर तक 1600 ग्राम पंचायतों में कचरे को अलग करने के लिए 4 स्तरीय व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसका मंत्री खुद निरीक्षण करेंगे। उन्होंने वर्ष 2029 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 100% स्वच्छता का लक्ष्य रखने और विलायती बबूल उन्मूलन अभियान के लिए सभी विभागों को मिलकर संयुक्त कार्य योजना बनाने को कहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सवाई माधोपुर पहुंचेंगे। वे कलेक्ट्रेट परिसर में नवनिर्मित अभियोजन भवन के लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे। समारोह में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी मौजूद रहेंगे। निर्जला एकादशी का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। श्रद्धालु आज निर्जला व्रत रखकर घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में किला स्थित प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई हैं। इस अवसर पर ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार किया गया है। सवाईमाधोपुर में विभिन्न संगठनों की ओर से लोगों के लिए ठंडे पेय पदार्थ पिलाने की व्यवस्था की गई है। अजमेर में तीर्थराज पुष्कर में विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिरों में भजन कीर्तन के आयोजन हो रहे हैं।
1: प्रातःकाल से श्रद्धालु पवित्र पुष्कर सरोवर में स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिरों में विशेष धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन और दान पुण्य के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। आकाशवाणी समाचार अजमेर।
0: उधर पाली जिला मुख्यालय स्थित प्राचीन विष्णु मंदिर में भगवान का 450 किलो आम से विशेष श्रृंगार किया गया है। जयपुर नगर निगम आगामी दिनों में आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए फायर एनओसी को लेकर लगातार सर्वे और जागरूकता अभियान चला रहा है। इसके तहत कल नगम की टीम ने शहर के विभिन्न तरह के 74 भवनों का निरीक्षण किया और कमियां पाए जाने पर 53 भवन मालिकों को नोटिस जारी किए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 जुलाई को पचपदरा रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ने की मांग को लेकर खंडीप में चल रहा किसानों का धरना सरकार के आश्वासन के बाद समाप्त। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की 5 विद्युत कंपनियों में विभिन्न संवर्गों के कुल 2005 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी। और निर्जला एकादशी का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: न्यूज ब्रेक के बाद स्वागत है आपका फिर से मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। दोस्तों, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के दिन के बारे में, कि आज के दिन के इतिहास में क्या क्या छिपा है। दोस्तों, 1975 में आज ही के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी और ये 21 महीने तक चला था, जिसके दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था और कई विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। भारत सरकार ने इस घटना की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है।
3: आज ही के दिन 1950 में शुरू हुआ था कोरिया युद्ध। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया, जिसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष छिड़ गया था।

0: दोस्तों 1932 में आज ही के दिन भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के प्रतिष्ठित लॉर्ड्स मैदान पर अपना पहला आधिकारिक टेस्ट मैच खेलकर अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा था।
1: और दोस्तों आज का दिन क्रिकेट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है हमारे देश के लिए। बिल्कुल आज ही का वो दिन था 1983 में जब भारतीय क्रिकेट टीम ने कपिल देव की कप्तानी में लॉर्ड्स के मैदान पर वेस्टइंडीज को 43 रनों से हराकर अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था और हम सभी को गौरवान्वित किया था।
2: Trouble now, having lost two matches in a row.

दोस्तों आज 25 जून का दिन है और भारत सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में नामित किया है। यह दिन 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जिसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाता है। सरकार द्वारा इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं को आपातकाल के दौरान संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के हुए दमन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 25 जून 1975 की रात को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 का उपयोग करके देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। इस दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था, प्रेस की स्वतंत्रता पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए थे और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हजारों नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया था। यह दिन उन लोगों के संघर्ष और बलिदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने आपातकाल के दौरान मानवीय यातनाएं सही और भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया।

और दोस्तों इसी के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस भी है। दोस्तों समुद्र में काम करने वाले नाविकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए हर साल 25 जून को ये दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस जो है वो हर साल 25 जून को इसीलिए मनाते हैं कि ये दिन जो है वो वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था में नाविकों के अद्वितीय योगदान को और उनके द्वारा उठाए जाने वाले जोखिमों को सम्मान दिला सके, उनको समर्पित किया जा सके। और ये दिवस इस दिवस की जो स्थापना है वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO द्वारा वर्ष 2010 में मनीला में हुए एक सम्मेलन के दौरान की गई थी। और इस वर्ष की जो थीम रखी गई है वो है विश्व व्यापार का संचालन, जोखिमों को उठाना। दोस्तों इसका उद्देश्य संघर्षग्रस्त और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में काम करने वाले नाविकों के जीवन की कठिनाइयों और दबावों को उजागर करना है। और साथ ही दोस्तों देखा जाए तो विश्व का लगभग 90% जो व्यापार है वो समुद्र के रास्ते जहाज़ों द्वारा किया जाता है। और ये दिवस उन सभी नाविकों को धन्यवाद देने का अवसर है जो हमारे दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं को सुरक्षित रूप से पहुंचाने के लिए अपने घरों से दूर लंबा समय बिताते हैं।

0: बिल्कुल दोस्तों, जीवन की ये धारा चलती ही रहती है और हमें भी इसके साथ चलना होता है, रुकना बिल्कुल नहीं होता। लेकिन हमारा ये जो जीवन है, ये चलते चलते कहीं नीरस ना हो जाए, इसीलिए हमारे जीवन में, हमारे समाज में हम कई तरह के व्रत, उत्सव और त्यौहार मनाते हैं। और कई सारे ये जो त्यौहार हैं, ये हमारे एक सी चलती हुई ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत आनंद के पल भर देते हैं।
1: जी दोस्तों बिल्कुल, और आज का दिन इसीलिए खास है कि आज है निर्जला एकादशी, जो कि हमारे संपूर्ण भारत में मनाई जाती है। दोस्तों निर्जला एकादशी जो है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस दिन का जो व्रत होता है वो सभी 24 एकादशियों के व्रत के समान फलदायी होता है। यानी कि ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति वर्ष भर की एकादशियों का व्रत नहीं रख पाता है, वो केवल इस निर्जला एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उपवास रखा जाता है। आज का दिन यानी कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हम निर्जला एकादशी मनाते हैं। दोस्तों ये जो व्रत उपवास किया जाता है, इसके पीछे एक कथा है जो अगर आप सुनते हैं तो आपको इसमें और भी गहरी आस्था बढ़ जाती है आपकी। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि भीम जो थे वो, उनको भोजन बहुत प्रिय था, तो उनके चारों भाई और माता कुंती वर्ष भर आने वाली सभी एकादशियों का व्रत रखते थे, लेकिन भीम उनके लिए बार बार उपवास करना कठिन था। तो वे अपने गुरु वेदव्यास जी से कहते हैं कि मैं भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहता हूँ परंतु बार बार भूखा नहीं रह सकता, तो गुरुदेव ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाए। तब महर्षि वेदव्यास उन्हें कहते हैं कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो निर्जला व्रत रखते हैं वे सबसे ऊपर हैं और उन्हें फिर पूरे वर्ष भर व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। बस ये एक दिन का उपवास जो है वो उन्हें बिना जल ग्रहण किए, बिना अन्न खाए वे अगर करते हैं तो उन्हें सभी एकादशियों का समान फल प्राप्त हो जाता है। तो भीम श्रद्धापूर्वक ये उपवास रखते हैं और उन्हें भगवान विष्णु की कृपा से सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और इसीलिए तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और बस इसी दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और काफ़ी सारे दान पुण्य किए जाते हैं, जिनमें जल का दान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।
0: और दोस्तों नमस्कार, कार्यक्रम में अब बात कर लेते हैं उस रोमांचक खेल की। जी हाँ, फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो कि इन दिनों चर्चा का विषय है और अब वो अपने पूरे चरम पर पहुंच चुका है। बात करें कल हुए मैचों की तो ग्रुप एल के मुकाबले में इंग्लैंड और घाना के बीच मैच जो हुआ वो ड्रॉ रहा। दोनों टीमों के बीच 15 साल बाद मैच खेला गया। दोनों टीमों के बीच कुल 2 मैच खेले गए और दोनों ही ड्रॉ रहीं। वहीं ग्रुप एल के ही मैच में क्रोएशिया टीम ने पनामा को 1-0 से हरा कर टूर्नामेंट में पहला मैच जीत लिया है और विश्व कप बॉल के नॉकआउट राउंड में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को कायम रखा। क्रोएशिया के लिए यह जीत इसलिए भी खास है दोस्तों क्योंकि उसके कप्तान लुका मॉड्रिक का यह 200वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। इस मैच में एंटे ने खेल के 54वें मिनट में जोसेफ स्टेनिसिक के घुमावदार क्रॉस पर गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचा दिया और यह गोल आखिर में निर्णायक साबित हुआ और क्रोएशिया को 3 अहम अंक मिले इस गोल के माध्यम से। इसके साथ ही क्रोएशिया टीम ने इस विश्व कप में अपनी पहली जीत हासिल की।

0: दुनिया का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रुसुख एक तरफ।
1: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद। विनायका हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।

0: जोधपुर।
1: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: जून नेशनल इनफर्टिलिटी जागरूकता का महीना है। इसी अवसर पर आइए सुनते हैं शहर के प्रसिद्ध इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ की राय।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहम्मद शकील उप जिला अस्पताल सुमेरपुर से बोल रहा हूँ। हर दंपति का सपना एक खुशहाल परिवार बसाने का होता है, लेकिन इनफर्टिलिटी यानी बांस बन कई दंपति का सपना साकार नहीं होने देता। इनफर्टिलिटी का अर्थ है एक वर्ष तक नियमित प्रयास के बावजूद गर्भ धारण न होना। यह हर 6 में से एक दंपति को प्रभावित करता है। याद रखिए, इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला ही नहीं बल्कि पुरुष भी हो सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव से लेकर मॉडर्न प्रभावी उपचार जैसे IVF तक उपलब्ध हैं। अब समय है कि हम इस विषय पर बिना संकोच खुलकर बात करें और डॉक्टर से उचित मार्गदर्शन लेवें। धन्यवाद।
0: गुफिक बायोसाइंसेस के जेनोवा विभाग द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के सेगमेंट के बारे में। आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन हमारा सेगमेंट रहता है हमारा पर्यावरण, और आज हम बात करेंगे नियाग्रा जलप्रपात की। दोस्तों, नियाग्रा फॉल्स विश्व के सबसे प्रसिद्ध और मनमोहक जलप्रपातों में से एक है। ये कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स की सीमा पर स्थित है। दोस्तों, नियाग्रा जो है वो वास्तव में 3 जलप्रपातों का समूह है, एक हॉर्स शू फॉल्स, अमेरिकन फॉल्स और ब्राइडल वेल फॉल्स। और इसमें से हॉर्स शू फॉल्स जो है वो सबसे बड़ा है और सबसे अधिक जल प्रवाह वाला जलप्रपात है। ये जलप्रपात न्यूयॉर्क के बफेलो से 27 किलोमीटर उत्तर

0: पश्चिम में और कनाडा की टोरंटो से 120 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। नियाग्रा नदी पर स्थित ये जलप्रपात लगभग 12,000 वर्ष पहले हिमयुग के अंत में ग्लेशियर्स के पिघलने से बना था और इसकी जो ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग 51 मीटर है और हर सेकंड लाखों लीटर पानी इसकी चट्टानों से नीचे गिरता है और गिरते हुए पानी की जो गर्जना है वो कई किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है।
1: और दोस्तों, इस नियाग्रा जलप्रपात से जुड़ी अनेक रोचक कहानियां भी प्रसिद्ध हैं। वर्ष 1901 में 63 वर्षीय शिक्षिका एनी इट्सो टाइलर एक विशेष बैरल में बैठकर जलप्रपात के ऊपर से नीचे गिरी और जीवित बच गई। वे ऐसा करने वाली पहली व्यक्ति थी। इसके बाद भी कई साहसी लोगों ने इसे जोखिम भरे कारनामे करने का प्रयास किया। यह जलप्रपात केवल प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र ही नहीं है दोस्तों, बल्कि जल विद्युत उत्पादन का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ स्थित विद्युत परियोजनाएं कनाडा और अमेरिका के लाखों घरों को बिजली उपलब्ध कराती हैं। और रात के समय रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता नियाग्रा जलप्रपात और भी आकर्षक दिखाई देता है। विशेष अवसरों पर यहाँ शानदार आतिशबाजी भी की जाती है। हर वर्ष करोड़ों पर्यटक नौका यात्राओं, अवलोकन टावरों और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने यहाँ पहुंचते हैं। अपनी अद्भुत शक्ति, प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक महत्व और रोमांचक कथाओं के कारण नियाग्रा जलप्रपात आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। यह प्रकृति की विराट शक्ति और सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है।

0: दोस्तों वैसे तो हमें हर मौसम में कई तरह की शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मगर गर्मी की अगर बात करें तो गर्मी में भी हमें कई तरह की ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना करना पड़ता है और जिनसे हम पूरी गर्मी परेशान रहते हैं। और उनमें से एक सबसे बड़ी समस्या की अगर बात करें तो वो है हमारे बालों की समस्या। जी हाँ दोस्तों, गर्मी में बालों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मी में उमस के कारण पसीना भी खूब आता है और उस वजह से हमारी बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और एक बहुत गंभीर समस्या के रूप में ये हमारे सामने आती है।
1: जी दोस्तों, बिल्कुल इसीलिए हमने आज काम की बात यही रखी है कि हम गर्मियों में बालों की देखभाल कैसे करें। दोस्तों, गर्मियों में तेज़ धूप, पसीना, धूल और प्रदूषण के कारण बाल रूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। तो बालों को स्वस्थ रखने के लिए हम निम्न बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे बालों को साफ रखें। पसीना और धूल जमा होने से बालों में जो गंदगी बढ़ जाती है, तो जहाँ पहले सप्ताह में एक बार बाल धोते थे, बाल जिनके लंबे होते हैं, तो वो अब 2 से 3 बार उनको हल्के शैम्पू से धोएं, ताकि ज़्यादा केमिकल्स का भी प्रयोग ना हो पाए और बालों पे कोई जो रासायनिक क्रियाएं जो होती है जिनसे बाल खराब हो जाते हैं, तो वो भी ना हो, माइल्ड शैम्पू का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, पर्याप्त पानी पिएं। वैसे हम पीते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा और अगर हम अपने ध्यान रखेंगे पानी के पीने का, तो हम शरीर में जो पानी की कमी का असर बालों पर देखा जाता है, उससे हम बच पाएंगे। तेल की मालिश सप्ताह में कम से कम एक बार किसी भी नारियल, बादाम या आंवला तेल से हल्के हाथों से मालिश करें। कई बार देखा जाता है कि लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से बालों के जो है सर के मसाज करते हैं। दोस्तों, हमारे जो बालों के हेयर क्यूटिकल्स होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, उनको एकदम हल्के हाथों से मालिश करनी होती है, तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि इन दिनों धूप बहुत तेज़ होती है, तो बाहर निकलते समय आवश्यक रूप से या तो टोपी या स्कार्फ या छाता का उपयोग करें, ताकि जो सूर्य की किरणें हैं उससे बालों को बचाया जा सके, क्योंकि सूर्य की जो किरणें वो सीधी अगर हमारे बालों पर पड़ती है, हमारी स्कैल्प पर पड़ती है, तो वो हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। और इसके साथ ही संतुलित आहार, ये तो हमारे शरीर के लिए भी आवश्यक है और बालों के लिए तो बहुत ही आवश्यक है, जैसे हरी सब्जियां, फल, दालें, दूध, सूखे मेवों का जो प्रयोग है वो बढ़ा दें और अपने डाइट में

0: अच्छे से उनको शामिल करें। और इसके साथ ही देखा गया है दोस्तों कि आजकल लोग जैसे महिलाएं हैं वो हेयर ड्रायर और स्ट्रेटनर का या कर्लिंग मशीन का प्रयोग करती हैं, तो इससे भी हमारे बालों को नुकसान होता है। तो कोशिश करें कि कम से कम इसका उपयोग करें। और ये भी देखा गया है कि कई बार लोग गीले बालों में ही कंघी कर देते हैं, ये सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि जब बाल गीले होते हैं तो हमारे जो स्कैल्प जो हमारी रूट्स होती हैं वो उस वक्त थोड़ी सी सॉफ्ट हुई होती हैं, तो उस समय आप कंघी ना करें, जब बाल थोड़े सूख जाएं उसी समय आप बालों में कंघी करें ताकि बाल कमज़ोर होकर आसानी से टूटे नहीं। तो ये हमारे कुछ टिप्स थी आपके लिए काम की बात में आज।
1: बिल्कुल दोस्तों, इन सब बातों के मद्देनज़र हम ये पाते हैं कि स्वस्थ बाल केवल बाहरी देखभाल से नहीं बल्कि सही खानपान और अच्छी जीवन शैली से भी बनते हैं। नियमित देखभाल और संतुलित आहार अपना कर हम गर्मियों में भी अपने बालों को स्वस्थ, घने और चमकदार रख सकते हैं और उनकी सेहत का पूरा ख्याल रख सकते हैं। तो आज की काम की बात हमें लग रहा है कि आपकी ज़रूर काम आएगी। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों आज जन्मदिन है सुधा सिंह, भारत के प्रसिद्ध एथलीट जिन्होंने विशेष रूप से 3000 मीटर स्टीपल चेज यानी कि भादा दौड़ में देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है और वे इस स्पर्धा में भारत की अग्रणी महिला धावकों में गिनी जाती हैं। दोस्तों 25 जून 1986 को रायबरेली में जन्मी सुधा का बचपन से ही खेलों की ओर रुझान था। दो हजार दस में उन्होंने एशियाई खेलों में 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीता।

उसके बाद में 2017 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उसके बाद 2018 में भी उन्होंने एशियाई खेलों में रजत पदक जीता। भारत का प्रतिनिधित्व 2012 के लंदन ओलंपिक और 2016 के रियो ओलंपिक में भी किया उन्होंने, और इसीलिए उन्हें 2012 में भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2021 में उन्हें पद्मश्री प्रदान किया गया। दोस्तों, सुधा सिंह ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है और लंबे समय तक भारत की शीर्ष धाविकाओं में शामिल रही हैं। आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर हमें उन्हें अनेकानेक बधाइयां देते हैं और उनके स्वस्थ और मंगल जीवन की कामनाएं करते हैं।

0: जून नेशनल इनफर्टिलिटी जागरूकता का महीना है। इसी अवसर पर आइए सुनते हैं शहर के प्रसिद्ध इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ की राय।
1: मैं डॉक्टर दीपाली लोढ़ा, लोढ़ा हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, पाली से बोल रही हूँ। हर दंपति का सपना एक खुशहाल परिवार बसाने का होता है, लेकिन इनफर्टिलिटी यानी बांझपन कई दंपतियों का यह सपना साकार नहीं होने देती। इनफर्टिलिटी का अर्थ है एक वर्ष तक नियमित प्रयासों के बावजूद गर्भधारण न होना। वह हर 6 में से एक दंपति को प्रभावित करता है। याद रखें, इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला ही नहीं बल्कि पुरुष भी हो सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव से लेकर मॉडर्न प्रभावी उपचार जैसे IVF, ICSI, IUI आदि उपलब्ध हैं। अब समय है कि इस विषय पर बिना संकोच के खुलकर बात करें और डॉक्टर से उचित मार्गदर्शन लें। धन्यवाद।
0: गुफिक बायोसाइंसेस के जेनोवा विभाग द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, आज के दिन हम याद कर रहे हैं हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक चंद्रशेखर पांडे को। उन्होंने कई महत्वपूर्ण रचनाएं की जिनमें आधुनिक हिंदी कविता और रसखान और उनका काव्य उल्लेखनीय है। बनारस के कड़ी पियरी नामक स्थान पर चंद्रशेखर पांडे का जन्म हुआ था। आज के दिन उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और प्रयाग से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। 1929 में चंद्रशेखर पांडे कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे। चंद्रशेखर पांडे ने संस्कृत साहित्य के इतिहास की रूपरेखा नाम ग्रंथ की रचना की। इनका आधुनिक हिंदी कविता और रसखान काव्य उल्लेखनीय रहा है और कानपुर नवजीवन पुस्तकालय और श्री हिंदी साहित्य मंडल से चंद्रशेखर पांडे का घनिष्ठ संबंध रहा। और साथ ही साथ आज हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ सुचेता कृपलानी जी को। ये उत्तर प्रदेश की चौथी और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। भारत के संविधान को मूल रूप देने वाली समिति में 15 महिलाएं भी शामिल थी। इन्होंने ये उन्हीं में से एक थी। संविधान के साथ भारतीय समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सुचेता कृपलानी जी ने। इन्हीं में इनका जो जन्म है वो आज ही के दिन 1908 को अंबाला में हुआ था। सुचेता कृपलानी भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व का एक प्रेरणादायक उदाहरण मानी जाती हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और महात्मा गांधी के साथ 9 अकाली दंगों के समय राहत कार्य भी इन्होंने किया। संविधान सभा की ये सदस्य रही। वंदे मातरम गाने के लिए इन्हें विशेष रूप से याद किया जाता है।
3: तो 100वीं जयंती है मदन मोहन जी की। 25 जून 1924 को जन्मे मदन मोहन कोहली, जिन्हें हम मदन मोहन जी कहते हैं, जिन्होंने फिल्म जगत को एक अमिट विरासत दी है। दोस्तों, बचपन से ही संगीत के माहौल में अपना जीवन बिताने वाले, उन्होंने आगे चलकर भी संगीत में रुचि दिखाई, लेकिन उन्होंने कुछ समय सेना में भी कार्य किया, लेकिन फिर बाद में संगीत को ही अपना जीवन बना लिया।
2: हिंदी फिल्म संगीत के उस जादूगर की हम बात कर रहे हैं जिनकी धुनों में गजल की नजाकत और शास्त्रीय संगीत की गहराई समाई हुई थी। कई सारे ऐसे गीत उन्होंने हमें दिए जिन्हें आज भी सम्मान दिया जाता है, प्यार से सुना जाता है, स्नेह दिया जाता है।
3: और इसीलिए दोस्तों, उन्हें अक्सर गजलों का शहजादा कहा जाता था और कहा जाता है, क्योंकि उनकी धुनों में गजल की नजाकत और मधुरता का मधुर अद्भुत संगम देखने को मिलता है। और उनके जो गीत हैं, लग जा गले, नैना बरसे रिमझिम, आपकी नजरों ने समझा, ये ऐसे गीत हैं जो जब तक सुने जाएंगे तब तक दिलों पर अमिट छाप छोड़ते जाएंगे।
2: मदन मोहन ने अपने 2.5 दशक लंबे सिने करियर में लगभग 100 फिल्मों के लिए संगीत दिया। उनकी मृत्यु के लगभग 30 वर्ष बाद उनकी अप्रयुक्त धुनों का उपयोग फिल्म वीर जारा में किया गया। फिल्म का संगीत अत्यंत लोकप्रिय हुआ और नई पीढ़ी भी उनके संगीत की दीवानी है।

0: उफ़, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
4: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
5: आज ही पधारें लालजी नर्सरी, रानोजी का बाग, खोखरिया, बिरामंडो।
4: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
6: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
7: एफएम सन सिटी पर लीजिए हाजिर है कार्यक्रम फिल्मी अंताक्षरी।
8: दोस्तों स्वागत है आपका 102.1 एफएम सन सिटी के मोस्ट अवेटेड प्रोग्राम अंताक्षरी में। तो इस सुरीले संगीत सुवर को हम शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। और आपके आज की होस्ट हूँ मैं मनीषा, और हम खेलेंगे आज अंताक्षरी। पर पहले सुनवाते हैं ये प्यारा सा आपको गीत।

0: जी दोस्तों, स्वागत है आपका। अंताक्षरी प्रोग्राम है और लगता है हमारे पहले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। वैसे हम आपको बता दें कि हमारे जो नंबर हैं फ़ोन लाइंस वो हैं 2553300, 2553400, और जो राजस्थान के बाहर से हमसे संपर्क करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, वे 0291 का कोड अवश्य रूप से लगा लें। 3 राउंड्स होंगे और हम आपको और भी बताते रहेंगे। आइए जुड़ते हैं हमारे पहले कॉलर से। नेमी जी हमें जोड़ चुके हैं। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रही हैं?
1: गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग,
1: कैसे हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए।
1: बस मैम, स्वस्थ मस्त जबरदस्त।
0: हाँ
1: जी मैम।
0: कैसा है आज बाहर का मौसम कैसा है आज?
1: बहुत मस्त मौसम है मैम, ऐसा मौसम हमेशा रहना चाहिए।
0: इसीलिए हमने आपको गाना भी ऐसा ही सुना दिया, गीत भी।
1: अरे वो कहते ना, आपने ऐसा गाना सुनाया था, हमारा भी मौसम बन गया जैसा वाला पूरे दिन का।
0: बिल्कुल।
1: आज धूप होगी भी तो नहीं लगेगी हमको।
0: बहुत खूब। तो अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि हमारे और भी श्रोता आपके बारे में और अच्छे से जान पाए।
1: मैं धनिषा चौहान बोल रही हूँ मैम, प्रताप नगर से।
0: प्रताप नगर से धनिषा जी?
1: जी मैम।
0: जी धनिषा जी, शायद अपन पहली बार ही बात कर रहे हैं ना?
1: शायद पहली बार ही। कविता जी से तो होती रहती है, आपसे पहली बार ही बात हो रही है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल। तो धनिषा जी, आज क्या सोचा है, आज मौसम को देखते हुए कि कौन सा गीत?
1: मैं गाना सुनाती हूँ आपको।
0: जी बिल्कुल।
1: और आपको मैम आज निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: जी।

0: ये और आपकी टीम को, पूरी आकाशवाणी टीम को।
1: बिल्कुल, हमारी टीम की तरफ से आपको भी निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: जी मैम, गाना सुना रही हूँ।
1: हाँ,
0: जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार मैंने जन्म लिए।
1: बहुत ही अच्छा, बहुत ही मधुर आवाज़ है आपकी, और अब प्रोग्राम का आगाज बहुत अच्छा हो चुका है। दनिशा जी, पहली बार अपनी बात हो रही है, लेकिन आप बहुत ही अच्छा सुर में गाई हैं। आपको वैसे इसके रूल्स पता ही होंगे। अब हम आपको दूसरे पायदान पर पहुंचाते हैं, जहां पर आपको हम कुछ गीतांश सुनाएंगे, उसमें से आपको कुछ एक शब्द चुनना होगा, और फिर उसी एक शब्द पर आपको तीन चार बैक टू बैक गीत गाने होंगे, कुछ कुछ एक एक दो दो पंक्तियाँ। सही है?
0: ओके
1: ठीक है, सुनिए।

0: रिमझिम किया तूरे अवन किया नैना भर के
1: नैनों में सपना
0: नैनों में सपना सपनों में सजना सजना पे दिल आ गया जो सजना पे दिल आ गया।
1: बिल्कुल बहुत खूब। और कुछ याद आ रहा है?
0: तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा। अच्छा तो वो क्या है एक मंदिर मंदिर में एक मूरत है।
1: देखिए आपकी आवाज़ के लिए हमने कितने सारे आपके एफर्ट्स के लिए कितने सारे तालियां भिजवा दी हमने, है ना?
0: थैंक यू मैम।
1: बहुत अच्छा, बहुत ही सुरीला आपने गाया और आपके गीतों का चयन भी बहुत अच्छा था तनिषा जी। और वो जो ये गाना जिसमें हम आस कर रहे हैं, अब पिया की तो नहीं, हम तो बारिश की आस कर रहे हैं, बस आज बरस ही जाए, है ना? बिल्कुल। तो आपने सफलतापूर्वक पहला दूसरा राउंड भी क्लियर कर लिया है, अब हम आपको तीसरे राउंड में ले चलते हैं दनिषा जी। इसमें हम आपको एक म्यूजिकल ट्रैक सुनाएंगे और उस पर आपको गीत गाना होगा कैरियो के, ठीक है? कोशिश कीजिए, हम आपको सुनवाते हैं, है ना?

बहुत खूब धनिषा जी, आपने तीनों राउंड बहुत अच्छे से पास किए और उसके लिए हमने आपको खूब सारी तालियां आपके लिए। अब हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसे कि आप हमें फोन करते रहिए अगली बार। आज और सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो हेलो, ऐसा लग रहा है कि शायद किन्हीं कारणों से हमारा उनसे संपर्क टूट गया है। हम कोशिश करते हैं हम उनसे फिर से जुड़ें। खैर, तब तक के लिए जो भी हमारे न्यू कॉलर्स हैं, जो भी हमारे श्रोता हैं, उनके हम फिर से बता दें कि हमारे जो फ़ोन लाइन नंबर्स हैं वो हैं 2553300, 2554300। और जो राजस्थान के बाहर से हमसे संपर्क करना चाहते हैं वे 0291 का कोड अवश्य रूप से लगा लें। हेलो,
1: गुड मॉर्निंग
0: गुड मॉर्निंग।
1: न्यू बॉम्बे से दिनेश कुमार सोनगा, सभी एफएम टीम को प्रणाम करते हैं।
0: बिल्कुल, हम आपको अच्छे से जानते हैं। दिनेश जी का वैसे सबसे पहला कॉल आता है, लेकिन आज दूसरा कॉल आया है।
1: अरे
0: और जो
1: मैंने
0: आवाज
1: कॉल
0: में
1: लगाया
0: उत्साह।
1: 66,
0: हाँ जी बोलिए।
1: मीनाक्षी जी, मैंने कॉल लगाया 67 कॉल लगा, जब कॉल लगा सेकंड मेरा,
0: अरे ये तो गड़बड़ हो गई आज। नहीं,
1: और निचला निचला एकादशी की हार्दिक बधाई पूरे देशवासियों को, खास करके जोधपुर को।
0: बिल्कुल, आपको भी हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई निर्जला एकादशी की। और मैं हूँ मनीषा, मीनाक्षी नहीं हूँ।
1: ओहो, क्या बात है मनीषा जी, आप 6 महीने बाद आपसे मुलाकात हो रही है,
0: नहीं,
1: वांडरफुल।
0: हाँ, इस बार थोड़ा लंबा समय हो गया। बिल्कुल, कोई बात नहीं, दूसरों को भी मौका देना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: बिल्कुल
1: आपने बोला
0: सबको
1: दूसरों को मौका दो, जब भी मैंने 3 एपिसोड थोड़ा ब्रेक लिया मैंने।
0: ब्रेक लिया। नहीं, ये आपका बहुत अच्छी अप्रोच और बहुत सराहनीय है। और बिल्कुल सबको मौका मिलना चाहिए बराबर। तो अब दिनेश जी, आपने इतनी अच्छा शुरुआत वेलकम किया है, बस आप बता दीजिए कि अब आप मौसम मौसम कैसा है आपके वहाँ? बारिश शुरू
1: हेलो
0: हो चुकी है ना,
1: जी, बारिश शुरू हो गई है 22 जून को।
0: उसका असर हमारे यहाँ पर थोड़ा दिख रहा है आज जोधपुर में। तो बस
1: जी मैम,
0: सुना
1: सोने
0: दीजिए गीत कोई अच्छा सा।
1: के गहने क्यों तूने पहने, काया तेरी खुद कंचन है, केसु बनाए तो फूल क्यों सजाए, तेरा बदन खुद गुलशन है, सोने के गहने क्यों तूने पहने, रेशम की डोरी धर्मेंद्र सायरा बनो।
0: बहुत ही खूब, आप नए नए गीत निकाल के लाते हैं। और उत्साह तो आपका है ही।
1: ये बहुत पुराने गीत है मैम, इसकी मूवी का आगे हो गए 55 ईयर।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो इसी बहाने, आपके बहाने, हमारे श्रोताओं को भी जो कुछ पुराने गीत फिर से याद ताजा हो जाते हैं। तो
1: जी
0: दिनेश जी,
1: मैम,
0: अब
1: आपका
0: बिना
1: क्या है?
0: देरी किए आपको ले चलते हैं हम अपने दूसरे राउंड में। आपको सुनवाते हैं गीतकांश, और आप एक शब्द चुनकर उस पर दो चार गाने बैक टू बैक सुना दीजिएगा। ठीक है?

0: मोहब्बत मोहब्बत की उभर आई है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, पहली पहली बार मिलाता है यही, अखियों से नींद चुराता है, सच्चे झूठे ख्वाब दिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है, दिल तो पागल है।
1: दो सुना है, दो और।
0: दो और।
1: दिल में तो खूब सारे गीत हैं।
0: दीवाना दीवाना है ये दिल, दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना, मैंने उसके शेर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल, मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल।
1: बिल्कुल, बहुत खूब, बढ़िया है ना। फटाफट से सारे गीत आपने सुना दिए ताकि बाकी जो कॉलर्स हैं उनको भी समय मिल जाए। बहुत अच्छा,
0: बिल्कुल
1: बहुत ही खूब। और वैसे भी आप अच्छे अच्छे गीत लेकर आते हैं, बहुत ही अच्छा। तो अब हम आपको बिना
0: आपकी
1: देरी
0: दुआ
1: किए
0: है,
1: ले चलते हैं तीसरे राउंड में, जहां आपको म्यूजिकल
0: मैं
1: ट्रैक
0: आपसे
1: पे।
0: चाहता हूँ हेल्प।
1: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल, इस तीसरे राउंड में करेंगे आपकी मदद।

0: हेलो।
1: हाँ जी दिनेश जी, थोड़ा सा आपका टेम्पो मिसमैच चल रहा है थोड़ा सा।
0: हेलो, वापस रिस्टार्ट करूं? शुरू
1: वापस से शुरू करना चाहेंगे? चलो एक मौका और देते हैं, कीजिए।
0: आप कुछ
1: थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था। हाँ म्यूजिक को एक बार खत्म होने दीजिए, फिर शुरू कीजिए।

0: राजेश खन्ना आशा बारी कटी पतंग
1: जी संगीत बिल्कुल आपने थोड़ा सा लेट शुरू किया था, बीच में आपने वापस सेट कर दिया था, लेकिन फिर वापस से थोड़ा सा आगे पीछे हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी एनर्जी को सलाम। और बिल्कुल आप हमें इसी तरह फोन करते रहिए इस केंद्र पर, आकाशवाणी केंद्र पर, और हमें प्यारे प्यारे सुनाते रहिए।
0: थैंक यू मैडम,
1: थैंक यू।

0: जुड़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर से। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
1: जय हिंद, मैं ठाकुर तेजदान चारण रंग कर्मी राजस्थान से अर्ज कर रहा हूँ।
0: बिल्कुल, मैं आपने पहले बात हो चुकी है ना?
1: हाँ, पहले बात हो चुकी है आपकी।
0: हाँ बिल्कुल, मुझे याद आ गया। तो चारण साहब, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ, और आपके इस प्रोग्राम से जुड़कर तो और भी अच्छा हो गया हूँ।
0: और भी अच्छे हो गए। बिल्कुल, संगीत ऐसा ही है, जिसे भी जो भी उससे जुड़ता है, बस
1: जी
0: क्या
1: जी
0: कहें कि संगीत में एक अलग ही।
1: गीत संगीत तो ईश्वर प्राप्ति का एक साधन है,
0: बिल्कुल
1: और हमारे मनोरंजन का भी साधन है।
0: जी, जो
1: जी
0: सुकून है वो देखा जाए तो संगीत में ही है।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: बिल्कुल, तो चारण साहब, आज क्या सोच के आए हैं कि कौन सा गीत श्रोताओं को सुनाना है?
1: जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, सेवा करे जो पति की। जरूरत है जरूरत है जरूरत

0: जरूरत है।
1: बहुत खूब चरण साहब जी, आपके जो अभिनय है ना, वो गीत में हमेशा उसकी झलक मिलती है।
0: वो मेरा एक्टर जाग जाता है जब भी मैं
1: कहाँ किस शब्द को लंबा करना है, कहाँ कैसा, बहुत ही अच्छा, हमेशा बहुत ही खूब। तो चरण साहब जी, वैसे आप शादीशुदा हैं?
0: हूँ। जी हाँ बिल्कुल, मैं तो रिटायरमेंट के बाद जी रहा
1: नहीं,
0: हूँ।
1: आपके गीत के सिलेक्शन के लिए मैंने सोचा थोड़ी सी आपकी चुटकी ले ली जाए।
0: हाँ मैं तो शादीशुदा हूँ और
1: और धर्मपत्नी
0: मेरी
1: जी सुन रही
0: शादी
1: हैं
0: को,
1: गीत
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं, वो तो
1: को?
0: हमेशा मेरे नाटकों में सबसे अग्रणी रह करके मेरी प्रशंसा करती है।
1: बिल्कुल नहीं, तो ये सहयोग सही हो पाता है। कोई भी इंसान
0: जी मेरी
1: किसी भी
0: जिंदगी में उनका
1: क्षेत्र में
0: सहयोग
1: तभी
0: ना
1: सफल
0: होता
1: हो
0: तो
1: पाता है
0: शायद,
1: जब उसे
0: मेरी
1: कोई
0: जिंदगी
1: सहयोग
0: में
1: मिले।
0: अगर उनका सहयोग ना होता तो शायद मैं ना होता।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही है, बहुत सही कहा। तो चरण साहब जी, अब आपसे को और भी गीत सुनना चाहेंगे। अब आपको हम आपको ले चलते हैं दूसरे राउंड में। अब आपको गीत का
0: जी
1: अंश सुनवाएंगे, एक शब्द आप चुनिएगा और उस पर तीन चार गीत सुना दीजिएगा।
0: जी
1: ठीक है,
0: धन्यवाद धन्यवाद।
1: सुनिए।

0: जी चरण साहब, अच्छा गीत सुनाया ना आपको नेमी जी ने?
1: दिल ने जो जाने क्या कहा, तेरे नैन मेरे नैन दे तेरे, दिल सब चुनाया मैंने।
0: हाँ सुना दीजिए।
1: दिल भर दिल से प्यारे, दिल भर दिल की सुनता जा रे, दिल भर दिल मेरा दिल हारा, दिल भर काले नैनो वाली, काले नैनो वाली, ये हो गया दिल।
0: मैं करूं
1: लोगों
0: मदद
1: के क्या
0: थोड़ी?
1: आ रहे हैं।

0: दिल पे तो खूब सारे गीत हैं।
1: जी जी जी
0: एक और, चलो मैं शुरू करती हूँ फिर आप सुनाना। दिल देना खेल है दिलदार का,
1: दिल देना खेल है दिलदार का, ये प्यार ना दिलदार का, प्यार भी झूठा, देखो दिल वालों ना आया है मौका दिलदार का।
0: कोई बात नहीं, थोड़े से शब्द इधर उधर हो गए लेकिन आपने बिल्कुल एकदम सही रिद्म पकड़ी और सही स्वर पकड़े।
1: धन्यवाद धन्यवाद
0: बहुत ही अच्छा लगता है आपके गीत सुनकर चरण साहब जी।
1: जी जी मेरा मेरा एक्टर जाग जाता है ये आपको देख के अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल,
1: जी
0: तो तीसरा राउंड में आप चलेंगे?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं
0: ठीक है
1: तीसरा राउंड भी खेलूंगा।
0: ठीक है, तो आपको सुनवाते हैं ये म्यूजिकल ट्रैक, इस पे गाने की कोशिश
1: जी
0: कीजिए।
1: जी धन्यवाद धन्यवाद।

0: हाँ जी चरण साहब जी,
1: ये बात समझ में नहीं आया पहले।
0: हाँ हाँ, कभी कभी कुछ म्यूजिकल ट्रैक्स नहीं सर। हाँ हाँ, तो थोड़ा मधुबन खुशबू देता है।
1: अच्छा, मधुबन खुशबू देता।

0: दी आधी
1: हाँ गाइए गाइए बहुत अच्छा।
0: जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। ये गाना तो बिल्कुल ट्रैक मैंने आज पहली बार सुना है।
1: हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आगे का जो म्यूजिक कई बार नहीं समझ में आता है कि कौन से
0: नहीं, मैं तो
1: हाँ
0: एक्चुअली जब पहली लाइन बजती है ना तो मैं पहचान लेता हूँ कि
1: पहचान।
0: ये वो गाना है।
1: हाँ अमूमन गीत
0: लेकिन
1: ऐसे ही होता
0: आज
1: है कि पहली लाइन में
0: ये
1: पहचान आ जाता है, और कभी कभी कुछ हो जाते हैं गीत जो नहीं समझ में आते हैं, फिर थोड़ा पर बाद में
0: आज
1: सुन।
0: थोड़ा सा
1: पर
0: कठिनाई
1: आपने
0: हुई,
1: गीत बहुत
0: कोई
1: अच्छा
0: बात नहीं।
1: गाया।
0: आपके साथ ही अंताक्षरी खेलने के अल्लाह में मेरे लिए बहुत अनमोल बन गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप।
1: बहुत बहुत आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें फोन करते रहते हैं और आगे भी फोन करते रहिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो
2: पानी तो गाल ली फोन देखो।
1: हेलो

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते जी मनीषा जी,
0: नमस्ते।
1: कैसे हो आप?
0: मैं बहुत बढ़िया, आप कैसी हैं?
1: बस बढ़िया हूँ मैं भी
0: कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी। मैं मधुबन हाउसिंग बोर्ड से संतोष बोल रही हूँ।
0: आज आपका थोड़ी सी आवाज थोड़ी सी मुझे कुछ डल सी
1: नहीं
0: लगी।
1: लग रही है क्यों?
0: थोड़ी सी, इसीलिए मुझे थोड़ा सा पहचान में नहीं आई। मैंने कहा शायद संतोष, लगा तो था कि पहली आवाज में कि शायद संतोष जी ही हैं, पर फिर बाद में लगा कि शायद ना भी हो सकती हैं। खैर, इस बार बहुत दिनों बाद बात हुई संतोष जी, है ना?
1: हाँ जी,
0: जी
1: मैंने
0: जी
1: कविता जी से उस दिन की, उसके बाद मैंने आज ही फोन
0: आज
1: लगाया है।
0: फोन किया। नहीं, बढ़िया है, सभी को मौका मिलना चाहिए। आपके ऐसे
1: हाँ
0: जो
1: नहीं, दूसरों
0: कदम है
1: को भी तो
0: सराहनीय
1: मौका
0: है।
1: मिलना चाहिए।
0: नहीं, बहुत बढ़िया। कैसा है मौसम आज उधर मधुबन में संतोष जी?
1: अच्छा है मैडम, बारिश आए जैसा।
0: बारिश आ जैसा है, बस आ नहीं रही है, क्यों?
1: पता नहीं, अभी इनका मूड है ऊपर वाले का, कुछ नहीं कह सकते।
0: बढ़िया, एक ऐसा जोरदार सा गाना सुना दीजिए कि बस इंद्रदेव क्या, कि बस अब तो बरसना ही है।

0: बारी हरानी।
1: बहुत अच्छा गाना, बहुत अच्छा। और फिर आपकी तो आवाज ही मधुर है, तो कोई भी गीत गाती हैं तो बस खिल उठता है फूल की तरह। तो संतोष जी, अब हम आपको ले चलते हैं दूसरे राउंड में, सुनवाते हैं आपको गीत का अंश, उसमें तीन चार गीत सुना दीजिएगा। जी सुनिए।

एक मूड, एक कैफियत गीत का चेहरा होता है। कुछ सही से लफ्ज जड़ दो, मौजू से धुन की लकीरें खींच दो,

जी संतोष जी, संतोष जी अभी तो बहुत अच्छा था, लेकिन लगा उन्हें कि शायद शब्द कुछ कठिन हो गए हैं। कोई बात नहीं, हम अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं कि कोई हमसे जुड़े हैं कि नहीं। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
1: उफ़, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
2: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
3: सीमेंस आधुनिक दम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
4: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
3: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
5: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
6: आज ही पधारें लालजी नर्सरी, रानोजी का बाग, खोखरिया, बिरामंडो।
5: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
7: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
8: जी दोस्तों, एड ब्रेक के बाद में स्वागत है आपका फिर से फिल्मी अंताक्षरी प्रोग्राम में, जो कि आपका है बेहद पसंदीदा प्रोग्राम। दोस्तों, कंसोल पर मेरे साथ आपको पता ही है कि नेमी जी हैं, और वो हमें आज सेलेक्टेड गीत सुनवा रहे हैं। इससे आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा। वैसे खैर, धन्यवाद है उन्हें बहुत कि बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गीत वे सुनवाते हैं हमें। तो हमारे नेक्स्ट कॉलर भी हमसे जुड़ चुके हैं, बात करते हैं उनसे। हेलो।
9: हेलो,
8: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
9: मैं रश्मि रामदेव बोल रही हूँ, शास्त्री नगर से।
8: रश्मि जी, शास्त्री नगर से?
9: हाँ जी
8: जी। कैसी हैं आप?
9: मैं अच्छी हूँ।
8: हेलो।
9: हाँ
8: हाँ, रश्मि जी, कैसी हैं आप?
9: मैं अच्छी हूँ। मनीषा जी, नेमी जी, मनीषा जी, आपको निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
8: बिल्कुल, हमारी टीम की तरफ से आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज क्या विशेष है वैसे?
9: हाँ जी,
8: कुछ निर्जला एकादश का कुछ विशेष कर रही हैं? कुछ
9: पूजा पाठ करेंगे। और तो वही है, कुछ हल्का फुल्का खाएंगे।
8: कुछ स्पेशल हो तो बताइए, हम भी अपने श्रोताओं के साथ थोड़ा शेयर कर दें।
9: आज ये श्रीखंड है।

0: है, मैंगो क्रीम है,
1: हम्म,
0: और अच्छा आपको जो पसंद है वो बना के खिलाएंगे।
1: बिल्कुल, जोधपुर वाले तो है ही खमन खंडे, कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लेते हैं, चाहे
0: खंडे
1: व्रत हो उपवास हो,
0: खमन
1: क्यों?
0: खंडे दो फेमस है जोधपुर के।
1: बिल्कुल, और आज तो चलेगी दिन भर मिर्ची बड़ों की धूम, क्यों? सगारी मिर्ची बड़े,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल बढ़िया है। हम हर चीज को मतलब खाने से जोड़ के
0: एंजॉय,
1: एकदम त्योहार।
0: एक्चुअली जोधपुर वाले हर त्योहार को एंजॉय करते हैं, ये बात तो
1: हाँ
0: अच्छी बात है यहाँ की।
1: बिल्कुल, भूखे रहने में भी हम एक अलग ही
0: भूखा नहीं रहना होता, वो पूरे दिन खाना ही होता है। ठीक
1: हाँ बस वही मैं कहना चाह रही थी जो आपने
0: पूरे
1: कह
0: दिन
1: दिया।
0: हम तो निर्जल रह के फिर व्रत किया करते थे, दूसरों को पानी पिलाते थे खूब
1: हाँ
0: निर्जल रहते थे, ये है इसका
1: हाँ
0: लॉजिक तो, लेकिन अब कुछ और ही स्वरूप बन
1: अब
0: गया
1: स्वरूप
0: इसका।
1: हो गया, और जल का ही दान वैसे महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन अब जल के अलावा बाकी सब दान किया जाता है, क्यों?
0: हाँ जी हाँ जी
1: आम वगैरह शुरू हो गए थे कल से ही, नहीं?
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल,
0: बिल्कुल।
1: चलो खूब हो गई बातें। अब हम आपका सुनते हैं प्यारा सा गीत, सुना दीजिए एक प्यारा सा गीत।
0: हाँ जी हाँ जी। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह हो।

0: ये तो होना ही था।
1: बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा गाया आपने रश्मि जी, बहुत खूब। अब हम आपको ले चलते हैं दूसरे राउंड में, सुनवाते हैं आपको गीत का अंश, उसमें से एक शब्द चुनकर तीन चार गीत गाइएगा।

0: कैसा लगा रश्मि जी गीत?
1: अच्छा है, लेकिन शब्द अब क्या चुनूं इसमें मुझको ही।
0: अभी अब क्या करें हम, क्या है? अब आज पूरा माहौल बनाना चाहते हैं कि बारिश आ जाए बस। कैसे ये करके ये इनके इन प्रकार है ना, हम उसे खींच ही लाएं अपने गीतों के
1: नहीं,
0: माध्यम
1: आ
0: से।
1: जाएगी आ
0: अब
1: जाएगी,
0: कोशिश तो
1: बारिश
0: हम पूरी कर
1: बारिश
0: रहे
1: आ
0: हैं,
1: जाएगी।
0: तो अब थोड़ी कोशिश आप भी
1: आपने
0: कीजिए। मौसम है इसमें शब्द, एक पानी है, एक बरखा है। एक दो दो गीत भी गाएंगे तो भी चलेगा, ऐसे कोई तीन सार की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मैं जब मानती हूँ कि ये थोड़ा सा मुश्किल गीत था।
1: पानी पानी लेते हैं,
0: पानी पे ले
1: ठीक
0: लीजिए।
1: है।

0: तेरी याद आई, और पानी पे है, पानी पानी
1: कोशिश करिए फिर
0: पानी
1: मैं।
0: पानी रे, हरे पानी रे, नैनों में
1: हाँ बहुत खूब।
0: और पानी पे क्या है, हो सकता

0: ये गीत इतना अच्छा है, आपने तो थोड़ा शॉर्ट में इसको कर दिया, लेकिन ये गाना थोड़ा सा, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी सुना दूं।
1: तो बहुत याद रहते हैं, लेकिन जब गाना होता है तब याद नहीं आते हैं।
0: हाँ वो तो खैर है, खैर तीन भी बहुत थे, बहुत अच्छा आपका गीतों का चयन रहा। अब हम आपको ले चलते हैं तीसरे राउंड में, आप करेंगे तीसरा राउंड?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
0: ठीक है सुनिए।

0: बिल्कुल रश्मि जी, आपने एकदम सही से पकड़ा, बस थोड़ा सा आगे, पर फिर भी आपने पकड़ लिया, पहचान लिया, बहुत खूब।
1: रश्मि भैया भी अच्छे अच्छे गाने सुना रहे हैं, उन्हें भी हमारी तरफ से
0: देखिए। बिल्कुल रश्मि जी, फोन करते रहिएगा, धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते। तेज
1: मैं हाउसिंग बोर्ड से 16 सेक्टर से तेज सिंह खींची बोल रहा हूँ सर।
0: सिंह जी बोल रहे हैं
1: जी सर।
0: जी। तेज सिंह जी पहले भी फोन कर चुके हैं।
1: हाँ जी।
0: लेकिन अपनी आज पहली बार बात हो रही शायद।
1: हाँ जी।
0: हाँ, कैसा है बाहर का मौसम तेज सिंह जी?
1: बहुत गर्मी है मैडम
0: गर्मी है। देखते हैं क्या होता है।
1: जी।
0: शायद शायद आज बारिश आ जाए। नहीं,
1: जी
0: खैर, तेज सिंह जी तो क्या सोच के बैठे हैं कि श्रोताओं को क्या गीत सुनवाना है आज?
1: एक किशोर जी का गाना गाना चाहता हूँ।
0: हाँ, सुना दीजिए।

संगे मरमर के हाय, कोई मूरत हो तुम, बड़ी दिलकश बड़ी खूबसूरत हो तुम।

0: क्या देश है, क्या जात है, क्या उम्र है, क्या नाव है। अजी छोड़िए इन बातों से, हमको भला क्या काम है। अजी सुनिए तो, हम आप मिले तो फिर हो शुरू अपुसाने लैला मजनू, लैला मजनू के पग घुंघरू, पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, नाची थी, नाची थी, नाची थी, हाँ के पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी।
1: बहुत ही खूब तेज सिंह जी, बहुत ही खूब, बहुत अच्छा आपने सुनाया गीत और पूरे अच्छे से सभी शब्दों को सही सही बहुत अच्छा सुनाया आपने। तो अब हम आपको बिना देरी किए ले चलते हैं दूसरे राउंड में, आपको सुनवाते हैं गीत कांच, उसमें से आप शब्द चुनकर तीन चार गीत गाइएगा, ठीक है?
0: अच्छा
1: जी।

0: जितेश सिंह जी, कौन सा शब्द चुना है? हेलो,
1: मिला नहीं ना,
0: हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलेंगे थोड़ा सा। अच्छा,
1: कोई दूसरा गाना बताइए।
0: इसमें है ना बहार और शब्द जिया, जिया पर भी है, दो तीन तो गाने मिल ही जाएंगे। नहीं, कोशिश नहीं करना चाहते?

0: और
1: तेरे बिना जिया ना लगे।
0: थोड़ा सा और,
1: बस इतना।
0: चलो कोई बात नहीं। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो थोड़े से मुश्किल होते हैं, तो शब्दों शब्द मिल पाना थोड़ा मुश्किल होता
1: ये
0: है।
1: जान चली जाए, जिया नहीं जाए, जिया जाए तो फिर जिया नहीं जाए।
0: चलो अच्छी कोशिश थी आपकी तेज सिंह जी, आप बहुत अच्छा गाते हैं। तो वैसे तीसरा राउंड और है हमारा, आप करना चाहेंगे?
1: जी
0: ठीक है, देखते हैं इसमें आपकी कैसी किस्मत रहती है। तो हम आपके लिए म्यूजिकल ट्रैक लगवाते हैं, सुनिए।

0: हेलो,
1: आवाज आ रही है
0: जी?
1: समझ आया गीत?
0: हाँ, गाना मैंने सुना है मैडम।
1: हाँ, पर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही थी।
0: अच्छा,
1: एक बार फिर से
0: वापस सुनाऊं क्या?
1: नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलेगा। थोड़ी आवाज धीरे आ रही थी इसलिए मैं थोड़ा सा सुनने में दिक्कत आई, लेकिन कोई बात नहीं, आपका प्रयास बहुत अच्छा था। आप इसी तरह फोन करते रहिएगा हमारे प्रोग्राम में और हमें प्यारे प्यारे गीत सुनाते रहिएगा।
0: थैंक यू,
1: धन्यवाद।

0: बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी,
1: मैं इकरामुद्दीन बोल रहा था, ज्योति नगर चांदना बाकर से।
0: एक बार फिर से बताएंगे अपना नाम?
1: इकरामुद्दीन।
0: इकरामुद्दीन साहब।
1: जी,
0: पहले फोन कर चुके हैं?
1: जी मैडम, कई बार कर चुके हैं।
0: कई बार कर चुके
1: हैं।
0: अपनी बात शायद आज हो रही है ना?
1: बहुत, जी कई बार बात हो चुकी है।
0: हो चुकी है, हाँ। तो इकरामुद्दीन जी, अब सब बाहरों पे गीत चल रहे हैं पर बाहर आ नहीं पा रही है, लेकिन अब देखिए आप भी कोशिश कीजिए, कोई अच्छा सा गीत सुना दीजिए।

0: बहुत ही अच्छा।
1: हेलो
0: हाँ इकरामुद्दीन जी, बहुत बहुत ही अच्छा आपने गीत का चयन किया, बहुत अच्छे से आपने निभाया। ऐसे हम आपको दूसरे राउंड में ले चलते हैं, आपको गीत का अंश सुनवाएंगे, उसमें से शब्द चुनकर आपको 3-3

0: जी इकरामुद्दीन जी, कौन सा शब
1: जी
0: चुना?
1: मैडम,
0: दिल।
1: आपने क्या शब्द दिया मैडम? दीवाना,
0: ये गीत सुना है ना, इसमें देखो दीवाना शब्द आया है, बादल शब्द आया है,
1: दीवाना,
0: सावन है, दिल है, प्यार है, इतने सारे शब्द इस बार। ये तो
1: दिल प्यार यार मैं क्या जानू रे, दिल प्यार यार मैं क्या जानू रे, जानू रे तो जाने बस इतना मत तुझे जानू रे,
0: और
1: दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए।
0: एक और सुना दीजिए।

0: रह गए उनके अरमां आंसुओं में दे गए।
1: बहुत खूब इकरामुद्दीन जी, आपने सफलतापूर्वक ये राउंड भी क्लियर कर लिया। अब हम आपको ले चलते हैं तीसरे राउंड में। आपको म्यूजिकल ट्रैक पे गीत गाना होगा, करेंगे आप? सुनिए।

0: मैडम पकड़ में नहीं आ रहा।
1: आज नेमी जी जो है सेलेक्टेड सॉन्ग्स लगा रहे।
0: वो ही तो बता रहा हूँ ना, नेमी जी ने आज ऐसा ही बनाया है। मैं तो हार्दिक के सामने दे रहा हूँ, अम्बा ग्यारस की और मोहरम शरीफ की दोनों की शहरवासियों को।
1: कोई बात नहीं, लेकिन आपका प्रयास काफी सराहनीय है, आप इसे तेरे फोन करते रहिएगा।
0: थैंक यू,
1: थैंक यू।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी अंताक्षरी। प्यार का राग सुनो रे, FM बैंड 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। लीजिए हाजिर है कार्यक्रम तैम नै नमस्कार।
1: आपरी वाणी आकाशवाणी हाजिर है आपरो पसंदीदा प्रोग्राम तैम नै नमस्कार।

0: अरे अरे छोरिया हिट गई है।
1: अरे अटे जा काकू, अटे जा, अटे जा, थोड़ी सेवा में अटे जा।
0: मारी सेवा में दूजी दूजी मां खबू कर दे।
1: अरे मने क्यों नहीं कहने गई, कोने कहा, मने कहे को नहीं।
2: अरे अरे वे तो आज आई ही कोनी।
0: आया की कौन खेत में गया, क्या थी जान के।
2: अरे मने भेजी के होन की तू जा परी।
0: ओ होनी, अरे होनी आदिती कोनी कदी आवी कोनी यूं कहो।
2: अरे अरे मैं खेता में लागी आज आज वे गया परा तो मन के तू जा परी।
0: वाह वाह की कौन भाई ये थे आएगा तो की मार जी हो रोगो मनी। मैं यू कहता ओ है जो बदलियाड़ो गीत नो होना यो नी।
1: हां
0: आ तो भाई ये मारी ही है मैं जसियो कह भाई बदलिया ने ओ गीत लो कह है के बदलिया आगा मर जाओ बर जाओ यू।
1: हां हमें कई करो का?

0: मैं तो
1: नहीं है भाई,
0: बुला बुलाना था क्या के मैं गावे
1: ओ ये ओ मैं ओ ये मैं कहीं है थोड़ा मिन का नहीं कहीं है मिन पड़ो ही कवे मैं ओए तो पड़ो अपन देखे बात है के मैंने जी हाले जी कुदरती हाले
0: अरे बादल आया ने दाड़ा किया रात के पूछो मत कोरी बिजलियां चमकी ने किन कई
1: अरे भाई की कोनी में देखे कुदरत रा आतरी बात है कुदरत रो निजाम नारो है और उन्हें कह नहीं कर समझ ना रही समझे
0: हमें देखो काकू आज मैं निर्जल नहीं उपवास करी हूँ हमें देखो आज कर इंद्र देव प्रसन्न हो जाए तो ठीक है
1: भाई निर्जल इजिया सुकू है कह दे के पहला मंत्र था है भाई मैं कटू कटू पानी लाऊता किता दोरा लाऊता दो दो को दो घड़िया ले लाऊता पका लाऊता मैं आज काल क्या नहीं घर घर में है जो पानी पूगो मूटियां आएगी तो मिनक है जो कहीं एक थड़गड़ो की हवड़ है जो कह हम जी को नहीं बातड़ी ने पर बात आ है भाई पानी रो कह के बचाव करनो बसत करनो मोटी बात है क्योंकि मैं तो भाई देखे घड़ा कई का दे कीड़ा पर मैं कह मुतबल को नहीं पर आ है भाई के मैं तो मिन कह जो कह कर रोटी बिने रह जा आन कह नहीं खाने जाने बिने रह जा कर जा पर पानी ना हवा बिने को रहे सब बल्दी बाजे हम देखे पंखे रू देखो चिड़ी है कह नहीं मुट्ठी एक सीढ़ी है कह धोबो एक कबूतर है तो आ रही भाई देखे थोड़ा घड़ो कहे भाई कि कोई जाप तो करो चूण चुगो दो आन कोई गावड़िया है दूजा है भाईसेन कई है जो कह नहीं पुंदरा काम करे है खेलिया ही भरे है दूजा है तो दिन दिन है बने एंग बात है भाई ये पर दौड़ दिन तो करो हम जिर देखे कह साठ है आधो असाठ तो कह इंसान पग तो जाऊ नालो है अन हमें ही है जो हाल ही कई है जो कह थर जड़ा कह कोई आलसू वेला जो करिया को हूड़ हपाड़ कौ होनी
0: हाँ काकू
1: देखे बाढ़ कांटो कर लो वो खाद भी के लो खेत में हैंग बात है हम भाई जनों कोई बात कराई क्यों करी
0: अरे करो कनी काकू
1: मैं करो जे करो
0: अरे मैं तो देख करो थे बैठो नहीं बैठे करो कनी हो काकू
1: हाँ राम राम राम राम
0: आप लाया कि नहीं लाया अम्बर रस लाया कि नहीं लाया काकू
1: अम्बा लाया पड़िया
0: तो बचे रही आएगा
1: अरे पड़िया दे दे क्यों आज का करी खाऊ नहीं करे
0: अरे मैं तो खाऊ नहीं राजी
1: हाँ की कौन खाया
0: बराबर बराबर दीजो यू ने
1: खाया पिया अंग लगेगा दिया लिया साथ चलेगा राम राम
2: लगेगा
1: है
2: बाकी सब जंग लगेगा
1: बाकी सब जंग लगेगा और हंकर भाई आया आज
2: काकू कितनी बढ़िया बात बोली नहीं आदमी ने वाकई में मतलब पानी रोते कितना अच्छा महत्व बताए होते और वाकई में आदमी ने कहे की खाए पियांग लगेगा और सब जगह जो भी आप दान पुण्य में करना चाहिए
1: अरे की कौन भाई देखो वह जी सौखा है कि धरती मात कटे कटी तो वह है एक कहूँ यो मारी एक जान पहचान रहा बात हर बहुत गहरी बात हूं जो देखो कहूँ यो कोई बी आर रहा अस पर हा देखो मारी पलटी होगी है जो अपन मारवाड़ में तो उठे उम्बा ने कहो के भाई उठे तो रेगिस्तान है बहुत दोरा धरती है पानी इन्नी है गाड़िया इन्नी है नहीं है मैं कई दिन तो कहो करियो कि भाई आप रे कह भाई मारी यार पलटी है जो कैंसल हो जा सेवट है जो वही कोई नहीं पस मैं आया तो पटना बैठा पटना दिल्ली आया दिल्ली जोधपुर आया जोधपुर वहां हट दे गया करियान फंसे आगे बाड़मेर है जो बने लगया हमें भाई अटिनो उन्हाड़ा दिन में आया न तू है जो स्कूल या छोरा पानी पावे बाल्टियां भर बन बे कौ कह स्कूल या बे गब लिया पैर कौ है मानी वे स्काउट वाल कौ कौ कह माने
0: स्काउट गाइड बने हां
1: बे पानी पावे दूजा था मां पावे पानी पावे बे पयो धामियो गलो भाई पया ले लो छोरा कह भाई पया मारे कोई लेना कोई करना जब आदमी आगला होश पुरान कहो गए हे अटर हो नो

0: बाबरी इतनी सेवा करे है तावड़े में, तो दिन दिन है इन धरती ने, तो मारवाड़ में जोधपुर में कई मिनक आवे जदे रोता आवे, पर जावे जदी रोता रोता जावे।
1: क्या बात है,
0: क्या बात है, समझा? हाँ तो मैं पौड़िए चढ़ना।
1: हाँ सर बिल्कुल, आप उगेर आप।
0: एक तो वह पागी और एक वह रागी।
1: रागी तो जी को कोई कोई गीत गावे जी का राग वगैरह गावे जोर जोर जी को वह तो रागी वैसे।
0: हाँ
1: दूसरे के पागी।
0: पागी
1: पागी रो तो मनीषा जी थोड़ा बहुत हाथ लगाओ नहीं।
2: देखो मैं भी हूँ है रिछोरी, मैं तो खुद ही कू काकू के कदे कदे आ जाऊ थोड़ा सब सीख लू।
0: पागी पागी पागी हाँ हो रहे हो
1: ठंड
0: है।
1: हाँ पागी वो थोड़ा मुंडा मत नहीं आ रही है।
2: हाँ बस वो आ ही नहीं रही हो, बस
0: पगड़ा निशान जिको पहचान ले ठीक है। हाँ कटी कोई चोरी जारी वैन पर जा कहीं लारे आवे पागी
1: पत्तिन रहे होना है।
0: हाँ माने ओल्क नाला वे पहला पागी होता, मैं तो कह नहीं के भाई बे ट्रेनिंग दियोड़ा मारे एड़ा पागी चार पगाड़ा है जो है हो दिन बता दे।
1: डॉग स्क्वाड हेलो
0: मुझे पौड़ी सुन लो।
1: हाँ काकू आप आगे बताओ।
0: कूकनो मौर्य रात है, बलनो इंद्र रात है।
1: कितनी बढ़िया बात है कि हर चीज रो एक अलग मायनो है, मतलब कोई अगर मान लो अपना तो कोशिश करनी है, बाकी मालिक रे हाथ में।
0: हाँ जी बात है, आप भी खपत नहीं छोड़नी चाहिए।
1: खपत छोड़नी और आप रो
0: मौर्य ही बोले पर वो कह नहीं बरे जित बरे सा पर हुण वही तो कह नहीं कुदरत है ठोर करेंगे। दूसरे पौड़िए सदगम तीजे पौड़िए थे कोई आडी आको
1: काकू मैं आज की आडी हकू के तो ए मनीषा जी और मैना जी बताई थी जो है।
0: हां ए बताई के कौन बता ए, नहीं बताई हूं बता
1: नहीं ए बल्ला के सर धीमे हेड़ी बात नहीं आशीष खाया करे।
0: हां
1: और के आटी टोटी खेजड़ी मां मीठो रस। सही है बताओ
0: आटी टोटी खेजड़ी मां डाले डाले रस।
1: डाले डाले रस।
0: हां कौन है बता।
2: अरे वाह जलेबी तो कोनी
0: है। हां जलेबी है पचे
1: बिल्कुल जलेबी
0: सर। वाह
2: अरे वाह सर
0: वाह भाई वाह जलेबी नंबर दे के आई हूं थोड़ी है सारीया कटी तो।
2: अरे और 11 से दिन थे एड़ी मीठी चीज बताई हो।
0: हां बस
2: पर खा भी नहीं सका।
0: हां आज गानी हैंगरी 51 है थे जलेबियां लेना
2: के ने काले भेजला।
0: हां
2: काले भेजिया। हां भेजनो तो पड़ी।
0: अरे आज मेल नहीं कल खा लीजो
2: ठंडा की ने भावे गरम गरम जलेबिया चीज मान लो
0: भाई ये थे तो हैंग। राम राम
2: काकू।
3: राम राम
2: सर।
3: राम राम काकू ने भेजिए सुनन वाला तगड़ा एप्पल स्रोता ने बड़ी दिनिए सोदाना राम राम राम राम ऐसा काकू।
0: राम राम राम राम बिन भाई जोर बोले करियो को हीरा उन करियो को नहीं की करे। अरे हीरा उन करियो काकू बना दुकान
3: में तो बार है जन देम
0: ना।
3: घर बार महीने से रेट बात तो तो आवाज में बहुत जोर।
0: हम पौड़ी सुन लो
3: कटा दो काकू।
0: एक तो है लट्टू और एक है पट्टू। पट्टू में खेल भर के भाई पहले पौड़ी सट गा दूजे पौड़ी छाट पड़े अट्टे और बंदो कूदे उठे छाट पड़े अटे बंदो कूदे उठे।
3: अरे टैलेंट क्या टैलेंट और दी एक्सपीरियंस का अनुभव
0: क्यों
3: छाट पड़े अटे बंदो पड़े उठे अनुभव
0: अनुभव छाटो पड़े जरे थारी कोई नाचो कूद हो है दिखे
3: बिल्कुल।
0: हां मन रो मोरियो नाचन रुक जा थारो
3: वहां का को मार मम्मी कहे पे लड़ी रो उन रहता वो पट्टू बनावता।
0: हां पट्टू बनावता हमें तीजे पौड़ी आडी आको
3: आडी आके
4: अपने आप आले हैं रेड

0: pad alle pongli. Patir patu patir patu to deve nan tya kare ongli.
1: Oh, ji ji bilon ani.
0: Bilkul sahi jawab kaku.
1: Bilon kar bhai bilon honi.
2: हाँ काको
1: मानी
2: हाँ काको
1: कोई बात मानो को नहीं आजकल है भाई
2: अरे काको थाली बात करते टाली
1: खूब सुख गनो आवे थार खूब सुख हूँ कोई अंतर लगेगा
2: अरे अब आर है क्या मारा कहीं है कोई जान पहचान वाला दुबई गया दुबई वो ले नया खुशबू
1: ओ उटू है जो आ खूब सुख लाया
2: हाँ उटू लाया जब मैं तो लगा दे
1: आज मैं क्या हूँ हिनान तो कर लियो पर मारे मुआ हाबू तो गणित सौ को लाल लगे हो
2: अरे वो तो बढ़िया
1: मैं वहाँ विचार करियो पर भाई देखे आज तो कह नहीं अंतरियों मारी कह नहीं कि मंदर राजी हुई हो हाँ और कब है
2: और गीतर लो होना था क्या को
1: गीत होना
3: तो बंदाशुरी ढोरी बने तो चरे जंगल रोग हाश सादी

0: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
1: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
2: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानो जी का बाग, खोखरिया, बिराम मंडो।
1: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
3: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
4: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
5: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
6: दुनिया का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न सुख एक तरफ।

0: जोधपुर।
1: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रा सुख एक तरफ।
2: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद। विनायका हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।

0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
1: अब आप सुन रहे हो कार्यक्रम टेमने नमस्कार।
2: वाह भाई मानिए संदेशा ही होना दिया अन बात ही होना दी नम भाई से कोई बात करा दे राम राम। आज मिश्र भाई फोन आयो कोई मिश्र भाई खपत घनी करे कौन
3: हाँ
2: राम राम
4: राम राम
2: राम राम राम राम कौन बोलो भाई
4: राजा
2: ओ ठीक ठीक ठीक राज भाई है जो को भोपाल के फोन करियो एक तो वह है माल अन एक वह माल
4: हाँ
2: माल लाया
4: एक माता पिता है
2: माल माल माल कह
4: माता पिता
2: माता पिता ने माल थोड़ी क्या भाई एक तो वह माला फूलरी एक कोई मशीन में कोई सिलाई मशीन में इनको गले माल बचे यू कहो करे पहले पौड़ी साथ दिया कि मनी
3: त्योहार दे दो
2: मुझे पौड़ी है धरती पड़िया धरती नहीं रहे इन्हों कहो मुत बढ़े धरती पड़िया धरती नहीं रहे तो हुन्ना जी ना रुन्ना वाकई बात है भाई राम राम है हाँ राम राम
5: काकू राम राम घना घना राम राम काकू ने मानी भाई ने घना घना राम राम
2: राम राम मानू राम कौन मध भाई
5: मो रानी वाड़ा बोलू राजेश कुमार
2: ओ राज भाई बोले रानी वाड़ा आपकी बोलिया
5: मिला चालो
2: हाँ तो का हाल वाल है ने क्या मौसम बीजो की कण है
5: मौसम तो बा में मेरी तैयारी की दौड़ी है पर मैं आवे है नहीं
2: हाँ वो तो मैं जो
5: तो उड़ा है
2: हाँ
5: गर्मी घनी है उमस घनी है पर मैं आवे जा था
2: वे तो आगे उड़ता उड़ता गुजरात जावे
5: हाँ गुजरात जावे उड़ता उड़ता
2: हाँ बटे ठाड़ है जगह बटे बराबर है
3: हमें की कोने काको हमें काम करो हमें
5: तो घनी हाले पर वस्त्र जावे जा था
3: हमें आप एक यज्ञ करो
2: हाँ की कौन करा दे भाई
3: जरे जाई में
2: हाँ हाँ सी बात है
3: आप गणा खावे पर आटी ने
2: अरे भाई देखे हैं आप अपना खपत करे देखे कोई अरदास करे कोई प्रार्थना करे हैं क्या तो है ही है कुदरत ने बग कुदरत रूप एक है हमें पौड़िए सड़नो
5: सड़ा का हुकुम करो आप
2: एक तो वे हवा
5: हवा
2: और एक वे बुआ
5: हवा तो आप हवा आवे जैसे पंखियों खाओ के बलि पंखा दी खाओ एक बीजे का पूछिए आप
2: बुआ
5: बुआ आओ अपने बाप री बहन में वा भूई जी
2: बुआ
3: अरे हाँ हरण पूछ लेते हैं काको बहुत
2: अरे अत्रो आ जाती फोन की दोगे
3: अच्छा
2: तो अनुवाद हाँ
5: मैं पहल कर रविवार फोन लगाया था आपने काकू
2: हाँ लगा भी हो तो मैं बीजे पौड़िए का करनो
5: सदा वो
2: यूं के मुक्की ठोकन कंदो भंगू इनो का मतलब है
5: हुको प्याज रे वरने मुक्की ठोकने भंगो
2: काम में ले उनो तरीको काम पानी नहीं आवे तो बीजे पौड़िए सदी अपरा नतीजे पौड़िए कोई आडी आको
5: आडी आको
2: हाँ
5: तो काकू थोड़ा ध्यान आडी से हजमा होनी पड़ी

0: वाह भाई, मान ये की तो ठीक ही है भाई, कोई घरे आवे मन तो राजी व्याई है क्यों खाउन कमो ने मार वारू मिनक थे तू कह नहीं के
1: मारे जाओ था
0: बाहर जावे दिशावर जावे मजूरी करने ना आवे जो राजी व्याई भाई मन नो और तो कौन है ना मैं चौमा शरद दिन है तो कई लोग आई आपरे कोनिक नहीं आवे हैं आई खेती पाती हमारी राम राम
2: राम राम काकू राम राम
0: कौन बोलो हो ओ राणू जी आया भाई ठेठ ओ राणू जी होड़े होड़े घना बोलो कौन थे कोई नाश्तो पानी कियो को नहीं की करे
2: ना नाश्तो पानी ना मैं की तो है वार निकल ही आ के
0: हां
2: नपार तो करियो है ना घर आया हूं जरा रोटी दे
0: हां वाह बढ़िया करियो देखो कह ली के टाइम मत कोई काम निवेड़ो के अट्यू बाजू में हो जाए ये तो बेड़ा रब्बा या मुझी नहीं बच जाई हाँ हमें पाउड़ी है सड़नो एक दो वे आलो ने एक वे खाडो आलो को के
1: आडो आडो
0: आडो आडो खाडो ये कोई झूठा हूंटा रोपिया को रोपिया नहीं कोई ओले ओले रोपो तार बंदी दूजी करो हाजी बात है क्यों मिनक देखो लालच पूरो करने वास्ते दाव डंडे ने रिंद रोई रा जिनवरिया रही है जो पेट मार लाल ठोके हाँ तो बढ़िया कह दियो हैंगा आप अपने कर्म रुखाई हम दूसरे पौड़िए सजनो मीठा बोले मोरिया सांप सपूदा खाए हाँ हाँ सांप है जो मोरिया है जो जो गटकाए कभी खाओ तो दे क्या मोरिए रे सांप री लड़ी देखी कभी
1: नहीं देखेगा
0: नहीं देखी तो भाई

0: मौर्य कहनी दिखे जरा को है नहीं समझिया जीव जीव रे लागू है ओ आके तुझे पौड़ी सब जान तुझे पौड़ी थे मिनिन मूठी पेराओ की भड़करो आगे वाली जोड़ी भगवान बनाई भाई माल मगज में को बैठो नारायण जी थी बता दो बात हासी ऊंट को क्या कुदरत बनायो सगड़ो मिनक बनायो बात है जीओ, ज्ञान की बात कही जाती को कही कोई जीव जिनावर है पाडो बनायो तो कुदरत बनायो बर्द बनायो तो कुदरत बनायो और मैंने मगज लगा लगा ला रहे उन्हें कह नहीं के भाई कोई सगड़ो जोत दियो बाओ बा राम राम
1: बोली मीठी गाड़ी थी यार
0: मीठी तो बस कह दियो नहीं है तो रोज कह भाई लून जिम है और ए लून हल्लो खावे
1: यू
0: हाँ पसबुद्रे रहे जगह पसबुद्रे लून तो कह दी नहीं खावता दी यार खारो खाई वड़ा थेट राम राम राम राम है ओम भाई आया आज
1: आवाज धीरे आ रही काकु नहीं
0: हाँ आया कहीं है होले होले बोले भाई
2: अरे होले भाई बाप जी हमें आज ये कौन करियो है हम भाई की असरान आपने हम भाई की असरी
0: तो हम बार मोटोड़ा लाया का नंद के लाया जीवता रो जीवता रो वाह भाई वाह हमें पावड़ी चढ़ना है
2: हुकुम करो बाबूजी
0: एक तो वह गाग और एक वह गाग
2: गाग तो कोई दुख नहीं हो जावे जन कैसा गाग फटकी के मैं दबी लगा और और ये क्या
0: गाग गाग
2: गाग गाग तो एक गाग तो वैसे की बादल और गाग रहे
0: घाग का वो आदमी बड़ो घाग है
1: बहुत तेज है
0: गाती को कह गाती मारो है
1: घाग
0: ठीक है
1: और तो मने आता तो काकू
0: वो के को नहीं आओ तो बता देना होम जी ने हम दूसरे पौड़ी है के पग पूंगल धड़ कोटड़े बाहु बाहिड़ मेर फिर तो गिर तो जो दाने खास ठिकाणो केत गिंगड़े महक तापू महकटे पग पूंगल धड़ कोटड़े बाहू बाहिड़ में फिर तो गिर तो जोदाने खास ठिकानो केत
1: अब यहाँ तो
0: अरे है था है हाथ बहुत हाथ बहुत बातें जाने ओम भाई जागर करे ज्ञानी मिन्नक है
1: और तो ठाई चेका
0: तो जागर में लेगा अपन हाँ जागर में लेगा एक ठोड़ है ओ कहीं है तो देखो काल बाबत
1: और मने आ तो काकू
0: मैं हां थाने का आओ तो आओ तो
1: हां मैं तो
0: बताया पच का आओ तो बात करे
1: थे बोल रहे नहीं कोनी दो बीच में
0: मैं बोल पूरी मार बात को कर नहीं जा
1: यू कहीं करो इतने तो हाथ आते रह रहे नहीं तो तो आवे जाए यू कहीं करो काकू
0: हां वाह वाह के कौन भाई आज कर लो मैं तीजी पावड़ी मनी सबाई नहीं पूछो मन मन पूछनी जरूरत को नहीं
1: भाई मार मैं काकू जी को ही कह जी कावे मान तो
2: हुकुम करो रे
0: हां तीजी पावड़ी आडी आको
2: मैं आको
1: हां थन थोनी जागनो है थे आको काकू बताई बजे मत बंद

0: भाई साहब पेदलियो पेट जय जा बेटा भाई साहब नो चलिए खेल
1: बाबा बाबा जुआ कड़ा लो भाईयो मेट लगा परी मेट तो माँ तो भिजो पर माँ तो धो एकदम छोटकी छोटी दांता वाली है जो लाओ कहीं क्या है कांगी ठीक है थारे
0: आजकल तो हमें कटे हो मेट है तो कोई बाप रे जो ने आजकल कई तरह तरह शैम्पू लगा
1: हुए वहाँ की को नहीं अपन पड़ोतर आई को जुआ जुआ ठीक है ए बात है भाई मानी के कोई बात वह नहीं बस देन क्या देखो मैं जानू जाने से बता देगा नहीं कद कह होगा मत बता राम राम थारे टेलीफोन तो हैंग कट्टे
2: तो थाई वो का करो चला है हैंग डर जावे बच्चे बच्चे
1: डर जा मैं बच कोई ना रहूं को शेर हूं जी को डर जा राम राम बात करे वही मैंने की हूँ कोई कह नहीं कोई धरती माती जलमी हो ओ मिश्र भाई बड़ा क्या एक मारो कर एक सेठी पड़ा मिश्र भाई कहीं है कर टेलीफोन लगे को राम राम
0: दंदर सत करो तेरे
1: आसरा ओ मारो यासरो थारो यासरो हाँ हाँ कौन बोलो ओ भाई भाई रण जी आया है रण जी एक तो वह अगुणो एक तो वह अगुणो और एक वह उगणो
0: अगुणो तो मतलब पूर्व दिशा में नहीं मैंने के तौर पूर्व दिशा के अगुणो एक है जियो
2: उगणो
1: उगणो उगणो
2: उगणो
0: उगणो
1: उगणो को कह उगणो
0: उगणो
1: हाँ
0: उगणो मतलब कोई पेड़ उगणो या पेड़ मारे
1: हाँ ठीक ठीक ठोक ठोक जय बोलनी
2: फसल उगावा वही तो
1: हाँ उगणो ठोक ठोक जय बोलनी इन्हों मुतबल कई
0: इन्हों मत तो कूट कूट नागड़ो सिलेंडर मिलेडो जकर नहीं बोल जाते
2: जबरदस्ती होकर आनो के
1: हाँ जीजे पावड़ी आड़ी आको
0: जीजे पावड़ी में
1: आड़ी आको
0: पांच दो हमले कितनी सी टकरी
1: हाँ
0: बेरंग साई
1: हाँ
0: उन आड़ी रात नहीं बता उनका माँ बाप नहीं
1: ओह माँ बाप है ही कोई मालूम कौन करो लो बैठ गया परा सोडन थे ही बता दो
0: आए कौन मली बाड़ी
1: बाड़ी मुर्की बाप माँ बाप नहीं तो माँ बाप नहीं है भाई और हम कहूँ थंठा पड़े अपन आ है भाई देखे तो मानी मैं कह को कोई बारे खाउन कमाऊ ने गियोड़ा है नहीं आया के तो बारो कहो है के जीवड़ो कल्पे गणो हमने वो लाई हाउन में बाद में
2: बाद में
1: है कौन
2: आई काको आई
1: तो कहीं है भाई
2: होना था ना बढ़िया गीतड़
1: गीत

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम टैम ने नमस्कार। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सनसिटी चैनल है। अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में।

0: ये एफएम सनसिटी है, एफएम बैंड 102.1 MHz पर। दिन के 12 बजने वाले हैं। समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित लोगों ने बहुत काम किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था, जब तत्कालीन सरकार ने संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी को कमजोर करने का प्रयास किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। उन्होंने कहा कि उस समय नागरिकों के कई अधिकार सीमित कर दिए गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी इसका असर पड़ा। भारत आज से हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार विषयों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। सीबीआई के अनुसार ये कार्रवाई देश भर में डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी 200 से अधिक ठगी घटनाओं की जांच के तहत की गई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा है। ये सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के तहत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकते हैं। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबद्ध दोहरे अंशदान समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये समझौते अगले महीने की 15 तारीख से लागू होने वाले हैं। यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि

0: कोविड महामारी, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय किया है। घरेलू शेयर बाजार के संविदी सूचकांक आज लगभग 0.7% की वृद्धि के साथ कारोबार कर रहे थे। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 500 अंक के उछाल के साथ 77,550 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि से 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम एफएम सन सिटी से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम हम विविध भारती के अंदर से रिले करेंगे और साथ ही आपसे लगाकर आप दिन में 1:15 सुनेंगे हमारे विविध भारती के अंदर से रिले होने वाले कार्यक्रम।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज महान संगीतकार मदन मोहन का जन्मदिन है। हम उन्हें आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। साथ ही आज मशहूर अभिनेत्री करिश्मा कपूर का जन्मदिन है, तो विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें ढेरों शुभकामनाएं भी देते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में हम याद करेंगे मदन मोहन को और साथ ही करिश्मा कपूर की फिल्मों से कुछ गीत सुनेंगे। ये आवाज लता मंगेशकर और भूपेंद्र की, फिल्म का नाम मौसम, गीतकार गुलजार, संगीतकार मदन मोहन।

0: थोड़ा सा रोबीला और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ. तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया. नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ. मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हम वही करते रहोगे.
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन, कौन
2: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी का लिखा गीत सुनिए, आवाज मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम हीर रांझा.

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में अब सुनिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। स्वर लता मंगेशकर का है और ये फिल्म है चिराग।

0: जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: और लीजिए अब सुनिए राजा मेहदी अली खान की रचना, आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है मेरा साया। संगीतकार हैं मदन मोहन और अभी तक हम आपको सुनवा रहे थे मदन मोहन की संगीत रचनाएं।

0: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे राजा मेहदी अली खान का लिखा गीत। आवाजें मदन मोहन और लता मंगेशकर की थी। फिल्म का नाम था वो कौन थी।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म मेरा साया का गीत सुना। गीतकार राजू मेहदी अली खान थे और संगीतकार थे मदन मोहन।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूँ मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: दोस्तों अभी तक आप सुन रहे थे मदन मोहन की संगीत रचनाएं और अब हम आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री करिश्मा कपूर की फिल्मों से कुछ गीत। तो लीजिए पहले हम आपको नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा हुआ ये गीत सुनवा रहे हैं। उदित नारायण, अलका याग्निक और सपना अवस्थी की आवाजें। फिल्म का नाम राजा हिंदुस्तानी।

0: गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आनंद मिलिंद का संगीत, समीर के बोल, उदित नारायण की आवाज और ये फिल्म है अनाड़ी।

इस कार्यक्रम का अब आखिरी गीत सुनिए। आनंद मिलिंद का संगीत, समीर के बोल, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें, फिल्म का नाम कूली नंबर 1।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? आज फिर तैयार है ना मेरे साथ सुरीला सफर में निकलने के लिए? मुझे पता है आप तैयार हैं। देखिए ना, बहुत ही एक सुंदर विचार है कि जीवन जो है एक संगीत वाद्य यंत्र के समान है, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसा है। जिस तरह एक वीणा या गिटार से निकलने वाली धुनें यंत्र की बनावट से ज्यादा उसे बजाने वाले वादक पर निर्भर करती है, ठीक उसी तरह हमारे जीवन की लय और सफलता हमारे दृष्टिकोण और हमारे कार्यों पर निर्भर करती है ना? तो फिर आप देखिए ना कि आप अपने जीवन के स्वयं रचयिता हैं। हर परिस्थिति, हर सुख और दुख में ये आप तय करते हैं कि कौन सा सुर हमें बजाना है, यानी कौन सा काम हमें करना है। तो संगीत की तरह हमारे जीवन में आने वाली उतार चढ़ाव और भावनाओं को व्यक्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम बनते हैं ये इंस्ट्रूमेंट, यानी हमारे वाद्य यंत्र। तो जैसे एक वाद्य यंत्र के सुर में रखने के लिए, उसको सुर में रखने के लिए नियमित अभ्यास की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर सीखने और धैर्य की जरूरत होती है ना? और यदि इन तारों को बहुत ज्यादा कस दिया जाता है तो क्या होता है, वे टूट जाते हैं, और अगर ढीला छोड़ दिया जाता है तो उनसे सुर नहीं निकलता। तो जीवन में संतुलन बेहद जरूरी है। बस यही बात हमारे गीत संगीत में भी लागू होती है। जी हाँ, हमारे संगीतकार जब किसी गीत की रचना करते हैं तो हर वाद्य यंत्र को कस के रखते हैं, और जब कोई निर्देशक उन्हें पर्दे पर फिल्माता है तो वहाँ पर भी उन वाद्य यंत्रों के साथ उन गीतों को गाया जाता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। समझ गए ना आप मेरी बात? आज की हमारी जो टेक्स्ट है, आज का हमारा जो टेक्स्ट है वो ये है कि अक्सर जब कोई किरदार अकेला होता है, उदास होता है या प्यार में होता है, तो पर्दे पर उसे किसी वाद्य यंत्र के साथ नायक या नायिका अपने जज्बात पेश करते हुए दिखाए जाते हैं, तब वो सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि स्क्रीन पर रोमांस, उदासी या दिल की गहराइयों को दिखाने का एक जरिया होता है। फिल्मी दुनिया के सुनहरे दौर से लेकर आज तक एक खास वाद्य यंत्र पर कई जादुई गीत रचे गए हैं, फिल्माए गए हैं, और कई बार गानों की शुरुआत उसी वाद्य यंत्र की धीमी और मीठी मीठी धुन से हुई है। बाद में हाँ, अंतरा आते आते और सारे वाद्य यंत्र भी उसमें जुड़ जाते हैं। तो आज हमारे दोस्तों को बताना है कि वो कौन सा वाद्य यंत्र है जिनसे जुड़े खूबसूरत गीत आज मैं लेकर आई हूँ। जी हाँ, हम आपको गीत सुनवाने वाले हैं। इससे पहले हम उन श्रोताओं को बता दें जो हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं, www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर वो अपनी बात

हम तक पहुंचा सकते हैं, विविध भारती परिवार से जुड़ सकते हैं। तो चलिए पहला गीत आपको सुनवाते हैं और आपको अंदाज लगेगा कि ये कौन सा वाद्य यंत्र आज हम लेकर आए हैं। हमारे कई श्रोताओं ने तो सही लिखा है और कई श्रोताओं ने बहुत सारे वाद्य यंत्रों की बात कही है। तो आइए सुनते हैं ये पहला गीत, खय्याम साहब की धुन, साहिर लुधियानवी के बोल, जगजीत कौर की आवाज और फिल्म का नाम शगुन। याद करिए पर्दे पर नायिका कहाँ बैठी है, किस वाद्य यंत्र के साथ उनकी उंगलियां थिरक रही हैं।

जी, तो अभी आपने जगजीत कौर की आवाज में फिल्म शगुन का ये गीत सुना। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीत दिया था खय्याम साहब ने। और हमारे श्रोताओं ने बता दिया है कि आज हम वाद्य यंत्र पियानो की बात कर रहे हैं। जी हाँ, और देखिए ये जो वाद्य यंत्र बज रहा है ये भी पियानो ही है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बात लिखी है और वो लिखते हैं कि भाई आज पियानो से जुड़े कुछ फिल्मी गीत आप लेकर आई हैं। और बहुत सारे श्रोताओं ने तो बहुत सारे वाद्य यंत्रों का जिक्र कर दिया है, जैसे कि गिटार, हारमोनियम, ढोलक, वायलिन, शंख, मृदंग, तबला, सैक्सोफोन, सितार और बांसुरी का। नहीं नहीं, आज हम बात करेंगे किस पर? पियानो पर। जो पियानो से जुड़े गीत हैं जहां पर नायक या नायिका की उंगली थिरक रही है पियानो पर। एक श्रोता लिखते हैं कि पारिजात जिस घड़ी निशब्द झरते हैं धरती की गोद में, तब दबे पांव सितार की झनकार तारों की ओढ़नी ओढ़कर सोए कंदील को जगा देती है। दुख सुख का कोई भी पल हो, वाद्य कोई भी हो, कुछ गीतों ने जीवन में बड़ा डांडस बधाया है। वाद्य कोई भी हो, ये हमारी संवेदना की दुनिया के सच्चे साथी हैं। ये गीत जो आज बजेंगे वे हमारी सांसों में तिरते हैं, कानों में उतर कर मन के अंतर्मन को विकल कर देते हैं। आज के

सुरीले सफर में जीवन रस में डूबे गीत सुनने को मिलने वाले हैं। कल्पना को परवाज देते इन गीतों की अनुगूंज पहरों पहर मधुश किए रहती है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है, देखिएगा आपके जो गीत आपने लिखे हैं क्या वो गीत हमारी पसंद से मेल खाते हैं। आपने लिखा है कि आज मीठी धुनों से सुरीले संगीत से सजा है सुरीला सफर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत के अनुसार आज के गानों में विभिन्न वाद्य यंत्रों की झनकार सुनने को मिलेगी, बहुत ही सुंदर विषय है। जी हाँ, वैसे तो हर गाने में बहुत सारे वाद्य यंत्र इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन हमने जहां खास तौर से पियानो बजाया गया है उन गानों को चुना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि और वो वाद्य यंत्र और कोई नहीं पियानो ही है। आज हम पियानो पर बजने वाले गाने सुनेंगे, जैसे कि इन्होंने गाने का जिक्र भी किया है। वहीं एक साथी लिखते हैं कि नायक और नायिका को जब दुख और उदासी घेर लेती है तो दिल की व्यथा को उजागर करने के लिए वो गाने का सहारा लेते हैं और पियानो बजाकर अपना दुख व्यक्त करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पियानो सिर्फ लकड़ी, तार और चाबियों का ढांचा नहीं है, वो इंसानी जज्बातों को सुरों में ढालने का एक जरिया है। जब इसकी सफेद और काली चाबियां पर उंगलियां थिरकती हैं तो मानो वक्त थम जाता है। पियानो की धुन में शब्दों की जरूरत नहीं होती, इसकी धीमी आवाज जहां आंखों में आंसू ला सकती है, वहीं इसकी तेज और ऊर्जावान धुन थिरकने पर हमें मजबूर कर देती है। बहुत सुंदर क्लासिक विचार ठीक हमारे आज के गीतों की तरह आपके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आगे बढ़ते हैं और वैसा ही एक और गीत सुनते हैं, जहां कौन है देखिएगा, शायद दिलीप कुमार साहब की उंगलियां थिरक रही हैं। मुकेश की आवाज, फिल्म का नाम अंदाज, मजरूह, सुल्तानपुरी के बोल और नौशाद साहब की धुन।

0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि अभिनव अन्वेषण की पर्याय बन चुकी जोशी साहिबा का ये इबारत पूर्ण रूपेण कार्यक्रम अनुरूप है जो सफर को सुरीला और नशीला बनाएगा। साज बिन आवाज अधूरी, यंत्र बिना मंत्र अधूरा, आवाज को अंजाम हासिल करने में इन यंत्रों का महत्वपूर्ण योगदान।
1: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। दिन के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी वाटिका।

0: नमस्कार, आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति पुरोहित और मेरे साथ है मेरी प्यारी सखी
1: ज्योत्सना।
0: आप जुड़ चुके हैं हमारी नारी वाटिका से,
1: तो आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन।
0: जेठ महीने की ये तपती दोपहर, सूरज का कड़ा इम्तहान और इस बीच हमारी आस्था का सबसे बड़ा पर्व।
1: जी हाँ, आज है निर्जला एकादशी।

0: सच में दोस्तों, इस तेज गर्मी में जहां हम आधा घंटा भी बिना पानी के नहीं रह सकते, गला सूखने लग जाता है,
1: जी
0: वहीं आज कई श्रद्धालु बिना पानी की बूंद पिए निष्ठा से इस पर्व को मनाएंगे। जानेंगे हम इस एकादशी के बारे में। बने रहिए नारी वाटिका के संग, जहां श्रद्धा भी है, भक्ति भी है और अपने पसंदीदा गीतों की त्रिवेणी भी है।

0: जी हाँ, 25 जून यानी आज साल की सबसे बड़ी एकादशी है। इस दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। ज्योति, ऐसा कहा जाता है कि इस एकादशी पर व्रत पूजा करने से 24 एकादशियों के समान फल प्राप्त होता है।
1: पता है ज्योत्सना, इस दिन किसी पौधे की भी पूजा की जाती है जो किसी जो विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। इस दिन तुलसी माता के पौधे की पूजा अवश्य करनी चाहिए, जो कि विष्णु प्रिया मानी जाती हैं। जैसा कि अभी आपने कहा, तुलसी को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इस दिन तुलसी जी को हल्दी वाले अक्षत अर्पित करने चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी को लाल पीली चुनरी पहनाकर आज के दिन तुलसी माता भी भगवान विष्णु के लिए निर्जल व्रत रखती है। इसलिए तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये निर्जला एकादशी है।
1: और हो सके तो इस दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना भी नहीं चाहिए। और पता है, इस दिन किया गया जो स्नान है, दान है और जप है, कार्य, वो सभी हमेशा के लिए मतलब अक्षय हो जाते हैं। और इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। सखियों, भीमसेनी एकादशी क्यों कहते हैं हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए आगे बढ़े चलते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: ज्योति, आप बात कर रही थी निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है,
1: बिल्कुल
0: क्या
1: कहा
0: इसके
1: जाता
0: पीछे
1: है,
0: कोई कथा छुपी है क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल ज्योत्सना, इसके पीछे कथा ऐसा है कि एक बार क्या होता है कि बहुभोजी भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि मुझसे कोई भी व्रत नहीं होता है, तो आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि मैं वो व्रत करूं और
0: जी
1: मेरा उद्धार हो जाए,
0: जी
1: सदगति हो जाए। तो व्यास जी ने कहा कि तुमसे यदि वर्ष भर की सारी एकादशी नहीं हो सकती तो कोई बात नहीं, केवल तुम एक निर्जला कर लो, यानी आज ही का दिन, आज ही
0: जी
1: की एकादशी यानी निर्जला एकादशी, उसे कर लो तो तुम्हें वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिर्फ एक निर्जला कर लोगे तो सारी एकादशियों का यानी 24 एकादशियों का फल
0: मिल
1: तुम्हें मिल
0: जाएगा।
1: जाएगा। तो भीमसेन ने वो एकादशी की और इसीलिए निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी कहते हैं।

0: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारें लालजी नर्सरी, रानो जी का बाग, खोखरिया बिरामंडो।
0: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
2: लालजी नर्सरी, आप कुछ समय हरियाली में बिताओ।

0: जून नेशनल इनफर्टिलिटी जागरूकता का महीना है। इसी अवसर पर आइए सुनते हैं शहर के प्रसिद्ध इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ की राय।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहम्मद शकील उप जिला अस्पताल समीरपुर से बोल रहा हूँ। हर दंपति का सपना एक खुशहाल परिवार बसाने का होता है, लेकिन इनफर्टिलिटी यानी बांसवन कई दंपति का सपना साकार नहीं होने देता। इनफर्टिलिटी का अर्थ है एक वर्ष तक नियमित प्रयास के बावजूद गर्भधारण न होना। यह हर 6 में से एक दंपति को प्रभावित करता है। याद रखिए, इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला ही नहीं बल्कि पुरुष भी हो सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव से लेकर मॉडर्न प्रभावी उपचार जैसे IVF तक उपलब्ध हैं। अब समय है कि हम इस विषय पर बिना संकोच खुलकर बात करें और डॉक्टर से उचित मार्गदर्शन लें। धन्यवाद।
0: गुफिक बायोसाइंसेस के जेनोवा विभाग द्वारा जनहित में जारी।
2: ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका अपनी वाटिका यानी कि नारी वाटिका में। जोसना, हम बात कर रहे थे निर्जला एकादशी की। वाकई में पानी के बिना रहना बहुत बहुत टिपिकल है,
3: मुश्किल
2: यानी कह सकते हैं कि बहुत कठिन व्रत है।
3: पर इस एकादशी में आहार के साथ जल का संयम रखना भी जरूरी है। ज्योति
2: जी, बिल्कुल।

0: क्योंकि ये व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। ये अनुशासन और मन की शुद्धि को बढ़ाने का सबसे अच्छा माध्यम है।
1: जी
0: जलदान, अन्नदान, फलदान तथा जरूरतमंदों की सहायता करना पुण्यदायी माना जाता है।
1: बिल्कुल, तभी तो कहा गया है कि दान से बढ़कर कोई धर्म नहीं और सेवा से बढ़कर कोई कर्म नहीं, जो बांटे खुशियां और सम्मान वही बन जाए सच्चा इंसान।

0: सखियों, नारी वाटिका में हम हमेशा प्रकृति के करीब आप और हम चाहते हैं, कोशिश रहती है कि हम प्रकृति के सानिध्य में रहें, उनसे खूब सारी बातें करें। और जहाँ बात नेचर की होती है तो इससे जुड़े कुछ पेय पदार्थ हैं उनके बारे में जानने की भी इच्छा होती है। तो आइए सुनते हैं भेंट वार्ता प्राकृतिक पेय निर्माता नरेंद्र कुमार से ज्योत्सना की फोन आउट बातचीत।
1: प्रकृति की गोद में छिपा है स्वास्थ्य का अमृत, फलों की मिठास, जड़ी बूटियों की शक्ति और परंपरा का स्वाद। जब कृत्रिमता के दौर में लोग प्राकृतिक विकल्पों से दूर हो रहे हैं, तब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रकृति के इन उपहारों को जन जन तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं। तो सखियों, आज फोन के माध्यम से हमसे जुड़े हैं प्राकृतिक पेयों के निर्माता श्री नरेंद्र कुमार जी। आपने प्राकृतिक पेयों के क्षेत्र में अपने नवाचार और समर्पण से एक अलग ही पहचान बनाई है। आइए उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार नरेंद्र जी, ना आकाशवाणी जोधपुर के नारी वाटिका का कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, हमारे प्यारे श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: जी नरेंद्र जी, सबसे पहले हमें बताइए कि प्राकृतिक पेय क्या होते हैं।
2: प्राकृतिक पेय वे पदार्थ हैं जो फल, फूल, जड़ी बूटी, बीज और पारंपरिक प्राकृतिक सामग्री से तैयार किए जाते हैं। इनमें बनावटी रंग, स्वाद और केमिकल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं होता, जिससे हमारे शरीर पर कोई साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। ये शरीर को ताजगी प्रदान करते हैं और हमारी पारंपरिक खाद्य विरासत को भी आगे बढ़ाते हैं।
1: आप स्वयं प्राकृतिक पेयों का निर्माण करते हैं, आपको इस क्षेत्र में कार्य करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ऐसा क्यों लगा कि इसको अपना कार्य क्षेत्र बना लेना चाहिए?
2: इसकी प्रेरणा हमें परिवार से ही मिली।
1: जी,
2: मेरे दादाजी वैद्य थे। मैंने बचपन से ही उनको जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाकर लोगों को इलाज करते देखा। उन्हीं से प्रभावित होकर मैंने भी वेद विशारद कोर्स किया और घर में भी शुरू से ही मेरी मम्मी ताजे फल और सब्जियों से पेय पदार्थ बनाकर हमें पिलाती थी। लेकिन बदलते समय के साथ महसूस हुआ कि आधुनिक जीवन शैली में लोगों के पास इन पारंपरिक पेयों को बनाने का समय ही नहीं रहा, ना वो चाहते हैं और वो इनसे दूर होते जा रहे हैं। आज के युवा और बच्चों को तो इसका पता भी नहीं है, इसलिए हमने इन्हें लोगों तक फिर से पहुंचाने का प्रयास शुरू किया।
1: जी नरेंद्र जी, भारत में कई पारंपरिक प्राकृतिक पेय हैं, आप कौन कौन से विशेष पेय बनाते हैं, किसमें आपकी विशेषता है?
2: वैसे तो सारे प्राकृतिक पेय खास ही होते हैं, पर सबसे खास पेय बार्ले वाटर और गवावा यानी अमरूद का जूस है। अमरूद के अंदर और जैसे संतरे और नींबू से ज्यादा विटामिन सी होता है।
1: जी,
2: कैलोरी कम होती है, फाइबर ज्यादा होता है, तो हार्ट को स्वस्थ रखने में भी सहायक होता है। इसमें मौजूद पोटेशियम और फाइबर ब्लड प्रेशर को संतुलित करते हैं और खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करने में मदद करते हैं। वजन कम करने में भी सहायक होते हैं।
1: जी,
2: क्यों फाइबर ज्यादा होता है तो पेट भरा भरा रहता है हमेशा। बार्ली वाटर है यानी जौ का पानी, जो पेट की हर समस्या जैसे एसिडिटी है, पथरी है, उसका सबसे बेस्ट इलाज।
1: जी,
2: स्किन को भी ग्लोइंग रखता है, वेट लॉस में भी मदद करता है।
1: इसे कब कब लेना चाहिए और कितनी मात्रा में लेना चाहिए?
2: इसे 1 लीटर से 4 लीटर तक दिन में सेवन कर सकते हैं, पर भूखे पेट करें तो ज्यादा इफेक्ट करता है।
1: अच्छा,
2: और आयुर्वेद में माना गया है कि खाने के 2 घंटे बाद पेट भूखा ही माना जाता है।
1: जी,
2: इसके अलावा पंचामृत जिसमें तुलसी, पुदीना, अदरक, नींबू, जीरा का समावेश है, और उसी के साथ अष्टामृत है जिसमें भी तुलसी, पुदीना, अदरक, नींबू, जीरा। खुशबू के लिए हमने सौंफ, काला नमक और हाजमा के लिए दालचीनी, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है।
1: जी,
2: प्याज की तलब नहीं होती, शरीर को हाइड्रेट रखता है।
1: और कोई पेय जो आप विशेष रूप से बनाते हैं?
2: सौंफ है और कोकम है, जो शरबत है जो शरीर को ठंडक देते हैं। इमली पाना और कच्ची कैरी का पाना भीषण लू से बचाता है।
1: जी,
2: और इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। और किसी भी शरबत में सब्जा के बीज या गोंद कतीरा डाल के पिया जाए तो गर्मी से राहत मिलती है और कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में मिल जाता है।
1: जी,
2: वहीं जामुन है, बेल है, आंवला मौसम के फल है, इनका जूस या शरबत न केवल ताजगी देते हैं बल्कि डायबिटिक पेशेंट के लिए नेचुरल स्वीटनर का काम भी करते हैं और इनकी डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी सहायक है। और खास बात यह है कि बार्ले वाटर के अलावा कोई भी पेय हम उपवास या व्रत फास्ट में भी ले सकते हैं।
1: जी नरेंद्र जी, आपने इतने अच्छे पेयों के बारे में हमें बताया, तो इन सभी पेयों को तैयार करते समय आप किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं?
2: हमारी हमेशा कोशिश यही रहती है कि हम लोकल और सीजनल फ्रेश सामग्री का ही उपयोग करें।
1: जी,
2: स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है और सही विधि से बनकर तैयार हो ताकि असली स्वाद बरकरार।
1: जी, आपने बताया कि आजकल के युवा और बच्चों को तो इन पेयों के बारे में पता ही नहीं होता, और आज की जो युवा पीढ़ी है वो

0: तेजी से पैकेज ड्रिंक्स की ओर आकर्षित हो रही है। ऐसे में प्राकृतिक पेयों को बढ़ावा देने के लिए और क्या क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं?
1: हमें इन पारंपरिक पेयों की कहानियाँ, उनके बनाने के पीछे का इतिहास, स्वाद, उनके लाभ और सांस्कृतिक महत्व को युवाओं तक पहुँचाना चाहिए।
0: जी,
1: नए आकर्षक रूप और बेहतर प्रस्तुति के साथ उन्हें आधुनिक जीवन शैली का हिस्सा बनाया जा सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। नरेंद्र जी, अंत में हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: प्रकृति ने हमें स्वाद और स्वास्थ्य से भरपूर अनेक उपहार दिए हैं। मैं तो बच्चों और युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ, आइए हम अपने पारंपरिक प्राकृतिक पेयों को अपनाएं, स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करें और अपनी समृद्ध खाद्य संस्कृति को आगे बढ़ाएं।
0: जी,
1: और युवाओं से यही विशेष कहना चाहता हूँ कि आधुनिकता को अपनाने के साथ साथ अपनी पारंपरिक खाद्य धरोहर को भी जानें और उसका सम्मान करें। हमारे गांवों, घरों और क्षेत्रों में ऐसे अनेक पेय हैं जिनमें स्वाद के साथ हमारी संस्कृति की कहानी भी समाई हुई है, उन्हें अपनाएं।
0: नरेंद्र जी, आपने अपने अनुभवों और महत्वपूर्ण जानकारियों को हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।
1: धन्यवाद, धन्यवाद, आपने भी हमें इतना समय दिया, उसके लिए आपको भी धन्यवाद।
0: जी, हमें विश्वास है कि आपकी बातें हमारे श्रोताओं को प्राकृतिक पेयों को अपनाने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की प्रेरणा देगी। तो सखियों, आज की इस रोचक और ज्ञानवर्धक बातचीत से हमें ये समझने का अवसर मिला कि प्राकृतिक पेय केवल स्वाद और ताजगी का स्रोत नहीं है, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली की ओर एक महत्वपूर्ण कदम भी है।
2: सखियों, अभी आपने प्राकृतिक पेय निर्माता नरेंद्र कुमार से ज्योत्सना की फोन आउट बातचीत सुनी।

0: ज्योति, हमारी भारतीय संस्कृति में व्रत और उपवास केवल धार्मिकता से नहीं बल्कि स्वास्थ्य और विज्ञान से उसका बहुत ही गहरा जुड़ाव है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, वो सारे टाइम काम करता रहता है, पर उपवास के दौरान भोजन का सेवन कम होने से उसे आराम मिल जाता है और उसकी जो कार्य क्षमता है, जो उसकी एफिशिएंसी है, वो बेहतर हो जाती है।
1: बिल्कुल, और इसके साथ ही जोशना पता है, बॉडी भी डिटॉक्स होने लग जाती है, क्योंकि व्रत के दौरान हमको एनर्जी तो चाहिए होती है और लेते कुछ भी नहीं है हम लोग, तो हमारे शरीर के अंदर जो फैट जमा होता है ना, उसका यूज होना शुरू हो जाता है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि नेचुरल तरीके से हमारे बॉडी का क्लीनिंग होना शुरू हो जाता
0: बिल्कुल।
1: है।
0: बिल्कुल, और जिससे वजन भी कंट्रोल में रहता है, और साथ में जब व्रत के दौरान हम बैलेंस डाइट लेते हैं, लिमिटेड डाइट लेते हैं, तो आहार का सेवन कम हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: और हमें उससे हमें स्वस्थ रहते हैं, फिट एंड फाइन रहते हैं और एक्टिव रहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और फिर से मन में नए जीवन के लिए तमन्ना और जीने के लिए तमन्ना भी जाग जाती है।

0: जून नेशनल इनफर्टिलिटी जागरूकता का महीना है। इसी अवसर पर आइए सुनते हैं शहर के प्रसिद्ध इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ की राय।
1: मैं डॉक्टर दीपाली लोढ़ा, लोढ़ा हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पाली से बोल रही हूँ। हर दंपति का सपना एक खुशहाल परिवार बसाने का होता है, लेकिन इनफर्टिलिटी यानी बांझपन कई दंपतियों का यह सपना साकार नहीं होने देती। इनफर्टिलिटी का अर्थ है एक वर्ष तक नियमित प्रयासों के बावजूद गर्भधारण न होना, वह हर 6 में से एक दंपति को प्रभावित करता है। याद रखें, इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला ही नहीं बल्कि पुरुष भी हो सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव से लेकर मॉडर्न प्रभावी उपचार जैसे IVF, ICSI, IUI आदि उपलब्ध हैं। अब समय है कि इस विषय पर बिना संकोच के खुलकर बात करें और डॉक्टर से उचित मार्गदर्शन लें। धन्यवाद।
0: गुफिक बायोसाइंसेस के जेनोवा विभाग द्वारा जनहित में जारी।
2: सखी बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी की, व्रत की, उपवास की और सेहत की। जो उसने पता है कि जब हम उपवास करते हैं ना तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाता है और कंसंट्रेशन पावर आपकी बढ़ जाती है। और इसमें ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ खाने को छोड़ा है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हमारे जो विचार हैं वो भी बहुत प्योर हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। हम अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं और खुद को सात्विक बनाने का बहुत प्रयास करते हैं
3: जी।
2: इतना ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इसका इस समय जब व्रत वगैरह हम कर रहे होते हैं तो हमारा जो पेशेंस लेवल है वो भी बहुत बढ़ जाता है और एक पॉजिटिव सोच के साथ हम अपने काम को अंजाम देने लग जाए।
3: बिल्कुल, क्योंकि सच्चे व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं होता ज्योति, बल्कि मन को शुद्ध करना और पावन बनाना होता है
2: जी।
3: संयम, अनुशासन और सेवा के माध्यम से ही जीवन को सही मायनों में सजग बनाया जा सकता है, क्योंकि जिंदगी एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जिसे हर किसी को गुनगुनाना चाहिए।

आपकी बातें सुनता हूँ, आपके लिए सोचता हूँ, आपके सुझाव देखता हूँ, उसी से मेरे विचारों की एक दौड़ शुरू हो जाती है जो आकाशवाणी के माध्यम से आपके पास।

0: कई बार सखी उपवास के बाद में ऐसा हम देखते हैं कि थोड़ी बेचैनी सी महसूस होने लगती है, कमजोरी आ जाती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है। कई ऐसा नहीं होता जो उसने बीपी लो हो रहा है, हम
1: चक्कर आ
0: है
1: रहे
0: ना
1: हैं।
0: चक्कर आ रहे हैं, वॉमिट सी हो जाती है। तो थोड़ा सा हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि पानी का इंटेक बढ़ाना चाहिए, पानी लेते रहना चाहिए। और हर समय तो पानी नहीं अच्छा लगेगा आपको,
1: जी
0: क्योंकि आप पूरा खाली पेट होते हैं, तो कभी नींबू पानी पी लें, कभी जूस पी लें, कभी मट्ठा ले लें, कभी लस्सी ले लें। तो इन सभी चीज़ों को हम अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं।
1: और दिन भर में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए। अक्सर लोग व्रत उपवास के दौरान चाय कॉफी ज्यादा ले लेते हैं।
0: मेरे साथ में ये होता है जोस्ना कि आज व्रत है, कुछ खाना नहीं है, कुछ काम करना है, चलो भी थोड़ी सी एनर्जी चाहिए,
1: जी
0: तो चलो आधा कप चाय बनाते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और इससे व्रत उपवास के दौरान चाय कॉफी अधिक लेने से शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, कैफीन का इंटेक भी ज्यादा हो जाता है।
0: जी
1: इसके साथ साथ अगर इसके स्थान पर हम पुदीने का पानी लें, स्मूदीज लें या
0: जी
1: इलायची वाली चाय ले लें तो, और फलों का सेवन करें अधिक से अधिक करें, तो शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखने में पानी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर, माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों, बात हो रही थी डिहाइड्रेशन की, तो इसको कम करने के लिए हम पानी भी खूब पी सकते हैं। और जहन में आ रही है कुछ शरबतों के बारे में भी ध्यान आ रहा है। एक छोटी सी भारतीय बेरी जो है वो गर्मियों में कुछ हफ्तों के लिए हमारे बाजार में मिलती है, और अभी वही मौसम है। अगर आपको खट्टा स्वाद पसंद है तो इससे बनने वाला ये बेहद ही ताजगी भरा पेय आपको ज़रूर पसंद आएगा। इससे बनता है आपका फालसा का शरबत।
2: और उड़ीसा की एक विशेष पारंपरिक फर्मेंटेड ड्रिंक भी है ज्योति, जो बहुत ही स्वादिष्ट होने के साथ साथ सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे जगन्नाथ टेम्पल में महाप्रसाद के रूप में भी परोसा जाता है, जिसका नाम है टोंका तोरानी
1: जी।
2: और साथ में हम अगर गोवा की तरफ चलें तो गोवा की दो चीज़ें दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं, वहाँ के खूबसूरत तट और दूसरी सोल कड़ी। इसकी हर चुस्की शरीर को भीतर से ठंडक पहुँचाने वाली मानी जाती है। सोल कड़ी केवल एक पेय नहीं बल्कि गोवा और कोंकण क्षेत्र का समृद्ध पाक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

0: हैं
1: आए हैं
0: खबर सुनो ये हम लाए हैं
2: इसी सुनी
3: जी जी बिल्कुल
2: जी बिल्कुल हमारे कार्यक्रम को पूरा करने में सहयोग दिया विक्रम सिंह भाटी एचपीटी से और एफएम से थे सीएल सोनी और कंट्रोल रूम से सुनील जयपाल
3: बिल्कुल और आपकी दो दोस्त थी ज्योत्सना और ज्योति और हमारी आवाज़ को आप तक पहुंचाया सत्येंद्र चारण ने और इस पूरी कार्यक्रम की थीम को तैयार किया मनीष कुमार सोलंकी ने तो दीजिए

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी वाटिका। यह आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच

0: मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार दो शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। और मैनचेस्टर में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियां आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चो में सिमटा जग किंतु विकल प्राण बिहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
3: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
4: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस,
5: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
4: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
0: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की यह बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने

0: ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
1: The global south should be enabled.
2: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जेकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के छठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है।
3: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके बहुत सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं और

0: विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
1: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति पति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

फिल्म बाबर का गीत था, आवाज सुधा मल्होत्रा की थी, गीत को साहिर लुधियानवी ने लिखा था और तर्ज बनाई थी रोशन ने।

ये स्वर है मुकेश और सुमन कल्याणपुर की, फिल्म का नाम है मेरा घर मेरे बच्चे, रचनाकार हजरत जयपुरी, संगीतकार सरदार मलिक।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब सुनिए प्रेम धवन का लिखा गीत, हंसराज बहल का संगीत, आवाज मुकेश की, और ये फिल्म है मुड़ मुड़ के नातिक।

कार्यक्रम का अगला गीत कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में शमीम जयपुरी का लिखा हुआ, आवाज एक बार फिर मुकेश की, और ये फिल्म का नाम है दिल भी तेरा हम भी तेरे।

0: राकेश शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। वल्लाह क्या बात है। जी हाँ, ये है फिल्म का नाम जिसका दो गाना अब आप सुनेंगे, स्वर आशा भोसले और मोहम्मद रफी के। इस गीत को प्रेम धवन ने लिखा है और संगीत रोशन का है।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4

0: बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: रवि के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन की रचना, स्वर हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के, फिल्म का नाम है अपना घर।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार. चंचल जी आपको भी हमारा नमस्कार.
2: नमस्कार ममता जी आपको और सभी सुनने वालों को. चंचल वर्मा का नमस्कार.
1: क्या हाल है?
2: हाल बहुत अच्छे हैं.
1: देखिए बारिश की बूंदें पड़ गई मुंबई के सरजमी पर. और
2: मुंबई के अलावा और भी बहुत सारी जगह है जहाँ छुटपुट बारिश की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन बारिश के बाद जब फिर से धूप निकलती है ना तो बारिश का मजा किरकिरा कर देती है क्योंकि उमस बहुत ज्यादा हो जाती है.
1: बस जब बारिश होती है तो हमें इंतजार रहता है कि नदियां भर जाएं, तालाब झरने और कलकल बहने लगे. मतलब ये लगता है कि पानी पानी चारों तरफ दिखाई पड़े. और जब ज्यादा बरसात होती है तो हम परेशान भी होने लगते हैं. तो बस यही उम्मीद करते हैं कि इस बार संतुलित बारिश हो. और आज विशेष तौर पर हम अपने श्रोताओं को याद दिलाना चाह रहे हैं कि आज एक विशेष दिन है, नाविक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस.
2: जी
1: तो ये वैसे हमें रोज इस बात का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इस दिवस के बहाने हम लोगों को आगाह करते हैं कि जो हमारे मछुआरे हैं, नदियों में जाते हैं, समंदर में जाते हैं, मछलियां पकड़ने जाते हैं
2: जी,
1: तो उनकी सुरक्षा कितनी जरूरी है, कितनी सबकी क्या जिम्मेदारी बनती है, घर परिवार वालों की, समाज की. और दूसरा कि जब आप इस नौका विहार के लिए जाएं और नाविक का काम मतलब मछुआरों का काम करने जाते हैं तो पहली शर्त यह है कि तैरना आना चाहिए, कि बिना तैरे नदी में छलांग न लगाएं. कि हम
2: वैसे भी जब हम किसी पर्यटन स्थल पर जाते हैं जहां नदी, झील, झरने ऐसी चीजें होती हैं और वहां पर जब हम नाव की सैर के लिए जाते हैं तो सुरक्षा के तौर पर हमें एक जैकेट दिया जाता है पहनने के लिए कि अगर कभी कुछ दुर्घटना हो तो वहां आप सुरक्षित रहें. लेकिन उसके अलावा एक नाविक इस तरह का मौजूद हमेशा रहता है कि अगर कोई दुर्घटना हो तो अधिकतम लोगों को वो बचा कर ला सके. और बहुत ही उनकी कठिन जिंदगी होती है, उनके बारे में लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए जागरूकता हो, इसीलिए इस तरह के खास दिन जो है वो हम मनाते हैं.
1: और कई बार क्या होता है कि जब नौका विहार के लिए लोग निकलते हैं तो बहुत सारे जो नाविक होते हैं वो नाव पर जहां पर ये सुरक्षा जैकेट नहीं देते हैं कम होते, दो चार होते हैं और 15-20 लोगों को बिठा देते हैं तो ये बहुत खतरनाक होता है. जो लोग बैठते हैं कहीं पैसों की बचत के चलते, कहीं समय की बचत के चलते बैठ जाते हैं, उनको ख्याल रखना चाहिए कि आपकी जिंदगी ज्यादा कीमती है ना कि आपके धन की धन. तो ये ध्यान रखें. अक्सर किसी जगह पर जब जहां पर कहीं भीड़ भाड़ इकट्ठी होती तो अमूमन ये घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि फला जगह पर नौका डूब गई. तो ये ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए बहुत जरूरी है. हालांकि इस तरह की आपदाएं अब कम हो रही क्योंकि सरकार की ओर से भी मुहिम चलाई जा रही है कि एक तो सुरक्षा जैकेट बहुत जरूरी कर दिया है और जगह जगह पर उनकी टीम काम करती है, नदियों में जाती रहती है कि कहीं ऐसी दुर्घटना हो तो उन्हें बचाया जा सके.
2: तो इससे जुड़े कोई अगर अनुभव है हमारे सुनने वालों के तो वो हमें लिखकर अवश्य भेजें. इसके अलावा आज जिन विषयों पर बातचीत हम करने वाले हैं, हम बता दें कि अगर आपने घर में कुछ पौधे लगाने के आप शौकीन हैं या आप कोई खेती भी करते हैं तो कीट जो लग जाते हैं, जो कुछ कीड़े हैं ना जो लग जाते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, आपके घरेलू पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं. तो आज तो हम सिर्फ घरेलू पौधों के बारे में बात करने वाले हैं. आपने घर में अपने गार्डन छोटा सा बगीचा बनाया, छत पर एक बगिया बनाई है तो उनको बचाने के लिए क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे सुनने वाले जरूर हमसे साझा करें. और शादी ब्याह एक ऐसा बहाना होता है जब बहुत सारे सगे संबंधियों से मुलाकात हो जाती है हमारी. कई बार तो हमें शादी में जाते ही इसलिए हैं कि अरे वो मौसी आएंगी, वो मामा आएंगे, वो ताऊ आएंगे, या उनके बच्चों से मुलाकात नहीं हुई होती है तो उनसे मिलना जुलना भी हो जाएगा
1: और बहुत सारे दोस्त मित्र मिलेंगे तो चलते हैं. और वो जो इकट्ठे टीम बना के दल बना के जाना वो एक अलग अनुभव.

0: वो होता है, क्योंकि अमूमन अकेले अकेले ही ज्यादा होता है, लेकिन शादी ब्याह में कई टीम बन जाती है भाई। दफ्तरों से भी जब लोग किसी की शादी में जाते हैं तो कहाँ मिले, फला जगह पे मिलते हैं और सब झुंड बना के जाते हैं, तो उसका एक अलग अनुभव होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं के इस मामले में क्या अनुभव है कि वो जब शादी ब्याह में जाते हैं तो उन्हें किस तरह की फीलिंग होती है, कौन सा एहसास होता है, उन एहसास को यहाँ पर साझा करें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।
1: और आज होगी कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत जिनका परिचय हम करा रहे हैं ये हैं रमीला बेन राय सिंह भाई। तो बातें विस्तार से होंगी, लेकिन ममता जी एक गीत पहले सुन लेते हैं।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: ममता जी, आज हम जिनकी कहानी की बात कर रहे हैं पद्मश्री के अंतर्गत, ये हैं रमीला बेन राय सिंह भाई, जिनको साल 2022 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा जा चुका है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार बिना स्वार्थ के ये अपनी सेवाएं देती आ रही हैं।
1: और बता दें कि सामाजिक कार्यों में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया और 1 जून 1969 को गुजरात में उनका जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा 10वीं कक्षा के आगे तो नहीं हो पाई और उनका जहां जन्म हुआ था

0: समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए तो लोग जाने जाते हैं वहाँ के, लेकिन संसाधनों तक उसकी पहुंच सीमित है, इसलिए उनकी औपचारिक शिक्षा जल्दी ही समाप्त हो गई। ऐसा समुदाय जहां लड़कियों के लिए शिक्षा अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों और कृषि कार्यों के आगे उपेक्षित थी।
1: बिल्कुल, और रमीला बेन ज्ञान की प्यास उनमें थी और कुछ कर दिखाने का जुनून ये भी उनका कम नहीं हुआ। मतलब जिस जहां वो जन्मी पली बड़ी, माहौल चाहे जैसा भी था, लेकिन उनके जुनून को वो रोक नहीं पाया और इसी बात ने उनके जीवन को उद्देश्य दिया और दिशा भी दी। भले ही वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई थी, लेकिन उनके जीवन के जो अनुभव थे उन्होंने उन्हें एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बनाया, एक दयालु और दृढ़ निश्चय और परिवर्तन लाने वाली महिला के रूप में उन्हें ढाल दिया। रमीला बेन के जीवन जो था वो बहुत सारी बाधाओं से भरा हुआ था। उनके गांव में उचित शौचालयों का अभाव था, खुले में शौच करने जाना दैनिक जीवन की एक वास्तविकता थी, और खास तौर पे अगर महिलाओं की बात करें तो बच्चों के लिए भी बात करें, जो छोटी बच्चियां थी उनके लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकते थे इस चीज से। महिलाओं को शौच के लिए रात होने का इंतजार करना पड़ता था और इससे उनकी सुरक्षा और गरिमा ये भी खतरे में पड़ जाती थी।
0: और इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं थी ग्रामीणों को, जो सदियों पुरानी प्रथाओं को छोड़ने के लिए मनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो प्रथाओं में इतने जकड़े होते हैं कि उससे निकालना मुश्किल काम होता है। सबके विरोध का सामना करते हुए उन्हें एक एक परिवार का विश्वास भी जीतना था। उस पर उनकी आर्थिक तंगी ने उनकी चुनौतियों को और बढ़ा दिया, जिससे सामग्री जुटाना और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, जो कि वो कर रही थी।
1: और वो अपने इस काम के लिए सरकारी सहायता भी चाहती थी, लेकिन यहाँ भी बहुत सारी बाधाएं आ रही थी, क्योंकि कुछ लोग कई बार ऐसे होते हैं ना जो नहीं चाहते हैं कि ये महिला काम करे, और ये सारी जटिलताएं, इनसे निपटने के लिए बहुत सारा धैर्य और दृढ़ता की जरूरत उन्हें थी। कितनी भी उनकी यात्रा जो चल रही थी उसमें बाधाएं आती गई, लेकिन वो अडिग रही और अपने अटूट हौसले के साथ में आगे बढ़ती रही।
0: और रमीला बेन के गांव में परिवर्तन लाने के लक्ष्य की शुरुआत हो चुकी थी। अपने गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उन्होंने सबसे पहले स्वच्छता की समस्या को सुलझाने का प्रयास शुरू किया। अपनी कोशिशों से उन्होंने लोगों को एकजुट किया और 700 से ज्यादा स्वच्छता इकाइयां बनवाई, जिससे कुछ गांव खुले में मुक्त हो गए।
1: लेकिन उन्हें बुनियादी ढांचा तैयार करने के साथ साथ लोगों में जागरूकता भी बढ़ानी थी। जैसे आपने कहा ना कि भाई अपनी पुरानी जो प्रथाएं या रूढ़ियां हैं, लोग उनको छोड़ने को तैयार नहीं होते, तो उन्हें खुले में शौच के संबंध में जो जोखिम होते हैं उन पर प्रकाश डालने के लिए बहुत सारे शैक्षिक अभियान उन्होंने चलाए, जिनमें बहुत सरल और प्रभावशाली संदेश होते थे, जिनके जरिए वो ग्रामीणों को समझाती थी तो बात उनके समझ में भी आ जाती थी।
0: और यही नहीं, उन्होंने सामुदायिक बैठकें आयोजित की, स्थानीय नेताओं से संपर्क किया और घर घर जाकर लोगों से निजी तौर पर बातचीत की इस संदर्भ में। और उनका काम केवल स्वच्छता तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण में आर्थिक स्वतंत्रता की शक्ति को पहचानते हुए बहुत से स्वयं सहायता समूह स्थापित किए, जिनमें महिलाओं को एक साथ लाकर सामूहिक रूप से बचत करने और छोटे छोटे ऋण लेने और छोटे व्यवसाय शुरू करने में सहायता दी। और ये सहायता समूह ग्रामीण आबादी और सरकारी योजनाओं को सीधे पहुंचाने का माध्यम भी बने।
1: इन सहायता समूहों ने महिलाओं को सिलाई और हस्तशिल्प से लेकर लघु कृषि तक सूक्ष्म उद्योग चलाने के ज्ञान भी दिया, और रमीला बेन ने विधवा कल्याण के लिए भी बहुत सारा काम किया, जिससे महिलाओं को सहायता मिली और वित्तीय सहायता भी मिलती रही। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्होंने घरेलू आय में सुधार किया और महिलाओं में आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को भाव, जो ये भाव था उसको बढ़ावा दिया।
0: रमीला बेन के प्रयास से गांव में जो स्वच्छता की कमी थी, स्वच्छता की ओर लोग जागरूक हुए, और जिससे स्वास्थ्य समस्याएं जो बहुत ज्यादा थी कम हुई, और जो धन का अभाव था वो भी बढ़ा, क्योंकि निजी रूप से उन्होंने आर्थिक संपन्नता की ओर उन्मुख किया लोगों को, ग्रामीण लोगों को, और उनके अथक प्रयास से आसपास के गांव भी जैसे खुले शौच में जाने की जो प्रथा थी उससे मुक्त हुए, और जो बीमारियां थी निश्चित रूप से उससे कमतर हुई बीमारियां, और महिलाओं को सम्मान और निजता का अधिकार भी वापस मिला, क्योंकि अब उन्हें अंधेरे में खेतों में जाने की जरूरत नहीं थी।
1: और पहले घरेलू भूमिकाओं तक सीमित रहने वाली जो महिलाएं थी, अब वो खुद को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उद्यमी और वित्तीय निर्णय लेने वाली वो बन रही थी। सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ रही थी, परिवारों तक उनके लाभ भी पहुंचने लगे थे। ये वो लाभ थे जो पहले इनके बारे में जानकारी

0: जानकारी भी नहीं थी उन लोगों को, और इन गांवों में नए सिरे से सम्मान और आशा की भावना जागृत हुई। इन गांवों के बच्चे, खासतौर पर लड़कियां, अब बिना डर के अपनी शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित कर पा रही थी।
1: बिल्कुल सही बात है। रमीलाबेन गुजरात में एक समाज सेविका के रूप में उभरी और उनका कहना था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, और उनकी सेवा भाव और मेहनत को देखते हुए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। 2002 में पद्मश्री के अलावा उन्हें स्वच्छ भारत अभियान में उत्कृष्ट योगदान के लिए,
0: ममता जी मैं यहाँ करेक्शन करना चाहूंगी, 2022 में उन्हें मिला।
1: 2022 बिल्कुल सही कहा आपने, और 2017 में भी उन्हें पुरस्कृत किया गया स्वच्छ शक्ति पुरस्कार से, और महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें नारी तू नारायणी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और उनका नाम दृढ़ता और बदलाव का पर्याय बन गया।
0: और उनकी ये जो कहानी थी, जो कार्य उन्होंने किए, वो बहुत सारी महिलाओं को के लिए आगे बढ़कर अपने जीवन की बागडोर संभालने के लिए प्रेरित करते थे। बहुत सारे गांवों को स्वच्छ और सशक्त बनाने के लिए जो उनका जुनून था, इसने उन्हें पहचान भी दिलाई और सम्मान भी दिलाया। और रमीलाबेन अब तक गुजरात के करीब करीब 700 से ज्यादा शौचालय वहां पर वो बनवा चुकी हैं या मदद की है उन्होंने, हम ऐसा कह सकते हैं। और उनकी कहानी अनगिनत लोगों को प्रेरित करती है और ये साबित करती है कि एक बदलाव का छोटा से छोटा कदम भी अगर है, अगर अटूट संकल्प है, तो वो उसी से शुरुआत उसकी होती है।
1: बिल्कुल। अब यहाँ पर एक गाना सुनवाते हैं सखियों और सखाओं को।

0: मिला नहीं होता, मिलन नहीं होता, बल्कि बिछड़े हुए रिश्तों और परिवारों को फिर से जोड़ने का सुंदर अवसर भी होता है। कहा जाता है कि समाज के दो परिवार का मिलन होता है। घर में जब शादी का माहौल होता है तो चारों तरफ रोशनी, संगीत और खुशियों की गूंज छाई रहती है। इस ऐसे में जब रिश्तेदारों का आगमन होता है, जब झुंड के झुंड रिश्तेदार आते हैं कि वो फलाने वाली बुआ आ रही है, फलानी चाची आ रही है, फलानी जगह
1: कोई मतवाला आया मेरे द्वारे ही होता है।
0: और ये भी कहा जाता है कि वो जैसे मड़वा वाली भाभी, पुरवा वाली भाभी और वो प्रतापगढ़ वाली, ऐसे ऐसे जगह जयपुर वाली, तो ये बड़ा
1: जयपुर वाली चाची, आगरा वाले ताऊ जी।
0: कई बार तो भाभी और चाची कर वो न कह के बल्कि सीधे सीधे वो जयपुर वाली आ रही है, देखिए ना राजस्थान वाली आ रही है, तो उससे भी क्लियर हो जाता है कि कौन आ रहे हैं। तो ये जो शादी ब्याह में जमावड़ा होता है, इसी का आनंद अलग होता है।
1: और एक बात और ममता जी, आजकल सिर्फ शादी ब्याह ही रह गए हैं जहां हम अपने पुराने रिश्तेदारों से मिलते हैं। यूं ऑनलाइन बात करना, फोन पर बात करना, और एक जब इस तरह से हम मिलते हैं बहुत लंबे समय के बाद, आमने सामने से एक दूसरे को देखते हैं, तब उस मुलाकात का मजा बहुत कहते हैं कि अलग होता है। और इसके अलावा पहले हम अपने बहुत दूर दूर के रिश्तेदारों को भी जाना करते थे, लेकिन आजकल ये चीजें बड़ी संकुचित होती जा रही हैं। हमारे बच्चे कई बार तो हमारी जो हमारी सगे बहनों को तो जानेंगे, लेकिन अगर मेरी चाचा की लड़की है या मेरे ताऊ जी के लड़के हैं तो वो उनको नहीं पहचानते, क्योंकि उनका मिलना जुलना ही बहुत सीमित हो गया है। जब कोई शादी ब्याह में जाने की बात आती है तो हम भाई बच्चों की परीक्षाएं हैं, अभी उनके स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनका असाइनमेंट है, इनके चलते बच्चे जा ही नहीं पाते, या बच्चों का भी सोच जिस तरह से हो रही है वो एडजस्ट करना नहीं चाहते हैं। जिस तरह से बड़े लोग हर माहौल में एकजुट होकर रह जाते हैं, बच्चे इस बहाने से भी जाना थोड़ा सा,
0: उनको अपना कमरा चाहिए, उनको अपना बाथरूम चाहिए, और उनको अपने खाने पीने की जो टाइमिंग्स है उसी टाइम पे नाश्ता चाहिए। वही दायरा, उसी दायरे में सिमट कर रह गए, और बच्चे पूछते भी हैं कि कौन से वाले मामा, कौन सी वाली मामी, कौन सी वाली चाची, कौन सी वाली बुआ। तो उनको पता ही नहीं है कि फोन पर क्योंकि बात होती है, मिलना जुलना हो ही नहीं पाता। तो शादी के बहाने बच्चों को भी ले जाना चाहिए शादी समारोह में। और पढ़ाई की जहां तक बात है कि पढ़ाई विघ्न आता तो किताब कॉपी लेकर जा सकते हैं अगर दूसरे शहर में शादी,
1: अगर कोई बहुत जरूरी ही ऐसा है कि परीक्षाएं ही चल रही हैं जिन्हें आप बिल्कुल अनसुना अनदेखा नहीं कर सकते हैं, तब आप नहीं ले जा रहे हैं बच्चों को तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं है फिर भी अपनी सहूलियत या सुविधाओं के वजह से बच्चे मना कर रहे हैं, तो थोड़ा जिद करके बच्चों को जरूर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि एक समय पर आकर बच्चे रिश्तेदारों को पहचानेंगे ही नहीं और वो रिश्ते कहीं आकर सिमट कर रह जाएंगे। उनके लिए रिश्ते का मतलब होगा सिर्फ उनके स्कूल कॉलेज के दोस्त या जहां उनके सहकर्मी हैं वो।
0: अच्छा, अब जरा ये देख लें कि हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं इस बारे में। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि शादी ब्याह त्योहार किसी पारिवारिक आयोजन के बहाने सगे संबंधियों से मुलाकात का अवसर मिलता है। ऐसी मुलाकातें रिश्तों में अपनापन और मधुरता बढ़ाती हैं। परिवार के लोग एक दूसरे का हालचाल जान पाते हैं, सुख दुख साझा करते हैं और पुराने दिनों की यादें ताजा करते हैं। आज की व्यस्त जीवन शैली में जब सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तब ऐसे अवसर रिश्तों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। जब इकट्ठे होते हैं फोन पर वो चर्चा कैसे हो सकती है? हालांकि कई बार ये होता है कि एक साथ कन्वर्सेशन के लिए कई लोग फोन, मतलब कई फोन एक साथ मिला लिए जाते हैं और बात करते हैं, ग्रुप कॉल होता है, लेकिन उसमें वो आनंद नहीं आता जो आमने सामने बैठ के छेड़छाड़ करके एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं, धौल धप्पा करते हैं। उसमें जो आनंद आता है पुरानी बातें ताजा करते हैं कि फलानी भाभी ने एक बार ये कहा था, और फिर उस पे जो ठहाके लगते हैं जोरदार, और वो ठहाके कमरे में ही नहीं आंगन तक, बरांडे तक गूंजते हैं।
1: बिल्कुल, उसकी बात छेड़छाड़ होती है और बहुत लंबे लंबे समय के बाद जब अब पुराने रिश्तेदारों से हमारी मुलाकात होती है और जब हम उनसे मिलते हैं ना, तो एक बात तो बड़ी कॉमन सी होती है जो हर कोई कहेगा, अरे तुम तो बड़े दिन बाद मिले हो, कितना छोटा सा देखा था तुमको,
0: बड़े हो गए, बड़ा हो गया हमारा बेटा, बड़ी हो गई हमारी बिटिया। तो ये सब होता है, और समय का अंतराल कई बार कुछ चीजों को विस्मृत कर देता है जो जब आप मेलजोल के साथ वो बातें ताजा हो,
1: कई बार कुछ कटाक्ष भी होते हैं, अरे बड़ी दुबली हो गई हो, क्या ससुराल वाले खाने को नहीं देते, अगर थोड़ा वजन बढ़ गया, कितना खाती हो भाई, ज्यादा खिलाते हैं ससुराल वाले, तो इस तरह के कटाक्ष,
0: ज्यादा अमीर हो गई हो, ये भी होता है। अब ज्यादा बातें ना हो जाए इसका ख्याल रखते हैं, एक गाना सुनवाते हैं।

0: सखी सहरी कार्यक्रम में अब ले रहे हैं एक ब्रेक छोटा सा।
1: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
2: आज ही पधारें लालजी नर्सरी, रानोजी का बाग, खोखरिया विराम मंडो।
1: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
3: लालजी नर्सरी, आप कुछ समय हरियाली में बिताओ।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के।

0: करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह कार्यक्रम सखी सहेली, और श्रोताओं की टिप्पणियां बहुत सारी आ रही हैं। क्या था विषय की शादी के बहाने सगे संबंधियों से मुलाकात, और चंचल जी भी ढूंढ रही हैं, लेकिन ये जो टिप्पणी आई है वो मैं श्रोताओं तक पहुंचा रही हूं, जो हंसी मजाक वाली बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी कोने में चाचा पुरानी बातें सुना रहे होते हैं, कहीं मामा हंसी मजाक में सबको हंसा रहे होते हैं, तो कहीं बरसों बाद मिले भाई बहन बचपन की यादों में खो जाते हैं। ऐसे मौकों पर लगता है कि रिश्ते कभी पुराने नहीं होते, बस मुलाकात का इंतजार करते हैं, और फिर शादी बीत जाती है लेकिन मन में एक मीठी सी तसल्ली रह जाती है कि इस उत्सव ने कुछ घंटों के लिए ही सही पूरे परिवार को फिर से एक साथ मुस्कुराने का अवसर दे दिया। और कई बार जो मन की गांठें हैं वो भी खुलती हैं, कि नाराजगी होती है कि फलानी बुआ नाराज है, वो फोन नहीं कर रही है, बात नहीं कर रही है, फलानी दीदी नाराज है कि वो फोन नहीं आएंगे शादी में, और आ जाती है जैसे तैसे, फिर रोना धोना मचता है, उसके बाद बिल्कुल माहौल हल्का।
2: अब इसी बात पर देखिए अगला कमेंट है कि शादियों में मिलना जुलना भी होता है और कुछ पुराने गड़े मुर्दे भी खड़ा करते हैं, थोड़ी सी नोकझोंक भी होती है, उसके बाद मुंह फुलाना, बाद में मान मनोबल, और फिर सब एक ही जगह मिलकर बैठकर हंसी ठहाके लगाकर बड़ा एंजॉय करते हैं।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि पिछले महीने ही हमारे परिवार में विवाह था, हम सब ने तय कर लिया था कि सभी आएंगे, मई में शादी इसलिए रखी थी कि बच्चे भी फ्री हो जाएंगे, सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए, बचपन की यादें ताजा हो गई, संगीत में भी सब जमकर नाचे, बहुत मस्ती हुई, बच्चों को भी अपने चचेरे ममेरे भाई बहनों से मिलने और समझने का मौका मिला, और बुजुर्ग तो भावुक ही हो गए सबसे मिलकर, कई रिश्तेदारों से तो बरसों बाद मिलना हुआ। सबसे ज्यादा आनंद तो इसमें लेडीज संगीत का जो होता है, और रात को जो महलूल होता है अगर बेटे की शादी है तो उसमें सबसे ज्यादा आनंद घर वालों को आता है, क्योंकि लेडीज संगीत में सारे मिलकर, कहने नाम तो लेडीज संगीत है लेकिन उसमें पुरुष भी शामिल होते हैं, जेंट्स भी, और खूब मस्ती करते हैं नाच गान के साथ।
2: लेकिन जब नहीं पहुंच पाते हैं, उनका दुख बयान करते हुए हमारे एक संदेश में लिखा गया है कि सगे संबंधियों के बहाने हमने भतीजे का हाल सुना, बहुत बहाना क्या करें, बच्चों की परीक्षा है और श्रीमान जी की तबीयत खराब है, नौकरी से उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, शादी के बहाने मिल तो लेते लेकिन जिन्होंने भी बहाने किए हैं वो सभी शादी में पधारें। पता नहीं क्या लिखना चाहती हैं, कुछ साफ साफ नहीं है।
1: इनका कहने का आशय ये है कि हम लोग बहाने करते हैं कि नौकरी से छुट्टी नहीं मिली, बच्चों के इम्तिहान है, दरअसल उसके पीछे मंतव्य ये होता है कि कौन जाए इतना खर्च बर्च करने के लिए, ठीक है उतने पैसों की बचत कर लेंगे, लेकिन वो जो पैसे खर्च करके आप जो खुशी ले आते हैं उसकी कोई सानी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर बचत न करें।
2: हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बताना चाहूंगा कि अभी आपने कहा था ना पुरुष शामिल होते हैं, तो हमारे सखी सहेली कार्यक्रम में बहुत सारे पुरुष होता शामिल होते हैं, तो ये बताना चाहते हैं कि आज शाम को ही रिश्तेदारी में अजमेर में एक शादी है, बड़े बुजुर्ग और छोटे रिश्तेदार सबसे मुलाकात होगी, जहां हम अपने बड़ों के साथ चरण स्पर्श करके आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत पुरानी बात है, मेरे घर में शादी चल रही थी, बारात आ गई थी और सभी नाश्ता पानी करके अपने अपनी जगह पर बैठे हुए थे, सर्दी के दिन थे इसलिए लोग घर के रूम में ही बैठे हुए थे, रिश्तेदारी में आई एक सदस्य बाहर से आए किसी मेहमान का मजाक उड़ा रही थी, वहां पर हम सभी बैठे हुए उनकी बात में हां मिलाते हुए हंस रहे थे, और तब तक अचानक जनरेटर बंद होने से लाइट चली गई थी, 5 मिनट के अंदर ही लाइट तो आ गई, और जब लाइट आई तो जिनका मजाक उड़ाया जा रहा था वो सामने एक चेयर पर बैठी थी, अब बोलने वाली का चेहरा देखने लायक था, किसी को कुछ बोलते नहीं बना, मैंने उसी समय से उनकी बात को संभाल लिया कि अपनी किसी सहेली के बारे में बोल रही है, पर वे मुस्कुरा कर रह गई और सभी शादी विवाह का विधि विधान देखने के बहाने धीरे धीरे वहां से खिसक गए, आज भी हम सब जुटते हैं तो उस समय की वो बात याद करके खूब हंसते हैं, वैसे वो दोनों रिश्तेदार थी और उन लोगों में आपस में बनती नहीं थी। और कई बार चंचल जी ये भी होता है कि खाने पीने के मामले में भी लोग नाराज हो जाते हैं, कि हमें देखा वो फलानी को तो चाय हाथ में पकड़ा दी और हमें चाय पूछा तक नहीं, और हमें तो वो पता है कि हमें लड्डू पसंद है और लड्डू ने दे के हमें तो गुलाब जामुन दे दिया, मतलब बिना बात के भी लोग शिकायत करते हैं।
2: इस तरह की शिकायतें भी होती हैं कि देखो उनकी शादी में गए थे, वहां कितना अच्छा इंतजाम था, हाथों में नाश्ता आता था, समय पर चाय पानी हो जाया करती थी, यहाँ तो

0: 11 बज गए, नाश्ते का ही इंतजाम नहीं है। तो कई बार हम जिनके यहाँ जाते हैं उनकी समस्या भी समझ लेनी चाहिए कि हो सकता है हलवाई के आने में देर हुई हो या जो मैनेजमेंट देख रहे हैं वहां कुछ दिक्कत हुई हो। जिन्होंने आपको बुलाया है, जो आप आतिथ्य जो कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आपके आतिथ्य में कोई कमी रहे, लेकिन थोड़ा समझकर हमें भी चलना
1: है। पर रिश्तेदार जो जाते हैं, मुझे लगता है कि वो कहीं घर से जुड़े हुए हैं, तो सीधे रसोई घर में जाके वो कमान संभाल सकते हैं, क्योंकि जो घर वाले लोग होते हैं उन पर भी बहुत बड़ा बोझ होता है, सबकी आवभगत करना और शादी की तैयारियां करना, शॉपिंग, कितना सारा तामझाम होता है और सारे रस्म व रिवाज का ख्याल रखना। तो जो रिश्तेदार जाते हैं उनको सिर्फ बैठ के आलोचना करने की बजाय शामिल हो जाना चाहिए कि लाओ हम एक जिम्मेदारी उठा लेते हैं, खाने पीने का, नाश्ते का इंतजाम हम कर लेते हैं कि हम सबके हाथों में नाश्ता पहुंचाएंगे, तो कितना अच्छा लगता है।
0: और इसके बाद जब शादी ब्याह के बाद सारे मेहमान चले जाएंगे तो पूरा जो पसरा हुआ घर है या जितने भी चीजें फैली हुई हैं उनको समेटते समेटते भी उनको एक हफ्ता 10 दिन लग जाता है। कई बार तो जो घर के लोग होते हैं उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है।
1: अमूमन ऐसा होता है।
0: चलिए फिलहाल हम एक आनंद की बात कर रहे हैं, शादी ब्याह के मजे की बात चल रही है, तो गाने सुन ले।
1: सुनते हैं।

0: रहे कजिन्स, चाचा, ताऊ, मौसा, मौसी एक छत के नीचे आ जाते हैं, जिससे बहुत सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। ढोल, नगाड़े, संगीत, हंसी मजाक के बीच लोग अपनी रोजमर्रा की चिंताओं को बिल्कुल भूल जाते हैं। नई पीढ़ी का परिवार के सदस्यों से, यानी कि बच्चों और बहुओं के साथ पूरे कुनबे से मिलना हो जाता है, अपनी संस्कृति को समझने का मौका मिलता है। दुख में भले ही लोग दूरी बना लें, लेकिन शादी की खुशी हर किसी की कड़वाहट को भुलाकर गले मिलने का अवसर देती है।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारी बातें कॉमन है, कई श्रोताओं ने लिखी, तो वो एडिट करते मैं आगे पढ़ रही हूँ। लिखा है कि इस शादी वाले घर में सभी व्यस्त होते हैं शादी, और उसी व्यस्तता में अपने चचेरे, ममेरे, फुफेरे, भाई बहन, बुआ, चाचा, मामा का परिवार सभी से मिलना जुलना होता है और सबसे मजा आता है। संगत में पत्तल में बैठकर खाना खाना और एक दूसरे की खिंचाई करना, और रात में एक रूम में सभी मिलकर गीत गवाई, आधी रात तक गप्पे लड़ाना, फलाने की बेटी और फलाने की बहू और तुम्हारी वो सहेली और तुम्हारा वो दोस्त, आज इस विषय प्रसंग ने परिवार में हुई कितनी शादियों की यादें ताजा कर दी।
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि शादी ब्याह के रंग बिरंगे समारोह केवल उत्सव नहीं होते, बल्कि रिश्तों की डोर को मजबूत करने वाले ऐसे अवसर होते हैं जो हम शादी में जाते ही इसलिए हैं कि सारे रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाए। शादी एक ऐसा माहौल भी होता है जहां पर अपनापन दिखाई देता है। हंसी मजाक में साथ बैठकर भोजन करने का आनंद ही होता है। मेहंदी लगवाना, ढोलक की थापर, बन्ना बन्नी के संगीत की महफिल रिश्तों को मजबूत बना देती है। तो कई बार समारोह में नई पीढ़ी का परिचय भी अन्य सदस्यों से हो जाता है, जिससे पारिवारिक जुड़ाव बना रहता है।
1: हमारे एक श्रोता ने टिप्पणी भेजी है, लिखा है कि बात कुछ साल पुरानी है। हम एक शादी में गए थे, हमारे बगल में एक कपल बैठे हुए थे, उनसे औपचारिक बातें हो रही थी। मेरी बड़ी बहन आई और कहा भाई बहन में दोस्ती हो गई। मैंने पूछा भाई बहन, तब उसने बताया कि ये तो हमारे भाई भाभी हैं। मैं परिवार में छोटी हूँ, मेरी मुलाकात उनसे ना के बराबर हुई और मेरी पढ़ाई हॉस्टल में हुई, तो मेरे बचपन का चेहरा और आज का चेहरे में बहुत फर्क आ गया है, इसलिए भाई ने भी मुझे नहीं पहचाना। फिर तो बातों का सिलसिला जारी रहा कि बस ये मुलाकात यादगार बन गई। भाई आज अगर सगे भाई बहन एक दूसरे को नहीं पहचान रहे, ये तो बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि अब तो मोबाइल का भी जमाना है। अगर आपको फुर्सत नहीं तो कम से कम वीडियो कॉल पर एक दूसरे को देख लें।
0: और कई बार ऐसा होता है कि जिन रिश्तेदारों को हमने बहुत सालों से नहीं देखा, या जो नई बहू आई है, नए जवाई घर में आए हैं, जिनसे हम नहीं मिले हैं, लेकिन ऑनलाइन हमने उनके चेहरे देखे हुए होते हैं, तो जब हम मिलते हैं सालों के बाद भी, तो कम से कम उन चेहरों को पहचान लेते हैं। एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि आज की भागदौड़ भरे जिंदगी में किसी के पास इतना समय ही नहीं है कि लोग अलग से समय निकालकर एक दूसरे से मिल सकें और उनका हालचाल बताएं या दूसरों की सुने। शादी एक ऐसा समारोह है जिसमें सब मिलकर एक दूसरे का हालचाल पूछ लेते हैं, अपनी व्यस्तता को भी बता देते हैं। शादी एक बहाना बन जाती है जो सालों से नहीं मिले होते हैं उनको मिला देती है।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि बिल्कुल अभी हमने जो बात कही थी कि किसी को चाय दे दी गई, उसके जवाब में लिखा है, अभी भी ये टिप्पणी आई है 6 मिनट पहले, इन्होंने लिखा है कि आपने किसी एक को पहले चाय दे दी तो तुरंत दूसरे का मुंह फूल जाता था और उसका बहुत ज्यादा उसकी इज्जत हो रही तो मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, ये भी लोग कहते हैं। और बेटे की जब बारात चली जाती थी तो घर की औरतें रात जागरण करती हैं और मड़वे में हर तरह का स्वांग रच के डोमकच जलवा करती हैं, उसको बहुत जगहों पर महलूल भी कहते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि सही कहा, सब बहनों का मिलना, प्यारी सी मस्ती, थोड़ी सी लड़ाई, बताया नहीं तो ये पहनने वाली है, हमारे पास भी ऐसा ही था, हम भी पहन लेते, या फिर सबका एक कलर के कपड़े लेना और फिर किसी का कुछ घर में छूट जाना, सब कुछ बहुत मजेदार होता था। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे शहर जयपुर में तो सखी सहेली की मौसम की बात हुई, और एक श्रोता लिख रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये मुद्दा उठाया, आज मुझे तो झपकी सी आ गई थी लेकिन अचानक नींद खुली और ये बातें सुनी तो बहुत अच्छा लगा और बातें हम सुनने लगे। एक श्रोता ने लिखा है कि फरवरी में मेरी भतीजी की शादी थी, हम काका पापा के 8 भाई और 8 बहनों में बड़े भाई की लड़की की शादी थी, मतलब हमारी पीढ़ी की पहली शादी। कई साल बाद सब इकट्ठा हुए, बहुत मजे किए, डांस किया, बाद में फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर सब ने इतने फोटो वीडियो शेयर किए कि सब बोलने लगे, आजकल तो आपका परिवार फेसबुक पर छाया हुआ है।
0: इसी तरह से आज ये विषय ऐसा है कि इसके कमेंट भी बहुत सारे छाए हुए हैं। हमने कोशिश की हम बहुत सारे संदेशों को शामिल कर सकें, लेकिन जिनके नहीं हो सके उनसे माफी मांगते हुए अब सुन लेते हैं ये गीत।

0: बंधी रहे ये प्यार की डोरी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। और बहुत सारे रिश्तेदार भी ये बात कहते हैं जब शादी विवाह के रंग बिरंगे समारोह केवल उत्सव नहीं होते। ये हमारी एक सखी ने लिख भेजा, बल्कि रिश्तों की डोर को मजबूत करने वाले ऐसे अवसर होते हैं जहां जाने पर सारे रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाती है। और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह की बातें लिखी हैं।
1: और अब हम बात करते हैं कि अगर आपने घर में कुछ छोटी सी बगिया बनाई है और उस

0: पौधों पर कीट लग जाते हैं तो उन्हें बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? इस पर हमारे श्रोता ने बड़े अच्छे उपाय बताए हैं कि बारिश के मौसम में ये होता ही है, इसके लिए कुछ उपाय इस तरह से हैं कि नीम के तेल की 3-4 बूंदें में 3-4 बूंदें शैम्पू की भी डाल लें और अब इसे पानी में घुल जाए इस तरह से इसका घोल बना लें और ये मिक्सर शाम के समय पूरे पौधों पर हर तरफ से स्प्रे कर दीजिए। खासतौर पर पत्तों के नीचे वाले हिस्से पर करना है क्योंकि कीट और अंडे वहीं पर ज्यादा पनपते हैं। और अगर नीम का तेल ना मिले तो हल्दी के पानी को भी मिलाकर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जली हुई लकड़ी की जो राख होती है उसे अगर पत्तों पर छिड़का जाए तो उससे भी कीड़े नहीं आते हैं। नीम के हरे पत्तों को चलाकर उसका धुआं करने से भी कीड़ों से बचाव हो जाता है। बाजार में या ऑनलाइन इस तरह की गम कीबोर्ड मिलते हैं, 2-4 वो किसी जगह पर टांग देने से कीड़े उस पर चिपक जाते हैं, लेकिन कई लोग कीट को मारना नहीं चाहते तो वो इस उपाय को ना करें।
1: और लहसुन अदरक और हरी मिर्च का घोल बना ले, मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का घोल बनाकर उसे छानकर जैविक कीटनाशक छिड़काव कर सकते हैं। ये प्राकृतिक रूप से कीटों को दूर रखता है और पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। और समय पर पौधों की सिंचाई करें, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी न दें, उनमें संतुलित खाद का प्रयोग करें ताकि पौधे स्वस्थ रहें।
0: और अगर पौधे बहुत छोटे हैं तो उनके पीछे छुपे हुए जो कीड़े और अंडे होते हैं उनको हाथ से ही हटा देना चाहिए, ऐसा एक कमेंट में लिखा गया है। और भौतिक बाधा कीड़ों तक पहुंचने से रोकने के लिए महीन जाली का उपयोग किया जाता है। चिपचिपे जाल, पीले रंग के चिपचिपे
1: पीली स्टिकी ट्रैप लगाएं, हाँ। मेरे ख्याल से ये कहना चाहते हैं ताकि वो जैसे मक्खी है, मधुमक्खी है, तो जो उड़ने वाले कीट को आकर्षित करने के लिए किया जाता है ताकि वो पकड़ने में मदद मिले।
0: इसके अलावा पेस्टिसाइड का उपयोग भी कर सकते हैं या कीटनाशक जिसे हम कहते हैं। ये हमारे श्रोताओं ने हम तक सलाह पहुंचाई है। और हम अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस की अगर बात करें ममता जी, तो 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी और पहला अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून 2011 को मनाया गया था। दुनिया का लगभग 80-90% जो भी व्यापार होता है वो समुद्र के रास्ते से ही होता है। नाविक बहुत लंबे समय तक अपने परिवारों से दूर रहकर बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और जो सप्लाई चेन है जिसे हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला कहते हैं वो सुचारू रूप से चलती रहे, इसमें इन नाविकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और हमारे दैनिक जीवन में जितनी चीजें इस्तेमाल होती हैं, खासतौर पर जो भी वस्तुएं हैं, भोजन है, ईंधन है, वो सब हमें इन्हीं समुद्री रास्तों से नाविकों के द्वारा पहुंचाया जाता है।
1: बिल्कुल, और समुद्र में तेल की खोज की जाती है, वो उनमें भी इनकी अहम भूमिका होती है। और कई बार समुद्र में जब तूफान आता है, सीरफ जिसे कहते हैं, तो कई नाविक दूर दूर तक समुद्र के बीचों बीच चले जाते हैं तो उनकी जान को भी बहुत खतरा होता है। वो मुसीबत से लड़ते हुए कई बार घर वालों को पता नहीं चलता है, कोई नेटवर्क नहीं होता है, मोबाइल फोन वहां तक नहीं पहुंचता है, तो उस समय घर वालों की चिंता देखते ही बनती है। 3-3, 4-4 दिन, कई बार महीनों तक वो तूफान में फंसे रहते हैं, लेकिन जब वो घर लौट आते हैं तो घर वालों की चिंता खत्म होती है।
0: बिल्कुल, इसीलिए उनके क्या अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा किस तरह हो, उनका कल किस तरह से बेहतर किया जाए, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस तरह के जो भी खास दिन है वो आयोजित किए जाते हैं। और इस दिन का उद्देश्य भी यही है कि नाविकों के योगदान के लिए उन्हें समाज में सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए और समुद्री उद्योग को बेहतर हो सके इसे बढ़ावा देने के लिए ये दिन हम मना रहे हैं।
1: और अब सुनते हैं प्रोग्राम का ये आखिरी गाना।

0: ये था आरजू फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज थी। और अब बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और चंचल वर्मा का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम जिसमें आप श्रोता कॉल के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं और अपने विचार रखते हैं। आज भी कुछ ऐसे ही विचार आप श्रोताओं के द्वारा विविध भारती को लेकर, विविध भारती के कार्यक्रमों को लेकर। तो सुनते हैं आज का हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम है जी कल्लू मनियार, चूड़ी वाला।
0: कल्लू जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: रामपुर मनियारान और जी जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश।
0: अच्छी बात है, अपने बारे में बताइए, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया, शुक्र है मालिक का, आपकी दुआएं हैं। मेरा चूड़ी का काम है, मैं चूड़ी जो है साइकिल पर ले जाता हूँ।
0: अच्छा, साइकिल पर चूड़ियाँ लगा के आप बेचने जाते हैं?
1: जी हाँ, गाँव में जो रामपुर के चारों तरफ गाँव है ना, उनमें जाता हूँ।
0: तो कैसे बांधते हैं चूड़ियों को साइकिल पे? गिरने का डर नहीं रहता है? चूड़ियाँ टूट जाएंगी तो?

0: अभी बांध के ले जाता हूँ मैं चूड़ी को बहुत अच्छी तरीके से।
1: अच्छा, फिर घर घर फेरी लगाते हैं?
0: अभी फिर मैं गांव में जाता हूँ, फिर बच्चे खुद ही बता दे कल्लू ताऊ जी आ रहे हैं चूड़ी पहन लो, अच्छा। तो घर वाले बुला ले रहे हैं फिर।
1: अरे वाह, यानी आप बहुत फेमस हैं कल्लू ताऊ जी के नाम से ना?
0: जी,
1: अच्छी बात है।
0: चूड़ी बेचता हूँ कांच की।
1: कांच की चूड़ियाँ बेचते हैं, तो महिलाएं किस तरह की चूड़ियाँ ज्यादा पसंद करती, कौन सा रंग ज्यादा लेती हैं?
0: मैरून रंग ज्यादा पसंद करती हैं जी।
1: मैरून रंग पसंद करती हैं, चमकदार?
0: हाँ जी, मैरून रंग ज्यादा पसंद करती हैं, और रंग भी तो काफी है वैसे, बाकी ज्यादातर मैरून चलता है।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: और कांच की चूड़ी है, शुभ मानते हैं इसको, कांच को?
1: बिल्कुल, हमारे यहाँ सुहाग का प्रतीक मानते हैं चूड़ियों को, कांच की चूड़ियों को पहना जाता है।
0: जब मैं चूड़ी पहना देता हूँ तो नचकारती है फिर चूड़ी, फेंटर नचकारती है मेरा औरतें, ये सुहाग की चीज है ना
1: जी। तो एक चूड़ी ज्यादा देते हैं आप?
0: हाँ बिल्कुल, दो देता हूँ जी मैं तो।
1: अच्छा, दो दे देते हैं आप?
0: दो जो देता हूँ, जोड़ा ही भगवान तुम्हारा बनाओ रखे, जोड़ा ही मैं दे रहा।
1: अरे वाह, चलिए कल्लू जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बताइए अपनी पसंद का गाना।
0: फिल्म का नाम है जी आपकी परछाइयाँ, और आवाज है रफी की, गाने के बोले ये है तुमन्ना तेरे घर के सामने।
1: बहुत सुंदर, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी मैं जीतन यादव बड़ा गांव जलागोना मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैम।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ, दुकान पे बैठा हूँ, आपके नंबर मिला रहा था।
0: अच्छा, क्या दुकान है आपकी, किस तरह की?
1: किराने की दुकान है मैम।
0: अच्छा, सभी सामान रखते हैं?
1: जी मैम।
0: तो सुबह खुल जाती होगी कितने बजे, 8 बजे या 10 बजे?
1: 7 बजे खुल जाती है, रात के 10 बजे तक चलती है।
0: तो लंच में घर जाते होंगे या खाना साथ लेके आते हैं?
1: नहीं नहीं मैम, दुकान घर पे ही है और घर पे ही बैठा रहता हूँ, घर पे ही रेडियो है विविध भारती

0: का साथ है।
1: अरे वाह, फिर तो आपके मजे हैं कि जब हुआ एक बार घर के अंदर चले गए, खाना वाना खाया, पानी वानी पी, चाय वाय पी और आ गए, है ना?
0: जी जी,
1: मतलब घर के अंदर ही है तो और भी आराम हो गया है, घर के अन्य लोग भी आकर दुकान को संभाल लेते होंगे।
0: जी जी, और आने लोग आते हैं और देवेश भारती को सुनते हैं और खासकर हेलो फरमाए सुनते हैं तो बहुत आनंद आता है।
1: आपकी दुकान पे आके सुनते हैं श्रोता?
0: जी।
1: तो उन्हें बताइए कि मोबाइल पे न्यूज ऑन AIR ऐप जो है डाउनलोड कर लें और सुने।
0: जी, मोबाइल पे सुनते हैं, पर दुकान पे ग्राहक आते हैं भी सुन के जाते हैं।
1: अच्छा लगता है हम लोगों को कि हमारे श्रोता इतनी शिद्दत के साथ हमें सुनते हैं। कैसा लगता है आप सबको हेलो फरमाइश कार्यक्रम?
0: अच्छा लगता है।
1: क्या अच्छा लगता है इसमें?
0: दोस्तों को, श्रोताओं को मौका मिल जाता है बातचीत करने का और गाने अच्छे लगते हैं सबसे बड़ी बात।
1: बिल्कुल सही कहा, बातचीत का मौका मिलता है और आपकी पसंद के गाने भी इसमें आते हैं, है ना?
0: जी।
1: तो चलिए आज आपकी पसंद का गाना बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: आज मजबूर कलम का गीत सुनना चाहता हूँ, रिम झिम बरसता ये बाहर पानी अंदर ये आग लगी है, मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में गीत है।
1: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये झमाझम गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार मंदाकिनी जी।
0: नमस्कार, अरे आपको पता है मंदाकिनी है इधर?
1: जी मैम आपकी आवाज से पहचान जाते हैं।
0: अरे तो हमारे कार्यक्रम बहुत शिद्दत से सुनते हैं, गहराई से सुनते हैं ना?
1: जी मैम।
0: नाम बताइए अपना।
1: जी मैम मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, जिला महोबा उत्तर प्रदेश से।
0: कैसे हैं सुनील जी?
1: बहुत बढ़िया है मैम।
0: अच्छा
1: आप कैसे हो?
0: मैं भी अच्छी हूँ। अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप सुनील जी?
1: जी मैम अभी तो हम भट्टों में

0: काम करते थे राजस्थान में।
1: अच्छा, राजस्थान में कहाँ?
0: जी भरतपुर में करते थे मैम।
1: और अब क्या कर रहे हैं इन दिनों?
0: अभी मैम छुट्टी हुई तो अभी घर आए, दो चार दिन हुए घर आए हुए अभी।
1: अच्छा, तो भरतपुर में कैसा लगता है आपको, कैसा माहौल है वहाँ का?
0: जी मैम बढ़िया माहौल है, अच्छा लगता है वहाँ पे रहना, काफी साल हो गए अभी जाते जाते।
1: तो आपका परिवार कहाँ रहता है, महुआ में?
0: जी मैम।
1: तो आते जाते रहते होंगे ना, दिक्कत तो होती होगी अप डाउन करने से?
0: जी मैम दिक्कत तो होती है, अब ऐसा है कि 8 महीनों के लिए चले जाते हैं, तो 8 महीना वहाँ पे लगातार काम करना होता है भट्टों पे, तो 8 महीने अब फिर आपके प्रोग्राम तो हम 1 बजे रास्ते ही सुनना चालू कर देते थे।
1: अच्छा, आपको टाइम मिल जाता था?
0: टाइम तो इतना रहता है कि अब हमको 1 बजे रात को उठना पड़ता था काम के लिए, तो आपका प्रोग्राम 1 बजे रास्ते ही चालू हो जाता फिर सुबह 11 बजे तक, फिर यहाँ पर 4 बजे से आपका प्रोग्राम चालू रहता था करीब 10 बजे तक रात को।
1: क्या बात है, ना प्यार है आपको विविध भारती से कि रात को 1 बजे से कार्यक्रम सुनना शुरू कर देते हैं।
0: जी मैम आपका ये सखी सहेली का टेलीकास्ट दोबारा होता है ना 3 बजे रात को?
1: हाँ बिल्कुल,
0: तो रात में सुनना बहुत अच्छा लगता है आपका सखी सहेली कार्यक्रम।
1: अच्छी बात है, आप लोग कार्यक्रम सुनते हैं, लेकिन ये जो काम आप करते हैं भट्टों का, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है क्या?
0: जी मैम ये तो मुश्किल काम है, इसमें मेहनत बहुत है।
1: बहुत मेहनत है इसमें तो, और आपको बिल्कुल एक तरह से अपने आप को खपाए रखना पड़ता होगा।
0: जी मैम उसमें मेहनत काम ज्यादा पड़ता है,
1: और उसमें से भी आप समय निकाल कर विविध भारती सुनते हैं और खुश रहते हैं, बहुत अच्छी बात
0: है। नहीं वो तो ऐसा है कि काम चलता रहता है, विविध भारती में चलता रहता है, उसके बगैर तो मन ही नहीं लगता हमारा, जो सुबह हुआ कि हम सीधा विविध भारती चालू कर देते हैं पहले।
1: अच्छी बात है,
0: सभी लोग सुनते हैं, फिर हम तो ऐसा है कि रात में बिजली रहती, काम बिजली में करना होता है रात को, तो एम्पलीफायर में लगा के रखते हैं, जब बिजली चली जाती है तो फिर ब्लूटूथ स्पीकर में लगा के रखते हैं।
1: इतनी व्यवस्था कर रखी है आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। हमारे ऐसे जो दीवानगी वाले श्रोता हैं, दीवानगी की हद तक विविध भारती को प्रेम करते हैं, उनसे बात करके हमें अच्छा लगता है। बताइए सुनील जी, आज कौन सा गाना सुनेंगे आप?
0: हेमलता जी का गाया गुताना है, भीगा भीगा मौसम आया बरसे घटा घनघोर।
1: बहुत सुंदर, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश।
0: हेलो
1: मंदाकिनी दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मंदाकिनी दीदी, मैं बोल रहा हूँ राम बाबू मालवीय, कोलार रोड भोपाल से।
0: स्वागत है आपका राम बाबू जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ दीदी, आप सुनाओ आप कैसे हो और हमारे विविध भारती की संपूर्ण टीम कैसी क्या है?
0: सब अच्छे हैं, बताइए अपने बारे में। हाँ। राम बाबू जी,
1: अपनी ड्राई क्लीनिंग का काम है, लॉन्ड्री का, और वो काम वाम करते हैं और अपने परिवार के साथ में जो भी है, जो दाल रोटी के लिए कमाते खाते हैं और बढ़िया आनंद मंगल से जितना परमात्मा ऊपर वाले देते हैं उसी में खुश रहते हैं और विविध भारती सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी इंसान को संतुष्ट तो रहना ही होगा एक हद तक, है ना? अगर हमारी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि हम असंतुष्ट रहेंगे तो फिर जिंदगी तो खराब ही होनी है, हमारा वर्तमान खराब ही होना है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: आज गाना सुनना चाहेंगे, फिल्म का नाम है पापा कहते हैं, उसमें गाना है उसकी आवाज में, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही।
0: बहुत सुंदर गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: वैसे दीदी आपके यहाँ के प्रोग्राम जो आपने नए शुरू किए वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमने चिट्ठियाँ भी भेजी है मन चाहेगी।
0: अच्छा चलिए सुने आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: संदीप कुमार मक्कड़, पींगा वाला चौक, गोरैया, पंजाब डिस्ट्रिक्ट जलंधर से आपका निमेश होता।
0: जी स्वागत है आपका संदीप जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, आपका साथ है तो अच्छा, ना हो तो
0: और भी अच्छा।
1: जी हाँ जी हाँ।
0: बताइए क्या करते हैं संदीप जी आप?
1: मेरा वैसे फोटो फ्रेम और लेमिनेशन का काम है, इसके अलावा मैं गाता भी हूँ और लिखता भी हूँ।
0: अरे क्या गाते हैं और क्या लिखते हैं बताइए।
1: मैंने अपना हिंदी सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया है, मैं लिखता भी हूँ, हिंदी सॉन्ग लिखता हूँ और मैं सूफी सॉन्ग भी लिखता हूँ। गाने के कुछ बोल हैं वो सुनाना चाहूँगा।
0: गा के सुनाइए।
1: चलती ट्रेन में चलती चाय पी ले पी ले, तू मेरा हिंदू तो मुस्लिम भाई, पी ले आएगी सुस्ती मरेगी सुस्ती, एक्ट प्याली पी ले भाई पी ले पी ले, ओ सब है मुसाफिर दिल के अच्छे, सब है मुसाफिर दिल के अच्छे, कान कहाँ पर उतरेगा भाई पी ले, ओ चाहे मेरी गरम मसाला, पिएगा कोई किस्मत वाला, गोरा हो या बिल्कुल काला, खुल जाएगा दिल का ताला, कहता रहेगा कहने वाला, चलता रहेगा चलने वाला, सुन ले भाई सुन ले लाला, आगे मेरे फौजी भाई, तेरे पे कुर्बान में भाई, तुम हो सबकी जान हो भाई, बैठो तुम भी चाय है आई, बैठो तुम भी चाय है आई। ये है मेरे गाने के
0: क्या बात है।
1: और अंतरा सुनाया।
0: अच्छा जो लिखते हैं कैसी सूफियाना कविताएं लिखते हैं?
1: सूफियाना जैसे मैं सूफियाना भी सुनाना चाहूंगा। सब सियाने मिलते ने, सब सियाने मिलते ने, ते कमला कोई कोई, ओ बोलण वाले मिलते ने चुप कोई कोई, तांदा मेला मंदा मेला, तांदा मेला मंदा मेला, ते समझे कोई कोई, ओ सब सियाने मिलते ने ते कमला कोई कोई।
0: बहुत अच्छा लगा संदीप जी, अपने शौक को आगे बढ़ाइए, लिखते रहिए और इसी तरह गाते रहिए। अगली मुलाकात में फिर आपसे कोई नया गीत सुनेंगे, बताइए।
1: तो मेरी 30 तारीख को मैरिज एनिवर्सरी भी है, मेरी वाइफ ज्योति है उसके लिए डेडिकेशन है, उनको सुनाना चाहूंगा। फिल्म है बीवियों तो ऐसी, गाना है फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: परम मालवीय विदेश चारों सपन चार है। नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: जी मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मध्य उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: जी स्वागत है आपका, बहुत पहले आपसे बात हुई भी है।
1: जी जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना, मैं आपका वही जाना पहचाना श्रोता हूँ।
0: अच्छा, आपका नाम है शारदा
1: जी,
0: तो आपका ये नाम किसने रखा?
1: मेरे पिताजी ने रखा है और मैं बसंत पंचमी के आसपास माँ शारदा की कृपा से प्राप्त हुआ था माता पिता को। तो मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, न छल न कपट न प्रमाद हूँ, न छल न कपट न प्रमाद हूँ, मैहर की देवी माँ शारदा का प्रसाद हूँ।
0: बिल्कुल, वही हमने जानना चाहा कि ये जो नाम है महिलाओं का ज्यादा होता है शारदा, पुरुषों में बहुत कम ऐसे नाम सुनाई देते हैं, तो जानने की हमारी इच्छा हुई कि शारदा नाम क्यों रखा गया, कैसे रखा गया, तो आपने बता
1: जी,
0: दिया
1: जी,
0: है।
1: जी, मेरे बहुत लंबे लंबे बाल भी हुआ करते थे लड़कियों जैसे, और मैं कॉलेज तक मैं यूं ही लंबे बाल रखा करता था। गोरा चिट्टा रंग था मेरा और भोला सा चेहरा मासूम सा, तो बहुत से लड़के मुझे को लड़की समझ के लिए दोस्ती करते थे कि ये लड़की जरूर होगी।
0: हाँ।
1: लड़के की भेष रहती है।
0: वाह, बहुत अच्छा लगा। देखिए एक नाम के पीछे कितनी चीजें छुपी होती है ना, और अब कैसा लगता है आपको, अब लोग जानते हैं कि भाई ये तो शारदा प्रसाद जी हैं, शारदा कुमारी नहीं है।
1: सब लोग जानने लगे हैं शारदा प्रसाद प्रजापति हैं, और अब तो दाढ़ी मूछे सब हो गई हैं, तो लोग बात जानते हैं।
0: क्या करते हैं शारदा जी?
1: मैं घर पर रहता हूँ और बच्चों के साथ में आनंद पूर्वक आकाशवाणी और विविध भारती से जुड़ा रहता हूँ। रेडियो सुनना ही मेरा शौक है, दीवानगी है, जुनून है। और जब आकाशवाणी विविध भारती में हमारा फोन लगता है, सुरीली हर दिल की धड़कन, तो बस हृदय प्रफुल्लित गदगद हो जाता है। इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता होती है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, बस ये तो महसूस करने वाली बातचीत होती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और हम भी महसूस करते हैं अपने श्रोताओं की दीवानगी को। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है विरासत से, कुमार सानू और चित्रा जी ने गीत गाया है, जावेद साहब ने लिखा है और अनु मल्लिक का संगीत है। गीत के बोल हैं,

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ जी दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मंदाग्नि जी बोल रही है?
0: हाँ जी हाँ जी
1: जी जी, गजराज ज्योति बात कर रहा था, रेला ही राजगढ़ जावरा मध्य प्रदेश से।
0: अरे स्वागत है आपका गजराज जी, कैसे हैं?
1: दीदी बहुत अच्छे हैं, मुझे आपकी जो आवाज है ना बहुत प्रिय लगती है।
0: क्या बात, ये तो आप लोगों का प्यार
1: और शायद मैंने दीदी आपको बीकानेर से भी सुना है।
0: बिल्कुल सुना होगा, आप लोग तो वैसे भी दीवाने हैं आकाशवाणी के, रेडियो के, और हमारे श्रोताओं की वजह से ही तो देखिए ना आज आकाशवाणी कितना आगे निकल गया है।
1: जी जी जी
0: बताइए गजराज जी, आप क्या करते हैं, अपने बारे में थोड़ा बताइए।
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ, और इसके अलावा जो समरसिबल रहते हैं खेतों के लिए पंप, उनकी रिपेयरिंग भी होती है हमारे यहाँ।
0: आपके पास मतलब शॉप है?
1: जी।
0: अच्छा, आप करते हैं?
1: जी।
0: अरे वाह क्या बात है, तो फिर एक पन दो काज हो गया, खेत भी संभाल लिया और ये काम भी कर लिया,
1: और साथ साथ रेडियो तो हमको मिलता ही रहता है विविध भारती तो।
0: वो तो आपकी खुराक में शामिल है ना, हो सकता है एक रोटी कम खा लेती होंगे लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते आप श्रोता लोग।
1: नहीं भूलते हैं। जी, जी जी जी।
0: बहुत अच्छा लगता है हमें। तो गजराज जी आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: सौदागर मूवी का है, इमली का बूटा बेरी का पेड़।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत है, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मंदाकिनी जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं बढ़ापुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं
0: बोलिए, नाम बताइए।
1: नाम एम ताहिर है, यानी मोहम्मद ताहिर।
0: मोहम्मद ताहिर साहब, स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: शुक्रिया मैम, बहुत बढ़िया, आपकी दुआएं हैं।
0: देखिए, ऐसा है कि आप अच्छे हैं तो अपने अच्छे कार्यों से अच्छे हैं आप, और ईश्वर की आप पर जो है अति कृपा है, अल्लाह की है ना?
1: जी जी, सब ऊपर वाले के कर्म से सब सही है।
0: क्या करते हैं ताहिर जी आप?
1: मैडम जी, मैं एक शॉपकीपर हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है।
0: अच्छा, किस विषय पर?
1: जी मैंने बाई इकोनॉमिक्स किया था।
0: तो आपने अपनी दुकान संभाल रखी है या अपने पिता की?
1: जी, पापा बैठते थे, उसके बाद मैं बैठता हूँ, बस अब उन्होंने फिलहाल रेस्ट के लिए।
0: किस तरह की दुकान है
1: ये? लेडीज की है, आपसे ही मुतालिक सारे सामान है इसमें, जैसे गिफ्ट होते हैं, बैंगल्स होती है और कॉस्मेटिक्स वगैरह।
0: तो आपने एमए इकोनॉमिक्स में किया, तो आगे कुछ और एग्जाम्स वगैरह नहीं दिए? क्या आपका उद्देश्य यही था कि पिता के व्यवसाय को संभालना है?
1: बात ये थी कि उसके लिए कहीं जाना पड़ता और पापा जी को मुझे अकेला कहीं भेजना मंजूर नहीं था।
0: अच्छा, हाँ, ये हमारे माता पिता का जो अति मोह है संतान के प्रति ना, उसमें वैसे अच्छी बात है कि हम ताउम्र माता पिता का साथ दे पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छूट भी जाता है जिंदगी में। हालांकि कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, आप खुश हैं तो सब अच्छा है।
1: बहुत बढ़िया जी।
0: तो बताइए, गाना कौन सा सुनेंगे?
1: फिल्म कन्यादान से मेरी जिंदगी में आते, रफी साहब की आवाज़।
0: क्या बात है, तो कुछ और बात होती।
1: जी जी, जी।
0: कोई खास मकसद इस गाने को सुनने का?
1: नहीं मैम, अल्फाज सही है, आवाज़ तो कोई कहने के दो राय है ही नहीं इसमें।
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: जी मैं जलंधर सिटी पंजाब से सोनू बात कर रहा हूँ। जी
0: सोनू जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं जी। आप मंदाकिनी जोशी जी बात कर रहे हैं?
0: हाँ जी।
1: हाँ जी मैडम जी, क्या जी, नमस्कार आपको।
0: सुनते हैं हमारे कार्यक्रम
1: जी, मैं तो रेगुलर आपसे जुड़ता रहता हूँ फेसबुक के माध्यम से।
0: क्या बात है।
1: हाँ जी, बस एक क्या होता है ना, कभी कभी इबारत कुछ समझ में नहीं आती, फिर आप दो क्वेश्चन भी पूछते हैं।
0: आप जवाब देते हैं उसका?
1: हाँ जी, मैं जरूर पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जवाब दूँ आपको और मेरा नाम जुड़ा रहे भारती के साथ में।
0: तो सवाल तो बिल्कुल सीधे साधे होते हैं और एक कार्यक्रम को थोड़ा सा लाइवनेस बनाने के लिए करना पड़ता है,
1: जी
0: नहीं तो कार्यक्रम बिल्कुल उबाऊ हो जाएगा।
1: और विविध भारती का प्रोग्राम, लेकिन जब से स्टार्ट हुआ है विविध भारती का, तब से मेरे ग्रैंडफादर, फादर मेरे और मैं, वो कभी भी बोझ महसूस नहीं हुई। इतने बढ़िया प्रोग्राम होते हैं विविध भारती के।
0: मतलब आपके दादा की विरासत को आपके पापा ने संभाला और अब आप संभाल रहे हैं, है ना? जैसे हम उनके कामों को संभालते हैं कि भाई हमारे दादा की ये बिजनेस था और उनके बाद पिता ने और पुत्र ने संभाला, तो विविध भारती सुनने की भी आप लोगों ने ये एक ले रखा है प्रण की हमारे दादाजी की सुनने की आदत को हम भी सुनने में डाल लेंगे।
1: उन्होंने कहा था ना, चैनल वो सुना जाए जिसमें अच्छी ज्ञानवर्धक बातें हों। तो रेडियो ऐसा माध्यम है कि कभी इसमें गलत जानकारी मिलती नहीं, सही मिलती है हमेशा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और आप लोग इतने प्यार और ईमानदारी से सुनते हैं, सबसे बड़ी बात ये हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग कार्यक्रम पेश करते हैं और आप लोग इतनी संजीदगी के साथ अपनी बात कहते हैं।
1: जी मैडम जी, देखिए आप जितनी वीडियो पोस्ट करते हैं ना फेसबुक पर, वो सभी मैं देखता रहता हूँ और सभी मैं लाइक भी करता हूँ। तो आपने 90 साल का जो जश्न मनाया वो भी मैंने देखा।
0: चलिए तो आप बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको।
1: मैंने गाना सुना है जी दोस्ताना मूवी का, किशोर दा और आशा जी की आवाज में, बहुत खूबसूरत गीत है। दिल लगी ने
0: दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई
1: और आग जल पड़ी।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं संतोष जी आड़ा बोल रहा हूँ, ग्राम चिड़ास कंजर डेरा देवास जिले से।
0: स्वागत है संतोष जी, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया है, ट्यूट हो गया हमको, रेडियो सुनते रहते हैं आपका प्रोग्राम, बचपन से सुन रहे हैं जी। आज 44 साल की उम्र हो गई हमारी, और रेडियो समय से सुन रहे जो सेल वाले शुरू स्टार्ट हुए थे।
0: कैसा लगता है रेडियो सुनने से, जिंदगी संवर गई आपकी?
1: रेडियो दीदी हम है ना, हमारे फार्म हाउस पे मस्त सुना करते हैं, मजदूर काम किया करते हैं, और आपकी भी भारतीय पूरी टीम को हम बधाई देना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे लिए इतने सुंदर सुंदर कार्यक्रम लाते हो, फोन इन कार्यक्रम लाते हो, और गाने पुराने सदाबहार में जो सुनाते हो, बहुत बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा, आप इतने गहराई से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और उनके बारे में अपने विचार भी रखते हैं। वैसे आप खुद क्या करते हैं संतोष जी?
1: जी खेती गृहस्थी का काम है, खेती गृहस्थी का।
0: तो अभी क्या है आपके खेत में?
1: जी अभी खाली पड़ा है, बस वर्षा दीदी का इंतजार है, जैसे पानी गिरता है तो हम सोयाबीन लगाएंगे दीदी।
0: तो सोयाबीन की खेती में कितनी मेहनत मशक्कत हो जाती है, कितना ध्यान रखना पड़ता है?
1: दीदी जो अब जो सोयाबीन की फसल है बिल्कुल बेकार हो चुकी है, सिर्फ ये मेहनत फसल है, जैसे पानी का इंतजार रहता है, खेतों में चारा उगवाता है तो दवाई का इंतजार रहता है, डोरे लगाना पड़ता है, बेलों का समय रहा नहीं, ट्रैक्टरों से लगाते हैं और फिर भी चारा नहीं मरता, फिर डबल दवाई उड़ाते हैं, बिल्ली की दवाई उड़ाना पड़ता, बहुत कठिन का काम है ये सोयाबीन पैदा करना।

0: उसके बाद भी फिर मौसम सहयोग नहीं देता है तो फिर बैठक भी बहुत कम होती है हम किसानों को। सोयाबीन की फसल में तो बहुत घाटा है।
1: सही कहा आपने, बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। तो फिर सोयाबीन की फसल को बार बार फिर क्यों बोते हैं, कोई कारण है खास?
0: मेहनत का तो है, फिर भी क्या है इसमें नुकसान चीज नहीं होती। अभी हम मक्का लगा दें तो जंगली सुअर खा जाते हैं, मूंगफली लगा दें जंगली सुअर खा जाते हैं, रतालू की फसल करें तो वो भी जंगली सुअर खा जाते हैं, उड़द दाल वगैरह पैदा करते हैं तो हिरन खा जाती, हिरन की मौत है हमारे इधर।
1: अच्छा, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता होगा आपको, तो ये तो 24 घंटे की निगरानी हो गई।
0: जी ये क्या है, सोयाबीन में निगरानी नहीं रखना पड़ता है, दूसरी जो फसल है इसमें बरोबर निगरानी रखना पड़ता है।
1: तो इसलिए आप सोयाबीन को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देते हैं ना कि सोयाबीन की फसल लग जाए। अपने गाँव के बारे में बताइए थोड़ा सा, कैसा है आपका गाँव?
0: हमारा गाँव बहुत सुंदर है। ऐसे तो हमारे गांव के पोहे और समोसे कचौरी बड़े फेमस है।
1: क्या बात है, पोहे और समोसे?
0: यस,
1: मुंह में पानी आ गया हमारे। देखिए, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने हमें एक नई जानकारी दी है सोयाबीन की खेती के बारे में। तो संतोष जी, आप गाना बता दीजिए।
0: गाना है वो प्यार हमारा अमर रहेगा याद करेगा जहां।
1: फिल्म का नाम क्या है?
0: मुद्दत।
1: मोहम्मद अजीज की आवाज़?
0: जी।
1: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का गीत फिर।

था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें ताकि हम अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर दे सकें। हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए

0: हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222860288। दूसरा नंबर 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो, फरमाइश।

एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी जोधपुर के एफएम सन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हम आपको सुनवाएंगे युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी हमारे प्राथमिक केंद्र से।

0: हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, शाम की इस खूबसूरत घड़ी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दिन भर की भागदौड़ के बाद अब वक्त है थोड़ा सुकून का। आप सुन रहे हैं हमारा इवनिंग शो, जहां हर शाम लेकर आती है एक नई बात और एक नई मुस्कान। इस प्रोग्राम का नाम है युववाणी, जहां हम दो रेडियो बडीज आपके साथ जुड़े हैं। मेरा नाम है आयुषी और आज मेरे साथ हैं
1: आपकी अपनी माधवी पुरोहित। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में ये प्यारा सा गाना।

0: दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। आज के डिजिटल ज़माने में हमारे पास हज़ारों फॉलोअर्स है, हंड्रेड्स ऑफ कॉन्टैक्ट है और ऑनलाइन बहुत सारे दोस्त भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऑनलाइन फ्रेंड्स और रियल फ्रेंड्स एक जैसे होते हैं? तो माधवी, क्या कहोगी इसके बारे में?
1: आयुषी, आज के टाइम में सुबह उठते ही हमारा सबसे पहला काम होता है सोशल मीडिया चेक करना। किसी की स्टोरी पर रिएक्शन देते हैं तो किसी की पोस्ट लाइक करते जाते हैं और धीरे धीरे नए दोस्त बनाते रहते हैं। कभी कभी हम किसी ऑनलाइन दोस्त से अपनी बातें भी शेयर कर लेते हैं जो हम आसपास के लोगों से भी नहीं कर पाते।
0: बिल्कुल, ऑनलाइन फ्रेंड्स हमें सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं और कई बार हमारी हॉबीज और इंटरेस्ट भी शेयर करते हैं, कभी गेमिंग के थ्रू, कभी सोशल मीडिया के थ्रू और कभी किसी ऑनलाइन कम्युनिटी के थ्रू। हम अच्छे दोस्त बन ही जाते हैं।
1: लेकिन आयुषी, एक बात बताइए, जब आपका दिन बहुत बुरा गुजर रहा हो, जब आप सच में उदास हो, जब आप किसी कंधे की जरूरत हो, तब क्या एक इमोजी या टेक केयर वाला मैसेज भी काफी होता है?
0: शायद नहीं, क्योंकि उस वक्त याद आता है वो दोस्त जो बिना कुछ कहे समझ जाता है, जो आपके घर आ जाता है, जो कहता है चल बाहर चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। यही होते हैं मेरे अनुसार रियल फ्रेंड्स।
1: बिल्कुल, और रियल फ्रेंड्स वो नहीं जो आपके अचीवमेंट्स पर क्लैप करें, रियल फ्रेंड्स तो वो होते हैं जो आपकी फेलियर्स में भी साथ खड़े हो, जो आपकी खुशी में, हंसी में और आपके दुख में भी रो दें।
0: लेकिन इसका मतलब माधवी ये भी तो नहीं कि हमारे जो ऑनलाइन फ्रेंड्स हमसे जुड़े हैं वो बुरे होते हैं। कई बार ऑनलाइन दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि वो जिंदगी भर का साथ बन जाती है। कुछ लोग ऑनलाइन मिलते हैं और बाद में बेस्ट फ्रेंड भी बन जाते हैं।
1: बिल्कुल, और दोस्ती का कनेक्शन इंटरनेट से नहीं, दिल से होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ऑनलाइन फ्रेंडशिप को समझने और ट्रस्ट करने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाता है।
0: लेकिन माधवी, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आप रात की 2 बजे किसी मुसीबत में फंस जाओ तो आप किसको कॉल करेंगे? मतलब अपने 5,000 फॉलोअर्स या फिर अपने किसी और सच्चे दोस्त को?
1: जवाब हम सभी जानते हैं आयुषी, मुसीबत के वक्त लाइक्स और कमेंट्स काम नहीं आते। उस वक्त तो सिर्फ वो लोग काम आते हैं जो दिल से आपके साथ खड़े होते हैं।
0: बिल्कुल, ऑनलाइन दुनिया हमें कनेक्ट करती है लेकिन रियल दुनिया हमें सपोर्ट करती है। ऑनलाइन दोस्त हमें समझ सकते हैं पर रियल दोस्त हमें

0: महसूस भी कर सकते हैं।
1: और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आज के जमाने में ऑनलाइन और रियल फ्रेंडशिप एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, दोनों ही अपनी अपनी जगह है, बस जरूरत है सोचने की, कनेक्शन की।
0: बिल्कुल जरूरत है एक सच्चे कनेक्शन की, इसीलिए फॉलोअर्स की गिनती से ज्यादा जरूरी है उन लोगों की गिनती जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहेंगे।
1: और याद रखिए, एक सच्चा दोस्त 1000 ऑनलाइन कॉन्टैक्ट से ज्यादा कीमती होता है।
0: बिल्कुल, ऑनलाइन फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर होते हैं लेकिन रियल फ्रेंड्स आपकी जिंदगी में होते हैं, और जब जिंदगी मुश्किल हो जाती है तब स्क्रीन नहीं साथ काम आता है।

0: को समझता था। अगर कोई उदास होता तो उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता। अगर कोई नाराज होता तो उसे मनाना अपनी जिम्मेदारी समझता। उसके लिए रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं थे, बल्कि दिल से निभाने वाली जिम्मेदारी थी।
1: बचपन से ही उसने एक बात सीखी थी, रिश्ते टूटने नहीं चाहिए। और इसी सोच के साथ वो बड़ा हुआ। हर जगह उसने लोगों को जोड़ा, समझाया और रिश्तों को बचाने की कोशिश की। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास भी नहीं हुआ कि लोग उसकी अच्छाई को उसकी आदत बना चुके थे।
0: जब भी कोई गलतफहमी होती, अभिनव ही फोन करता। जब भी कोई बात बिगड़ती, अभिनव ही समझौता करता। और जब भी कोई दूर जाता तो अभिनव ही उसे वापस लाने की कोशिश करता, हर बार सिर्फ अभिनव।
1: लेकिन एक दिन उसके दोस्त ने उससे पूछा, यार अभिनव, क्या तुम कभी थकते नहीं हो? अभिनव ने हैरानी से पूछा, किस बात से? तो दोस्त बोला, हर बार सबको मनाते मनाते, सबके लिए खुद को बदलते बदलते।
0: अभिनव मुस्कुरा दिया और धीरे से बोला, अगर मेरे झुकने से रिश्ते बच जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उस वक्त उसे लगता था कि वो सही कर रहा है, लेकिन जिंदगी उसे एक बहुत बड़ा सबक सिखाने वाली थी।
1: और बस इसी तरह समय बीतता गया, महीने सालों में बदलने लगे और अभिनव की जिंदगी में एक अजीब सी चीज होने लगी। वो हर किसी की पसंद बनने की कोशिश करते करते खुद की पसंद भूलने लगा।
0: किसी को उसका ज्यादा बोलना पसंद नहीं था तो उसने चुप रहना सीख लिया। किसी को उसके सपने समझ नहीं आते थे तो उसने सपने बताने ही छोड़ दिए। किसी को उसका इमोशनल होना पसंद नहीं था तो उसने अपनी फीलिंग दिखानी बंद कर दी।
1: और धीरे धीरे अभिनव बदलता गया। इतना बदल गया कि एक दिन उसने खुद को आईने में देखा और सोचा, मैं पहले जैसा क्यों नहीं रहा? लेकिन फिर भी उसने खुद को समझा लिया, सब ठीक हो जाएगा।
0: लेकिन सच ये था कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। बाहर से सब नॉर्मल लग रहा था, पर अंदर से अभिनव रोज थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। उसकी हंसी कम हो रही थी, उसकी बातें कम हो गई थी और उसकी आंखों की चमक कहीं ना कहीं तो खो गई थी।
1: और फिर एक शाम वो अपनी छत पर अकेला बैठा था। सूरज ढल रहा था, हल्का हल्का अंधेरा छा रहा था और उसकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही लग रही थी। ना पूरी रोशनी, ना पूरा अंधेरा, बस एक अजीब सी खामोशी।
0: उसने उस दिन पहली बार खुद से बात की और पूछा, अभिनव क्या तुम खुश हो? सवाल बहुत छोटा था, लेकिन जवाब देना बहुत मुश्किल, क्योंकि सालों से उसने सबसे बात की थी, बस खुद से ही नहीं।
1: और उस रात उसने अपनी पुरानी डायरी खोली। उस डायरी में उसके सपने लिखे थे, उसकी ख्वाहिशें लिखी थी, उसकी मुस्कुराहट लिखी थी और हर पेज उसे याद दिला रहा था कि कभी वो कितना जिंदा दिल हुआ करता था।
0: डायरी का एक पन्ना पढ़कर उसकी आंखें भर आई। उस पर लिखा था, मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ और अपने दिल की सुनना चाहता हूँ। अभिनव सोचने लगा, तब मैंने अपने दिल की सुनना बंद कर दिया।
1: उसने अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखा, हर जगह उसे एक ही चेहरा नजर आया, एक ऐसा इंसान जो सबको खुश रखने की कोशिश कर रहा था और उस भीड़ में कहीं अभिनव खुद को खो रहा था।
0: अगर मैं खुद ही खुश नहीं हूँ तो मैं किस चीज को बचा रहा हूँ? और इसी सवाल ने उसकी पूरी सोच बदल डाली।
1: फिर अगली सुबह अभिनव ने एक मुश्किल फैसला लिया। उसने उन लोगों के पीछे भागना बंद कर दिया जो उसकी कद्र नहीं करते थे। उसने उन रिश्तों को पकड़ कर रखना बंद कर दिया जो सिर्फ उसे ही तकलीफ दे रहे थे।
0: ये आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि कभी कभी किसी चीज को पकड़ कर रखने से ज्यादा हिम्मत उसे छोड़ने में लगती है, और अभिनव ने वही हिम्मत दिखाई।
1: लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। कुछ लोग बोले, तुम बदल गए हो। कुछ ने कहा, तुम सेल्फिश हो गए हो। और कुछ ने कहा, तुम हार गए हो।
0: लेकिन इस बार अभिनव चुप नहीं रहा। उसने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, मैं हारा नहीं हूँ। मैं बस खुद को खोना नहीं चाहता। मैं बस अपनी जिंदगी में खुद की भी एक जगह चाहता हूँ।
1: और धीरे धीरे अभिनव ने खुद के साथ वक्त बिताना शुरू किया, अपने पुराने सपने वापस उठाए, नई चीजें सीखी, अपनी पसंद के काम किए और सबसे जरूरी, खुद से दोस्ती कर ली।
0: महीनों बाद जब उसने फिर आईने में देखा तो उसे वही पुराना अभिनव नजर आया, वही मुस्कुराहट, वही चमक, वही सुकून जो कभी कहीं खो गई थी।
1: तब अभिनव ने समझा, रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन खुद से रिश्ता सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इंसान खुद ही टूट जाए तो किसी और को संभाल ही नहीं सकता। और उसने ये भी सीखा कि हर बार झुक जाना प्यार नहीं होता, हर बार

0: रह जाना समझदारी नहीं होती, हर बार सब कुछ सह लेना सेक्रिफाइस नहीं होता।
1: कभी कभी अपनी इज्जत के लिए खड़े हो जाना भी जरूरी होता है, कभी कभी बस अब और नहीं कहना भी जरूरी होता है, और कभी कभी किसी और को नहीं खुद को चुनना भी जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी खुद से प्यार।

0: दोस्तों, हम अक्सर दूसरों को खुश रखने में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं।
1: लेकिन सच तो ये है कि जिस तरह हम दूसरों को प्यार और सम्मान देते हैं, उसी तरह खुद को भी देना जरूरी है।
0: खुद से प्यार करना मतलब परफेक्ट होना नहीं,
1: बल्कि अपनी कामियां और अपनी खूबियां दोनों को अपनाना है।
0: खुद से प्यार करना मतलब अपनी खुशी को भी इम्पोर्टेंस देना है।
1: और याद रखिए, जो इंसान खुद से प्यार करता है, वही दूसरों को भी सच्चा प्यार

0: ही सकता है,
1: क्योंकि खुश रहना कोई लग्जरी नहीं।
0: बल्कि हर इंसान का हक है।
1: तो दोस्तों, अभी हमने कहानी सुनी थी अभिनव की, जिसमें बताया कि किस तरह उसे अपने खुद से प्यार करने में कितना स्ट्रगल फेस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा समय आ गया था उसकी लाइफ में कि वो खुद को ही भूल गया था। तो दोस्तों,
0: रिश्ता निभाना अच्छी बात है, लेकिन खुद को खोक कर और किसी और को पाना कभी सही नहीं होता।
1: जो रिश्ता आपकी खुशी, सकून और इज्जत छीन ले, उसे पकड़ कर रखना प्यार नहीं, खुद के साथ अन्याय है।
0: कभी कभी जिंदगी का सबसे बहादुर फैसला किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए चुनना होता है।
1: तो आखिर में याद रखिए कि खुद से प्यार करना स्वार्थ नहीं होता, और अपनी इज्जत को पहले रखना गलत भी नहीं होता।

0: अभी अभी हमने सुना था कोकटेल टू मूवी का ये अरिजीत सिंह के आवाज़ में गाना तुझको। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, हम दो रेडियो बडीज आपके साथ जुड़े हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। मेरा नाम है आयुषी और मेरे साथ है,
1: और मेरा नाम है माधवी।
0: तो माधवी अब मैं तुमसे एक दो सवाल करती हूँ, है ना, तुम उसका जवाब देना, मतलब तुम उसके बारे में क्या सोचती हो वो बताना।
1: बिल्कुल।
0: देखो, अगर आपको एक टाइम मशीन मिल जाए तो आप कहीं जाना पसंद करेंगे क्या, मतलब पास्ट में या फ्यूचर में कहाँ जाना पसंद करेंगी?
1: आयुषी, तुमने क्या इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। मुझे लगता है मैं सबसे पहले फ्यूचर में जाना पसंद करूंगी, ये देखने के लिए कि मेरी लाइफ 20 साल बाद दुनिया कैसी होगी।
0: अच्छा, और मैं शायद पास्ट में जाना चाहूंगी क्योंकि इतिहास के कुछ खास पलों को अपनी आंखों से देखना कितना रोमांचक हो सकता है।
1: जैसे कि आयुषी, ताजमहल बनते हुए देखना या फिर आजादी के समय का माहौल महसूस करना।
0: हाँ, हो सकता है ये भी। लेकिन एक सवाल और है मेरा तुम्हारे लिए कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी का कोई एक पल बदलने का मौका मिले तो क्या तुम ऐसा क्या बदलोगी?
1: शायद आयुषी मैं कुछ भी नहीं बदलूंगी, क्योंकि हमारी गलतियों की हमें हमेशा ज्यादातर सीख ही मिलती है।
0: हाँ, बात तो एकदम सही कही है, मतलब बहुत खूब बात कही है। और फ्यूचर देखने की बात करें तो क्या आप अपना भविष्य पहले से जानना चाहोगी?
1: नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिंदगी का मजा तो उनके सरप्राइज में ही होता है।
0: ये तो बहुत शानदार बात कही है आपने। मुझे उम्मीद है हमारे लिसनर्स का भी यही जवाब होगा। साथ ही शायद इसीलिए टाइम ट्रेवल ना फिलहाल सिर्फ सिर्फ हमारी कल्पना और साइंस फिक्शन का हिस्सा हो सकता है।
1: और इस टॉपिक से हमें एक बात जरूर सीखने को मिलती है आयुषी, कि पास से तो हमें सीखना चाहिए, फ्यूचर के लिए सपना देखो और प्रेजेंट में अपनी लाइफ को पूरी तरह जी लो।
0: अब इतना तुमने बता ही दिया है तो फिर फिलहाल प्रेजेंट में रह करके हम देखते हैं कि हमारा जो अगला आने वाला जो ये जो म्यूजिकल सॉन्ग है ये कौन सा है।

0: दोस्तों, हर दिन हम वर्ड ऑफ द डे लाते हैं, तो आज कैसे भूल सकते हैं। आज भी हम अपना वर्ड लेकर के हाजिर हो गए हैं। तो माधवी, फटाफट से बता दो कि आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे क्या है।
1: आयुषी, आज का खूबसूरत शब्द है ब्लॉसम।
0: अच्छा, अब ये बताया है तो इसका मतलब भी बता दो।
1: ब्लॉसम का मतलब होता है खिलना, विकास करना या अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच जाना।
0: अच्छा, जैसे एक फूल धीरे धीरे खिलता है और अपनी खुशबू से सबका दिल जीत लेता है, वैसे ही हम भी मेहनत सीखने और पॉजिटिव सोच के साथ ब्लॉसम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना ब्लॉसम का मीनिंग।
1: बिल्कुल, आइए इसे एक सेंटेंस में हम समझने की कोशिश करते हैं। एवरी चाइल्ड हैज अ ब्लॉसम, यानी कि हर बच्चा ही एक ब्लॉसम है, उन्हें लव सपोर्ट की हमें हमेशा जरूरत पड़ती है।
0: बिल्कुल, कितनी प्यारी बात है ये। हर इंसान का अपना समय होता है चमकने का और आगे बढ़ने का, यानी कि जैसे हमारा है, आपका है, हम सभी का ब्लॉसम करने का एक टाइम होता है। तो हम जितना भी रेस में दौड़ ले, लेकिन सबकी टाइमिंग अलग होती है, सब अलग अलग टाइम पे अपने टाइम के अनुसार चमकेंगे और वो सब पा लेंगे जो हम चाहते हैं, है ना। तो माधवी, तुम भी अपने लाइफ में ब्लॉसम चाहती हो?
1: बिल्कुल, कौन नहीं चाहेगा अपने लाइफ में ब्लॉसम करना और खिल जाना, पूरी तरह अपनी हर मुकाम तक पहुंच जाना।
0: बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे जितने भी लिसनर्स हैं जो अभी हमें सुन रहे हैं, वो सब भी अपनी लाइफ में एकदम ब्लॉसम की तरह, एक फूल की तरह खिल जाए और इतना इतने खूबसूरत दिखे कि जिन्हें वो चाहते हैं वो भी उन्हें बदले में उतना ही चाहे।

0: दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने कई सारे सवाल जो थे आप सभी से भी और माधवी से भी किए थे, लेकिन इसी बीच एक और दिमाग में आया है मेरे सवाल, जो कि है कि अगर आज आपको अपने फ्यूचर वाले वर्जन से बात करने का मौका मिले तो आप उससे क्या पूछोगे?
1: और अगर आप अपने फ्यूचर वाले खुद को एक चिट्ठी लिखें तो उसमें क्या क्या लिखेंगे? सपने, उम्मीदें या फिर कुछ सवाल?
0: शायद सबसे पहला सवाल यही होगा, क्या तुम खुश हो?
1: बिल्कुल, क्योंकि ज़िंदगी में हम सब कुछ पाने की दौड़ में बस लगे रहते हैं, लेकिन अक्सर खुशी को ही भूल जाते हैं।
0: मैं अपने फ्यूचर वाले मुझे लिखना चाहूंगी कि मुझे उम्मीद है कि तुमने अपने सपनों का पीछा करना कभी नहीं छोड़ा
1: और
0: होगा।
1: मैं लिखूंगी, अगर सपने पूरे ना भी हो तो उम्मीद करती रहूंगी, तुमने कोशिश करना तो कभी नहीं छोड़ा होगा।
0: अगर फ्यूचर वाले मुझे मुझे लिखना हो तो मैं उससे ये पूछूंगी कि बताओ, क्या तुम आज भी उन लोगों की कदर करते हो जो मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़े थे?
1: और मैं लिखूंगी, क्या तुमने मम्मी पापा के चेहरे पर वो मुस्कान लाई जिसके लिए तुम आज इतनी मेहनत कर रहे हो?
0: क्या तुमने अपनी पहचान बनाई? ये भी पूछूंगी मैं,
1: और सबसे ज़रूरी, क्या तुमने खुद को संभाल कर रखा है?
0: क्योंकि दुनिया को खुश करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हम खुद को ही खो दें।
1: सही कहा, सफलता अच्छी बात है लेकिन सुकून उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है।
0: और अगर फ्यूचर में कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ मुश्किल हो रहा है
1: तो याद रखना, आज वाला तुम पूरे विश्वास के साथ तुम्हारे लिए सपने देख रहा है
0: हाँ, और वो मानता है कि तुम हर मुश्किल से लड़ सकते हो,
1: और हर गिरने के बाद फिर से उठ सकते हो,
0: तो फ्यूचर वाले मुझे सुनो,
1: जहां भी हो, जैसे भी हो।
0: बस इतना याद रखना।

0: कि सपने बदल सकते हैं, रास्ते बदल सकते हैं,
1: लेकिन अपनी इंसानियत, अपनी पहचान और खुद पर विश्वास कभी मत खोना। तो दोस्तों, आज का हर छोटा कदम ही कल के बड़े सपनों की एक नींव बनाता है। इसी के साथ हम भी आपको ले चलते हैं हमारे आने वाले अगले म्यूजिकल सॉन्ग की ओर।

0: दोस्तों, आजकल हम अपनी रोज़ वाली जो डेली वाली लाइफ है उसमें इतने बिजी हो चुके हैं कि मुझे लगता है इतना बिजी होते वक्त ना बीच में हमें खुद से एक सवाल करना चाहिए कि क्या हम सच में खुश हैं या सिर्फ हम बिजी ही हैं।
1: सुबह अलार्म बजाते हैं, हम उठते हैं कॉलेज ऑफिस या फिर काम पर चले जाते हैं
0: दिन भर असाइनमेंट्स, मीटिंग्स, कॉल्स और नोटिफिकेशन में उलझे रहते हैं,
1: और रात को सोने से पहले कहते हैं कि आज तो बहुत बिजी थे।
0: लेकिन कभी हमने खुद से पूछा है आज मैं खुश भी था या नहीं?
1: आज हम सबके पास वक्त देखने के लिए घड़ी है,
0: लेकिन खुद के लिए वक्त नहीं है,
1: हम सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं,
0: पर अपनी फीलिंग्स के साथ कनेक्टेड नहीं है।
1: कभी कभी लगता है कि हम जिंदगी जी नहीं रहे।
0: बस उसे कंप्लीट करने की रेस में दौड़ रहे हैं,
1: हम कहते हैं बस ये काम हो जाए फिर तो खुश हो जाऊंगा,
0: फिर कहते हैं बस ये एग्जाम निकल जाए,
1: बस प्रमोशन मिल जाए।
0: और इसी बस में पूरी जिंदगी निकल जाती है।
1: खुशी की कोई डेस्टिनेशन नहीं है,
0: खुशी तो सफर का एक हिस्सा है।
1: एक कप चाय के साथ बैठना,
0: पुराने दोस्त से बात करना,
1: माँ के साथ कुछ पल बिताना,
0: या बिना किसी वजह के मुस्कुरा देना, यही तो छोटी छोटी खुशियां हैं।
1: आज हम बिजी रहने को अचीवमेंट समझने लगे हैं,
0: लेकिन बिजी होना और खुश होना दोनों अलग अलग बातें हैं,
1: क्योंकि कैलेंडर भर जाना
0: दिल भर जाने की गारंटी नहीं देता।
1: तो आज घर जाकर सिर्फ एक सवाल खुद से पहुंचिए,
0: मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ बिजी हूँ?
1: और अगर जवाब ना मिले
0: तो शायद जिंदगी को थोड़ा धीरे जीने की जरूरत है। जिंदगी सिर्फ काम पूरे करने का नाम नहीं है, बल्कि उन पलों को महसूस करने का नाम है जो हमें सच में खुश करता है।
1: बिजी रहना सफलता नहीं निशानी हो सकती है, लेकिन खुश रहने एक अच्छी जिंदगी निशानी है।
0: बिल्कुल, बिजी रहना सफलता की निशानी हो सकता है, लेकिन खुश रहना एक अच्छी जिंदगी की निशानी है। क्या बात कही है माधवी। तो इसी इसी बातचीत के चलते हम दोनों भी आज हम खुद से पूछेंगे कि हम सच में खुश भी है या फिर सिर्फ बिजी है। लेकिन मेरा जवाब इसमें ये होगा कि मैं तो खुश भी हूँ, ऐसा बिजी रहकर जहाँ पर मुझे मेरे रेडियो पर अपने लिसनर से बात करने को या फिर अपनी बात उनके दिल तक पहुँचाने को मिले। फिलहाल में एक गाना आ रहा है जो बहुत प्यारा सा है, आपके दिल तक पहुंचाती हूँ।

0: दोस्तों, आज हमने इतनी सारी बातें बातें सुनी, कही आपसे, है ना। तो जिसमें हमने कहानी सुनी, तो जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह से अभिनव जो है खुद से प्यार करने की कोशिश करता है। तो इसी में कुछ जो पंक्तियाँ हैं हमें मिली हैं, वो हम आपसे भी साझा करना चाहेंगे, जो कि है कि मैंने ज़िंदगी से पूछा, तो इतनी मुश्किल क्यों है।
1: जिंदगी मुस्कुरा कर बोली ताकि तुम्हें अपनी ताकत का पता चल सके। जिंदगी
0: मैंने पूछा, और खुशियाँ इतनी छोटी क्यों हैं।
1: बोली ताकि तुम उन्हें ढूंढना सीख सको।
0: तो दोस्तों, इसी में आगे और कुछ पंक्तियाँ हैं, उसी को हम आगे और ले चलते हैं।
1: जिंदगी की भागदौड़ में कुछ पल खुद के लिए भी रखना,
0: हर मंजिल की तलाश में रास्तों का मजा भी चखना।
1: हर दिन कुछ पाने की चाह में जो है उसे मत खो देना।
0: कल की चिंता करते करते आज को मत रो देना।
1: कभी धूप में बैठ मुस्कुराना, कभी बारिश में भीग जाना।
0: छोटी छोटी खुशियों को दिल से गले लगाना।
1: हर किसी को खुलकर जरूर नहीं,
0: हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं, कभी कभी खुद की मुस्कान भी जरूरी होती है।
1: थोड़ा सा वक्त अपने लिए,
0: थोड़ा सा प्यार खुद के लिए।
1: जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे जीने की फुर्सत होनी चाहिए।
0: तो दोस्तों, आखिर में हम इन सभी पंक्तियों से आपको यही बताना चाहेंगे कि खुशियाँ बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे पलों में छिपी होती है, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं।

0: दोस्तों, अभी अभी आपने ये जो गाना सुना है तेरा नाम दूँ, ये मूवी मूवी से था जिसका नाम था एंटरटेनमेंट। तो बस इसी से मुझे याद आया कि हम जो आपका एंटरटेन कर रहे हैं वो बस यहीं तक। अब हमें दीजिए इजाज़त जाने की। आपके ये दो रेडियो बडीज आपसे जुड़े थे, मेरा नाम है आयुषी और मेरे साथ थी,
1: मेरा नाम है माधवी।
0: तो दोस्तों अब हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपसे इसी मुस्कुराहट के साथ अगले दिन भी। नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी जोधपुर के एफएम सन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बज रहे हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से होंगे।
1: इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदनाओं भरी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया।
2: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
3: सीख चौ में सिमटा जब किंतु विकल प्राण बिहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस बीत गया, एक बरस।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंताकयाला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तागक, ओडिशा से भाजपा के देवशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। भारत ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया।

और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है, 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। विश्व भर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है, विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अमेरिका के फुलटन में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग और किदांबी श्रीकांत सहित अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने आज आसान जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत ने भारत के ही डी सनीत को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं गुड इवनिंग जोधपुर कार्यक्रम।

FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन हैं FM सन सिटी के संग और ये कार्यक्रम है गुड इवनिंग जोधपुर। शाम 6:05 से लेकर शाम 7 बजे तक बने रहिएगा हमारे संग। दोस्तों, आज निर्जला एकादशी है और FM सन सिटी सुनने वाले सभी श्रोताओं को इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं।

दोस्तों हम बात कर रहे थे निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी हमें सिखाती है संयम, श्रद्धा और पुण्य कर्म।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS वचिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: शालीनता है जिसकी शान,
3: शांति शांति है।
2: सौम्यता है इसकी पहचान,
3: ये शहर है अमन का। यहाँ की फिजा है निराली।
2: FM सन सिटी, सन सिटी, सन सिटी।

एफएम सन सिटी के संग आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर। और आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी की। दोस्तों, निर्जला एकादशी इंसान को भगवान से जोड़ती है।

FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM सन सिटी और ये कार्यक्रम है गुड इवनिंग जोधपुर।

गुड इवनिंग जोधपुर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं एफएम सन सिटी के संग और आज हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी की। दोस्तों आज का दिन लाखों लोग बिना पानी के अपना दिन गुजारते हैं। और परोपकार करते हैं और लोगों को सेवा करते हैं लोगों की।

0: अपना सुख एक तरफ हर माँ बड़न सुख एक तरफ
1: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियाँ उम्मीद विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर गीता भवन रोड जोधपुर
2: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी कैसे क्लिक पे अरे वाह
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए RBI कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए
5: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा पौधे उगाइए पर्यावरण बचाइए
6: आज ही पधारे लालजी नर्सरी रानोजी का बाग खोखरिया बिरामंडो
5: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए
7: लालजी नर्सरी आप कुछ समय हरियाली में बिताओ
8: जो बातें सुनता है जो बातें करता है जो अपने कहता है जो अपनी सुनाता है जो गाता है गुनगुनाता है आपका अपना FM सनसिटी

FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM सन सिटी और ये कार्यक्रम है गुड इवनिंग जोधपुर। दोस्तों हम बात कर रहे थे निर्जला एकादशी की। जोधपुर में छोटे से छोटा आयोजन हो उसे जोधपुरवासी भव्य बना देते हैं।

0: सभी विषयों पर। सुभाष जैन जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ
0: जी,
1: रेडियो पे इतने वर्षों के बाद आज मैं आया हूँ। वो बात दूसरी है कि रेडियो से एज ड्रामा आर्टिस्ट और एज कॉम्पेयर मैं जुड़ा रहा हूँ, वर्षों तक जुड़ा रहा हूँ, लेकिन वर्षों के बाद आज आया हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे श्रोताओं का भी आज बहुत शुक्रिया कि आज आपसे फिर बात करने का मुझे मौका मिला है।
0: जी शुक्रिया तो आपका है कि आपने अपना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला है। और सबसे पहले तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि आप कैसे हैं।
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बड़ा मजा आ रहा है देश में। आज इस तरह की घटनाएं सुबह से शाम तक नए नए इवेंट्स सुनने को देखने को मिल रहे हैं। और रेडियो जो है अब मैं देख रहा हूं, बीच में कुछ पहले थोड़ा सा स्लो हुआ था, आज फिर लोग जो हैं रेडियो की तरफ भाग रहे हैं और रेडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं।
0: जी तो देखिए ना, आपने आकाशवाणी ने अपना 90 वर्ष का जो सफर है वो कितना खूबसूरती के साथ तय भी कर लिया है
1: जी।
0: और इस 90 वर्ष के सफर पर हम सभी जश्न भी मना रहे हैं।
1: जी जी जी, जी।
0: तो रेडियो से आप कैसे जुड़े और रेडियो से जो जुड़ाव था वो कैसे हुआ?
1: हुआ क्या कि मैं पहले कॉलेज में थिएटर करता था और थिएटर के साथ साथ रोहतक रेडियो स्टेशन पर जब वो पता चला कि वहां पर भी आर्टिस्टों को वो लेते हैं, उनका ऑडिशन होता है, तो हरेक की मर्जी होती है, हरेक का दिल करता है, क्योंकि हमारे लिए रेडियो उस वक्त पे बहुत बड़ी चीज थी
0: जी।
1: क्योंकि रेडियो को हम जो है सिर्फ सुनाई हमने जिंदगी भर, क्योंकि मेरे फादर जो है वो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे तो वो रेडियो की न्यूज डेली सुनते थे, तो हमें एक लगाव था और हम तो फिर हवा महल और ये यार वो बहुत सुनते थे, तो उससे हमें लगा कि हम भी कोशिश करें। और अगर शॉर्टकट बताऊं तो मैंने रेडियो स्टेशन पे ऑडिशन दिया और मैं फिर पहले बी ग्रेड मैंने पास किया, फिर बी हाई मैंने पास किया
0: ड्रामा में जी।
1: और ड्रामे के बाद फिर एज अनाउंसर भी मैंने वहां ऑडिशन पास किया और रेडियो के लिए बहुत प्ले भी मैंने लिखे।
0: तो अच्छा, लिखे भी आप?
1: हाँ, लिखे भी मैंने,
0: किए भी एक्ट भी किए
1: मैं, क्योंकि आर्टिस्ट था तो मैंने किया। तो रेडियो का मेरा सफर बहुत ही बढ़िया रहा। और मैं आपको छोटी सी चीज बता दूं कि रेडियो हमारे पूरे देश में बहुत ही, अगर आप जाओगे अंदर, जैसे ही एंट्री लोगे रेडियो स्टेशन में आपको एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है, तो ऐसा है हमारा रेडियो।
0: बिल्कुल, जड़ों से जुड़ा है, हमारी जड़ों से, देश की जड़ों से जुड़ा है, हमारी संस्कृति से जुड़ा है और आज भी रेडियो ने अपनी संस्कृति को छोड़ा नहीं
1: जी।
0: सर, आप रेडियो से जुड़े रहे, रेडियो से आपको इतना प्यार था, लेकिन आपने जीवन पर्यंत जो सेवाएं दी वो दूरदर्शन के लिए दी, तो ये कंट्रास्ट किस तरह से हुआ, कैसे रेडियो की दुनिया से दूरदर्शन की दुनिया में आप पहुंचे और वहां जाकर चूंकि आप ड्रामा के आर्टिस्ट थे लेकिन आपने न्यूज चैनल को चुना और आपने पूरी सेवाएं दी, तो इसके बारे में बताइए हमें।
1: बहुत ही रोचक किस्म की कहानी है। मैं फिल्म की लाइन में चला गया था।
0: अच्छा
1: जी। और फिल्म मैंने बना ली थी, मेरी फिल्म का नाम था छन्नो, जो रीजनल लैंग्वेज में नहीं लेकिन डायलेक्ट में थी, हरियाणवी डायलेक्ट में। तो उसके बाद क्योंकि सब कुछ खुद ही करना पड़ा था, एक तरह से कहा जाए तो मैं थक भी गया था
0: फिल्म बनाते हुए।
1: तो मुझे किसी ने कहा कि आप यूपीएससी में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करो, तो मुझे एक बार तो लगा कि यार मतलब मैं कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं करो, आसान नहीं है। तो जब उन्होंने कहा आसान नहीं है तो मुझे लगा अरे ये चैलेंज है तो चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो खैर मैंने अप्लाई किया, मेरा सिलेक्शन हो गया ड्रामे में। और जब ड्रामे में सिलेक्शन हुआ तो मेरी पहली पोस्टिंग लखनऊ थी, नवाबों का शहर लखनऊ। तो वहां मेरी डायरेक्टर से बात हुई तो डायरेक्टर ने कहा कि देखिए सुभाष जी, सिलेक्शन आपका ड्रामे में हुआ है एज प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, लेकिन ड्रामे में तो हमारे दूसरे कर रहे हैं, तो आप ऐसे घूमिए कुछ दिन, उसके बाद देखते हैं। तो मैं घूमता घूमता न्यूज रूम था वहां पर, वहां चला गया। वहां पर जब मैंने देखा तो मेरे लिए हर चीज नई थी, क्योंकि हम ड्रामे में हर चीज बहुत प्लान से और रिहर्सल के साथ करते हैं, लेकिन न्यूज में रिहर्सल का टाइम नहीं होता। तो मैं बड़ा शॉर्टकट आपको बताता हूँ, दो चार दिन मैंने देखा जाकर पैनल पर, 3-4 हमारे कैमरे होते थे, वीएम अलग होता

0: था, ऑडियो अलग होता था, ग्राफिक्स के अलग इनपुट्स होते थे, तो कुल मिला के शॉर्टकट 10-15 के करीब जो है लाइव इनपुट्स यूज होते थे एक बुलेटिन में जो लाइव जाता था।
1: क्या बात है,
0: तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था।
1: हा?
0: तो एक दिन वो जो प्रोड्यूसर करते थे वो आए नहीं, तो हमारे जो संपादक थे उन्होंने कहा कि सुभाष जी आप कीजिए। अरे मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, मतलब बुलेटिन खराब कर रहे हैं, ये मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बोले नहीं मैं आपको देख रहा हूँ 3-4-5 दिन से, आप बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेट्स ट्राई। मैंने कहा जिम्मेवारी आपकी होगी, अगर कुछ गलती हुई तो मेरी जिम्मेवारी नहीं होगी। बोले नहीं नहीं मेरी होगी, आप कीजिए। तो खैर उन्होंने मुझे कहा और मैंने जाके किया, और वो बुलेटिन न्यूज बुलेटिन लखनऊ से वाकई बहुत अच्छा चला गया।
1: जी जी,
0: बस उससे मेरे न्यूज चिपक गया और वो लंबे वक्त तक चला मेरे साथ। तो मैं वैसे बीच बीच में दूरदर्शन के लिए ड्रामे करता रहा और मैंने डांस प्रोग्राम भी किया, वो मुझे स्पेशल असाइनमेंट होती थी। जैसे सोनल मानसिंह जी का मैंने एक डांस का परफॉर्मेंस था उनका,
1: अच्छा?
0: वो मैंने स्टूडियो में किया और मुझे जो हमारे चेयरमैन थे उन्होंने अप्रिसिएशन लेटर दिया और वो बहुत ही बढ़िया गया। ये मैं करता रहा लेकिन स्पेशल असाइनमेंट की मैंने, मेन में जुड़ा रहा सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन न्यूज से।
1: जी, तो हम चूंकि बात करने वाले हैं आपकी और भी जो फील्ड से उस पर भी, लेकिन अभी बात चल रही है आपकी दूरदर्शन की, उसके न्यूज चैनल से जुड़े रहने की। सुभाष जी, आजकल टीवी चैनल से अगर हम बात करें, प्राइवेट टीवी चैनल जितने भी हैं, वो अपने को श्रेष्ठ दिखाने की होड़ में या टीआरपी के चक्कर में किसी भी खबर की सच्चाई जाने बिना बड़ा चढ़ाकर बात कहते हैं और एक अजीब किस्म की सनसनी फैला देते हैं। तो इस तरह के समाचारों की सार्थकता पर सवाल तो उठने ही चाहिए, आप क्या सोचते हैं? और आप जिस चैनल पे काम करके निकले वहां सच्चाई को कितना रखा जाता था या सच्चाई कितनी खरी उतरती थी, इस पर हम जानना चाहते हैं।
0: देखिए अगर मैं आजकल के न्यूज चैनल की बात करूं तो मुझे, मैं पहले बहुत न्यूज देखता था
1: जी।
0: आज मैं न्यूज देखता हूं तो मुझे अंदर से दुख होता
1: जी,
0: है,
1: फेड अप से हो जाते हैं हम।
0: फेड अप के अलावा मुझे लगता है कि यार ये न्यूज नहीं है, क्योंकि न्यूज का, मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट भी रहा हूं, न्यूज में क्या होता है कि जो आपका एंकर होता है उसको अपने व्यूज जो है वो 10% मैक्सिमम 15-20% देने चाहिए, यानी 20% से ज्यादा उनको अपने व्यूज नहीं देने चाहिए, और बाकी जो आपके गेस्ट होते हैं या न्यूज होती है 80% जो है वो आपको वो बतानी चाहिए, वो दिखाना चाहिए
1: जी।
0: लेकिन प्राइवेट न्यूज चैनल में बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये उल्टा हो गया है। एंकर जो है वो अपने आप को गेस्ट भी समझते हैं, एक्सपर्ट भी समझते हैं, एंकर तो होते ही हैं, तो वो पता चल रहा है 80% यानी कि 80%
1: वो खुद ही बोल देते हैं
0: हर चीज के, और जो गेस्ट होते हैं आपके जिनको आप बुलाते हैं
1: उन्हें बोलने भी नहीं दिया जाता।
0: तो ये अनफॉर्चुनेट है लेकिन है। और जहां तक हमारे दूरदर्शन की बात रही,
1: आपने डीडी न्यूज और नेशनल न्यूज को कवर किया है।
0: मैंने डीडी न्यूज में किया और मैं बहुत फक्र के साथ कह सकता हूं कि मैंने दूरदर्शन को छोड़ने से पहले 10 या 15 सालों तक मैं प्राइम मिनिस्टर्स की मोर देन 90% कवरेज मैं करता था।
1: क्या बात है।
0: जी। और हमारे, चाहे वो नरसिम्हा राव जी हो या मनमोहन सिंह जी हो या अटल बिहारी वाजपेयी जी हो और हमारे जो अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी हो, तो उनकी एक अलग चैलेंज होता है क्योंकि लाइव टेलीकास्ट होता है और आपके पास प्रेशर बहुत होता है
1: जी।
0: क्योंकि इस तरह की बड़ी रिकॉर्डिंग में आप चाहे प्रेसिडेंट की करें या प्राइम मिनिस्टर की, मैंने प्रेसिडेंट्स की बहुत रिकॉर्डिंग की और वीवीआईपीस की, वहां किसी को पता नहीं चलता है, बाहर वालों को, वहां प्रेशर ये होता है कि वहां जीरो एरर चाहिए, वहां गलती की कोई किसी तरह की गुंजाइश नहीं होती।
1: जी, बिल्कुल।
0: तो बड़ा मजा आता था लाइव वहां पे। तो अभी सोर्सेज बहुत हो गए थे हमारे पास, इतने ग्राफिक के सोर्सेज होते थे, पता चल रहा है कि फिर हम लाइव ओबी पे जाते थे और उसके बाद हमारे जो कॉरेस्पोंडेंट्स होते थे वो खड़े रहते थे 4-4, 5-5, 6-6 जगह
1: सवाल जवाब करने के लिए।
0: और मैंने जो सबसे बड़ी एक प्रोडक्शन की, मैंने नमस्ते ट्रम्प जो अहमदाबाद से हुआ था, गांधीनगर से जब आए थे वो, तो हमने यूज किए थे तकरीबन मोर देन 100 कैमराज लाइव।
1: क्या बात है।
0: जी
1: जी।
0: तो वो कवरेज जो है वो हमने की और

0: मैं वहां एज प्रोड्यूसर भी था और नेचुरली उस टाइम मैं हेड ऑफ द प्रोग्राम था डीडी न्यूज और डीडी इंडिया का. तो उसमें करके एक बड़ा मजा आया. और दूरदर्शन की न्यूज में हम कभी भी ऐसा नहीं करते थे कि जिसके अंदर आपको प्रॉपर न्यूज ना मिले. सनसनी को फैलाना कम से कम उस वक्त पे दूरदर्शन का काम नहीं था. तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि न्यूज लोग बाग सुनना चाहते हैं.
1: और इसीलिए सुभाष जी, रेडियो की न्यूज हो या दूरदर्शन की न्यूज हो, आज भी उनकी सत्यता पर आंच नहीं आई है
0: जी.
1: आज भी उन्हें ऑथेंटिक माना जाता है और लोग रेडियो की न्यूज सुनना या दूरदर्शन की न्यूज देखना पसंद करते हैं
0: जी.

0: आप सुन रहे थे मीडिया प्रोफेशनल और फिल्मकार सुभाष जैन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी का और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: इनसे मिलिए,

0: कह रहा था आपको।
1: हाँ आप तो सही कह रहे थे, लेकिन ये अरे ये जोगिंदर सिंह जी कैसे अस्त व्यस्त से चले जा रहे हैं?
0: लगते तो वही है। एक मिनट। अरे जोगिंदर सिंह जी, ओ जोगिंदर सिंह जी, सरदार जी,
1: ओ जी,
0: अरे क्या क्या झटका खाया है क्या आपने? कहाँ चले जा रहे हैं घबराए से?
2: और क्या बताऊं सीताराम जी, शुक्र करो कि मैं जिंदा हूँ।
1: क्यों, क्या हो गया?
0: क्या हो गया?
2: अरे यार खबर तो पढ़ी होगी आपने, टीवी पर देखी और सुनी भी होगी। हमारे पड़ोस में जो 6 मंजिला इमारत बनी थी ना, अचानक गिर पड़ी।
1: ओ जी, अरे रे रे, अरे रे रे,
2: हाँ जी।
1: अच्छा फिर तो उससे आपका क्या ताल्लुक?
2: ओ यार हम लोग जहाँ चाय पीते हैं ना,
1: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ।
2: मैं उसी के नीचे खड़ा चाय की दुकान से चाय पी रहा था।
0: हुआ क्या?
2: बस सिर्फ 1 मिनट पहले चाय पीकर वहाँ से बमुश्किल 100 कदम आगे बढ़ा हूँगा कि पीछे से जोर से धड़ाम की आवाज आई। मुड़कर देखा तो बिल्डिंग गिर गई थी।
0: अच्छा अच्छा।
2: हाहाकार मच गई, मलबे के नीचे दबकर 30 लोगों की मौत हो गई। बस 1 मिनट का फर्क है, अगर मैं वहां से ना हटा होता ना, मैं भी ऊपर वाले के पास पहुंच गया होता।
0: ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, बड़ी बुरी खबर है।
2: भला हो वाहिगुरु का, उसने ऐन वक्त पर मुझे बचा लिया।
0: सचमुच जाको राखे साइया सरदार जी, मार सके ना कोई।
2: ओए जिसनू राखे रब तो उसनू चखे कौन।
1: क्या रब ने बचा लिया है? और वो जो 30 बेगुनाह मलबे के नीचे दबकर मर गए, उन्होंने रब का क्या बिगाड़ा था?
0: लेकिन राम गोपाल जी,
1: अरे सच्चाई ये है सीताराम जी कि वो बिल्डिंग अनऑथराइज थी।
0: अच्छा।
1: उसकी कंस्ट्रक्शन में भी घटिया माल का इस्तेमाल किया गया था। सीमेंट की जगह रेत खूब ज्यादा इस्तेमाल की गई थी। जाहिर है कि अथॉरिटीज के साथ मिलकर रिश्वतखोरी की गई, मोटी मोटी रकम ऊपर से नीचे तक बहाई गई और बिल्डिंग बनने दी गई।
2: अब जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी।
0: क्या बताएं सरदार जी, क्या माहौल हो गया है। इस भ्रष्टाचार ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है पूरे माहौल का।
1: तो फिर रब ने इन भ्रष्टाचारियों को सजा क्यों नहीं दी? वो तो सब देख रहा है ना, सब जानता है ना। और यही नहीं है जो जोगिंदर सिंह जी के घर के बाजू में हुआ है।
0: तो
1: एक और बुरी खबर है।
0: वो क्या है?
1: एक अनऑथराइज रेस्टोरेंट में आग लगने से वहां जन्मदिन मना रही एक लड़की और उसके साथ ही जलकर मर गए। जानते हो 20-22 साल के 14 बच्चे मारे गए।
0: माय गॉड।
2: हाँ जी ये सही कह रहे हैं।
0: बड़ी दिल दहलाने वाली खबर है सरदार जी।
1: अरे वहां भी तो बेचारे लोग खामखा ही मारे गए ना। अब क्यों नहीं जला डाला उन सभी गुनाहगारों को तुम्हारे रब ने? क्यों नहीं मार दिया उनको? क्या अजीब मजाक है जो बेगुनाह हादसों में मारे जाते हैं उनके बारे में बस एक ही राय, अजी साहब उनकी तो मौत आ गई थी, अजी साहब उनकी तो किस्मत में बस इतनी ही जिंदगी लिखी थी। और जो हमारे सरदार जी जैसे बच जाते हैं उसका सारा का सारा क्रेडिट भगवान को चला जाता है।
0: लेकिन यही तो कहा जाता है।
1: अरे क्या कहा जाता है आप सीताराम जी, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आप भगवान को क्रेडिट दे देते हैं, कभी रब को क्रेडिट दे देते हैं। एक और कमाल की सोच है, कमाल का विश्वास है। जो किया वो रब ने किया, जो दिया वो रब ने दिया। अरे साहब देखिए, हम भी पैदा हुए हैं, अपने माँ बाप की औलाद हैं, हमारी भी औलादें हैं, जिसको देखो वो सारा क्रेडिट रब को दिया जा रहा है। सब क्या उसी की मेहरबानी है? बताइए सरदार जी चुप क्यों हैं? क्या गलत कह रहा हूं मैं?
2: आप तो नास्तिक हो, आप तो ऐसा ही कहेंगे।
1: अरे सीताराम जी, भगवान ईश्वर गॉड रब सब एक विश्वास है जो आस्था बन गया है। गॉड यानी रब ने इंसान को बनाया, बनाया या नहीं बनाया ये तो नहीं जानता मैं, लेकिन ये कभी ना झुटलाने वाला सच है कि ये इंसान है जिसने रब को बनाया। इंसान के बिना रब को जानता ही कौन है बताइए आप? ये जो जानवर हैं ये भी तो रब के बनाए हुए हैं ना। ये किसी भी धर्म स्थान के अंदर चले जाते हैं, आराम से लघु शंका से निवृत्त हो जाते हैं, गोबर कर देते हैं। भगवान होता तो ऐसा करते ये कभी?
3: यही तो फर्क है नास्तिक जी, इंसान और जानवर में। जानवर को दिमाग नहीं दिया भगवान ने, इंसान को दिया है सोचने और समझने के लिए।
2: ओए भगवान दास, बहुत देर के बाद आए हो, कितने सी तू?
3: मैं भगवान के साथ क्रिकेट खेल रहा था।
0: क्या बात कर रहे हैं भगवान दास जी, है कोई दूसरा भगवान भी तेरे नाम जैसा?
3: मेरे नाम जैसा नहीं, सचमुच का भगवान।

0: दोस्तों आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं आतिश की लिखी झलकी लो कर लो दर्शन, निर्देशक हर्षवर्धन गवई।
1: अच्छा सीधा जी, वो बात सही है आपकी, लेकिन
2: मैं भी वही

0: भगवान जिसे तुम ईश्वर कहते हो, रब कहते हो, वो मेरा दोस्त है। मेरे साथ क्रिकेट भी खेलता है और शतरंज भी खेलता है।
1: पेंकू चंद है ये हमारा दोस्त जो है ना, ये भगवान दास नहीं पेंकू चंद है, फेंक रहा है। अरे भला जो दिखता ही नहीं उसकी हकीकत क्या? ढकोसला है सब, रब गॉड। अरे तुम दिख रहे हो, मैं दिख रहा हूं, सीताराम जी दिख रहे हैं, सरदार जी दिख रहे हैं, कहां है तेरा रब बता दो, कहां? दिखा जरा मुझे, दिखा भाई।
0: वो सर्वव्यापक है ना, तुम्हारे सामने इसी वक्त मौजूद है, मगर तुम जैसे नास्तिक को दिखाई नहीं देगा।
1: चलो मैं मान लेता हूं मैं नास्तिक हूं, ये हमारे सरदार जी तो आस्तिक है ना, ये सीताराम जी तो आस्तिक है ना। भैया आपको दिख रहा है तुमको दिख रहा है?
2: नहीं
1: दिख रहा है ना?
2: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: दो अब जवाब, है कोई जवाब?
0: ये हवा है ना, इसी में हम सब सांस ले रहे हैं।
1: हाँ
0: तुम भी हाँ? क्या दिखाई देती है किसी को? जिंदगी क्या है? जब तक सांस लेते रहोगे जिंदा रहोगे, सांस बंद जिंदगी खत्म। मैं भगवान का दास हूं इसीलिए वो मेरा दोस्त है। मैं तो जब भी बुलाऊं वो ओब्लाइज करता है, दर्शन देने आ जाता है।
2: क्या बात कर रहे हैं भगवान दास, हमें भी दर्शन करवा दो भाई।
3: ओ हाँ यार, सानू भी करवा दे दर्शन।
0: चलो ठीक है, तो इस संडे को आ जाओ मेरे घर पे, मैं विनती करके बुला लूंगा रब जी को, आप दर्शन कर लीजिए।
2: ठीक है जी, आ जाएंगे। क्यों सरदार जी?
3: बिल्कुल आ जाएंगे जी।
1: भैया मुझे तो बख्श दो।
2: क्या बात कर रहे हो, चलिए आप भी चलिए।
1: नहीं, नहीं नहीं नहीं,
0: ना ही आओ तो अच्छा है।
1: हाँ
0: भगवान की भी यही इच्छा है,
1: बस आप लोग दर्शन कर लो जी।
0: तो आ जाना आप दोनों हाँ मेरे घर।
3: अच्छा जी, सत श्री अकाल।
2: राम राम भगवान दास, जरूर आएंगे।
3: ओ जी सत श्री अकाल जी।
2: भाई भगवान दास, राम राम।
0: आइए आइए, आ गए आप, मगर ये क्या साथ में इतनी भीड़ ले आए?
2: अब क्या करें, जिसने भी सुना दौड़ा चला आया, हमें भी दर्शन करवा दो, हमें भी दर्शन करने हैं, साथ ले चलो।
0: चलो भाई ओके, ऐसा करते हैं, वहाँ दूर एक लाइन में खड़े हो जाओ सब लोग, एक एक करके आना।
2: ठीक है
0: अंदर कमरे में भगवान जी हाजिर है, कर लो दर्शन।
2: सरदार जी आप एक काम करो, आप लाइन लगवाओ, सबसे पहले मैं दर्शन करूंगा जी, और दूसरी बारी आपकी आ जाएगी, लाइन लगवाओ।
3: ओ अच्छा जी, ओ ठीक है जी, मैं जाता हूँ लाइन लगवाता हूँ, छेती छेती आप भी आ जाना, पहले दर्शन मेरे होंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाओ लाइन लगवाओ। तो भगवान दास जी अब मैं जाऊँ भीतर दर्शन करने?
0: हाँ हाँ, मगर एक शर्त है।
2: शर्त वर्त यहाँ पर?
0: भगवान सिर्फ उसी को दिखाई देंगे जिसने कभी झूठ ना बोला हो।
2: जी झूठ से मेरा क्या नाता, कोसों तक कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो केवल सच ही बोलता हूँ जब भी बोलता हूँ।
0: जिसने पाप ना किया हो।
2: ओ हो हो, मैं तो पुण्य का भागी हूँ, और पुण्य भी ऐसे करता हूँ कि इस हाथ का उस हाथ को पता नहीं चलता।
0: और जिसने किसी को धोखा ना दिया।
2: हम क्यों धोखा वोखा देंगे, और भी कोई शर्तें हैं आपकी?
0: जिसने रिश्वत ना ली हो ना दी हो।
2: रिश्वत से अपना दूर दूर का कोई नाता ही नहीं है।
0: किसी लड़की पर बुरी नजर ना डाली हो।
2: हम क्यों नजर डालेंगे, आप बताइए कितनी शर्तें और बाकी हैं आपकी?
0: और जिसने किसी पराई स्त्री को कभी ताका झांका ना हो।
2: अरे भाई क्यों जागेंगे ताकेंगे किसी पराई स्त्री को, और भी कोई शर्त है, भीतर जाऊं दर्शन करने?
0: जाओ अंदर जाओ, दर्शन कर लो।
2: ठीक है, ये चला।
0: क्यों जी सीताराम जी, मिल लिए भगवान को, हो गए दर्शन रब के?
2: दर्शन? अरे भगवान दास जी दर्शन की बात करते हो, हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हो गए, विराट प्रभु का स्वरूप, ओ हो हो हो हो हो, आत्मा प्रसन्न हो गई, क्या साक्षात दर्शन दिए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु।
0: इसी तरह सरदार जी ने भी दर्शन लिए, और जो भी आया था सभी ने यही कहा कि उसे भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों हंस रहा हूं। मैं इसलिए

0: हंस रहा हूं क्योंकि ऊपर बैठा भगवान भी हंस रहा है।
1: लो कर लो दर्शन। अभी आप सुन रहे थे आतिश की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे हर्षवर्धन गवई। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे अमरकांत दुबे, अशोक सोनावने, राजेंद्र त्रिपाठी और जयंत पात्रिकर। ये थी विविध भारती मुंबई की प्रस्तुति।

0: ऐसा रोबीला और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हम वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हुई। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे चित्रलोक।

बर्फी फिल्म का गाना निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज थी, स्वरण किरकिरी के बोल प्रीतम की तर्ज थी। रेखा भरद्वाज और साथियों की आवाजें, प्रसून जोशी के बोल, संगीत ए आर रहमान का।

0: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रूपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रूपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। ICC क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के UK इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
2: Partnership with UK is taking many more dimensions.
1: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
0: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन के शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया था। SIT मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए 2,500 रूपए शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रूपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रूपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए लागत 6,000 रूपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रूपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रूपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 5,000 रूपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रूपए का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: पोषण जांच इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
3: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंतकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागा, कर्नाटक से भाजपा के देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
4: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था

0: था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा एआई, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
2: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रुपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए।

0: कानपुरी का लिखा बपीलहरी का स्वर बत किया ये जख्मी फिल्म का गाना था।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।

0: 21 जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन कौन
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर इन्फेक्शन एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन न्यूट्रिशन एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में ये वारिस फिल्म का गाना था। मलिक के बोल थे संगीत उत्तम जगदीश का। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश बेताब फिल्म का गाना।

0: nutrition, exercise, and when do you get self-tested and see a doctor. ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी.
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने.
0: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है. और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं.
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर. हम बोल रहे हैं विविध भारती से. आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में.

0: हुस्ने
1: यार। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। दोस्तों आज के फनकार हैं एक ऐसे सुरीले संगीतकार जिन्होंने नाजुक तरीन गाने दिए हैं, जिनका जादू आज तक कायम है और सदियों तक गाए जाएंगे उनके गीत।

आज के फनकार एक ऐसे संगीतकार जिनके स्वरबद्ध किए गाने हमारी जिंदगी के साथी हैं, जिनके संगीत में खुशी है, गम है, प्यार है और इंतजार है, ढेर सारी कशिश है, जज्बात का सागर है।

संगीतकार मदन मोहन ने ढाई दशक के सिनेमा के करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। मदन मोहन की बनाई धुन आपकी नजरों ने गीत से संगीत

मदन मोहन की बनाई धुन आपकी नजरों ने गीत से संगीत सम्राट नौशाद इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस धुन के बदले संगीत का पूरा खजाना लुटाने को तैयार हो गए थे।

मदन मोहन कोहली का जन्म 25 जून 1924 को कुर्दिस्तान में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल वहां नौकरी करते थे। जिंदगी के शुरुआती 5 साल मदन मोहन ने वहीं बिताए। आगे चलकर उनका परिवार मुंबई आ गया और उनका बचपन बीता राज कपूर, नरगिस और सुरैया के साथ। दरअसल ये उनके पड़ोसी थे। आगे चलकर मदन मोहन ने आकाशवाणी लखनऊ में नौकरी कर ली, जहां उन्हें मिला साथ उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद बरकत अली खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी हस्तियों का।

मुंबई आने के बाद मदन मोहन, श्याम सुंदर और सचिन देव बर्मन के सहायक बन गए। सबसे पहले मदन मोहन को निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल ने फिल्म आंखें में संगीत देने का मौका दिया। इसके बाद मदन मोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर और मदन मोहन का साथ लेकर आया कई अनमोल गाने। उन गानों की बात करने से पहले आपको ये बता दें कि फिल्म अदा से लता मंगेशकर और मदन मोहन ने साथ काम करना शुरू किया, जैसे अदालत,

मदन मोहन के संगीत की दुनिया लता जी तक ही नहीं सीमित रही, न ही मदन मोहन का संगीत सिर्फ संजीदा गानों तक सिमटा रहा, बल्कि उन्होंने मजाहिया गीतों का जादू भी बिखेरा, जैसे फिल्म चाचा जिंदाबाद का ये गाना।

0: उनके बेटे संजीव कोहली और समीर कोहली विविध भारती के स्टूडियो में आए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: यह हमारा सौभाग्य है कि हम उनके बेटे पैदा हुए, लेकिन मेरे हिसाब से कड़ी तो उनका संगीत है और कड़ी उनके सुनने वाले हैं और चाहने वाले हैं जिन्होंने आज तक उनको जिंदा रखा है। और ये जिंदा उनको ऐसा रखा है क्योंकि उनके गाने आज भी लोग इतने ही प्यार से सुनते हैं जैसे पहले सुनते थे। मदन जी जब गुजरे, हमारे पिताजी, मैं मदन जी ही कहूंगा क्योंकि इट बी इजी फॉर देम, जब वो गुजरे मैं 18 साल का था, समीर शायद 13-14 के थे, तो हमारी यादें जो बचपन की जुड़ी हैं वो काफी याद हैं लेकिन कुछ धुंधलाई भी हैं। ज्यादातर हमने उनके जाने के बाद सुनने वालों के तौर पे उनको जाना। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैंने म्यूजिक कंपनी में भी काम किया और कई संगीतकारों के साथ मिल के काम किया, कई एल्बम्स, कई लोगों का म्यूजिक बड़े मतलब चाह से सुना समझा। और ये फिर इल्म हुआ कि मदन मोहन जी का एक जो स्थान था वो कुछ अलग था। जितनी इज्जत लोगों ने उनको दी, जितना प्यार सुनने वालों ने और उनके गायकों ने, बाकी संगीतकारों ने जो उनको इज्जत बख्शी है, जिससे हमें इज्जत मिलती है कि मदन जी का संगीत इतने सालों बाद आज भी लोगों को पसंद है। 25 साल उन्होंने म्यूजिक दिया, उनका करियर 25 साल का था, जल्दी गुजर गए 51 की एज पे। हमेशा उन्हें लगता था कि जितना सक्सेस उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, हमें नहीं लगता है, लेकिन उन्हें जरूर लगा और इसकी वजह भी है।

0: सक्सेस का जो बैरोमीटर है वो था कि बड़े बैनर हों, बड़ी फिल्में हों जिनमें बड़े बड़े स्टार्स हों, दिलीप साहब हों, राज कपूर हों, देवानंद हों, फिल्म फेयर अवार्ड मिलना बहुत जरूरी था क्योंकि उस वक्त एक ही अवार्ड था, कि उनके जाने के बाद ये सब होता गया।
1: जी मेरी एक छोटी सी याद है, उस जमाने में मैं विविध भारती बहुत सुना करता था और मुझे अभी तक याद है ये, उस जमाने में टेलीविजन तो था नहीं, तो 7:05 पे आप लोगों का प्रोग्राम शनिवार को जयमाला बजता है, तो वो सुनने के लिए मैंने रेडियो करीब 7 ऑन किया और मैंने रेडियो में ये सुना न्यूज में कि दस्तक ने उस साल के सारे अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स स्वीप कर लिए थे। संजीव कुमार साहब को बेस्ट एक्टर के लिए, रिहाना सुल्ताना साहिबा को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, मजरू साहब को बेस्ट लिरिक्स के लिए, मदन जी को म्यूजिक के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैंने डैड को, म्यूजिक रूम घर के सामने था, मैंने फोन किया उन्हें, मैंने कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस वक्त म्यूजिक सिटिंग में हूं। तो मैंने कहा नहीं, खबर बहुत अच्छी, मैं आपसे आके मिलना चाहता हूं और खबर इतनी अच्छी कि मैं आपसे ₹1,000 मांगना चाहता हूं, इस खबर के लिए आप मुझे ₹1,000 दें। तो उन्होंने कहा खबर अच्छी होगी तो मैं देखूंगा, नहीं तो तुम देखो तुम्हारी क्या हालत करता हूं, मैं बहुत बिजी हूं। तो मैं डरते डरते रोड क्रॉस करके मैं म्यूजिक रूम में गया और मैंने जब घंटी बजाई और उन्होंने कहा क्या है, तो मैं देखा कि कोने में रफी साहब बैठे हैं, राजेंद्र कृष्ण साहब बैठे थे वहां, उनकी किसी गाने की सिटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कि आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वो बड़े गुस्सा हो गए क्योंकि उन्होंने लगा कि मैं शायद उनके साथ मजाक कर रहा हूं। और उसी वक्त दरवाजे की घंटी फिर से बजी और उनके बड़े करीबी मित्र मरहूम जयदेव साहब दरवाजे पे खड़े थे, उनके हाथ में एक शैंपेन की बॉटल थी और उन्होंने कहा मदन मैंने भी अभी सुना है कि तुम्हें दस्तक के लिए अवार्ड मिला है और मैं तुम्हें मुबारकबाद।
0: इसकी एक वजह थी, वजह यह थी कि उन्हें तब तक कोई बड़ा अवार्ड मिला ही नहीं था और दस्तक 1970 में, मतलब 20 साल का करियर हो चुका था, तो थोड़ा वो निराश भी थे कि मुझे अवार्ड कभी मिलता ही नहीं। और फिर वो दिल्ली जाने से उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। तो संजीव कुमार जी, जिनको भी उस फिल्म के लिए एक्टर का अवार्ड मिला था, वो हमारे घर आए और उन्होंने उनको मनाया कि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर संजीव कुमार जी ने वही किस्म के दो सूट सिलवाए और मदन जी और संजीव कुमार ने वही दो सूट बोटाई के साथ एकदम जे सेम सूट्स पहन के दोनों साथ में उस फंक्शन के लिए गए।

लेकिन मैं जैसे कह रहा था, इसकी वजह ये थी कि पहले जब फिल्म फेयर अवार्ड, जो मेन अवार्ड उस वक्त कमर्शियल अवार्ड, पॉपुलर अवार्ड होता था जो वोट से होता था, उन्हें 3 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन अवार्ड नहीं मिला अनपढ़ 1962 में। उससे मुझे जुड़ी एक बात याद आ रही है कि हम छोटे थे, मैं 6 साल का था, तो मदन जी गाड़ी खुद चलाते थे, उनकी बहुत बड़ी गाड़ी होती थी जो पहचानी जाती थी कि ये मदन मोहन की गाड़ी है, क्योंकि बहुत स्पेशल रंग था गाड़ी का। तो वो जब हमें ड्राइव पे ले जा रहे थे, हम वर्ली सी फेस पे जा रहे थे और हम बच्चे थे, मैं जैसे कहा छोटा था, तो हम बोलते थे डैड तेज चलाओ तेज चलाओ, क्योंकि वर्ली सी फेस उस वक्त ट्रैफिक बहुत कम होता था। तो वो तेज चलाने लगे, आस्ते आस्ते पुलिस की सायरन्स

आवाज पीछे से आने लग गई। हम तो बच्चे थे, समझ नहीं आया कुछ, इतना घबरा गए कि पीछे पुलिस आ गई है। मेरी माता जी जो साथ में बैठी थी, भाई रोको गाड़ी, रोको, पुलिस आ रही है, क्या तुम इतने तेज से क्यों चला रहे हो। गाड़ी रोकी और पुलिस के इंस्पेक्टर थे, इनफैक्ट वो उस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर थे बहुत, और वो उतरे और उन्होंने कहा शीशा नीचे कीजिए। उन्होंने कहा मदन जी मैंने इसलिए आपको रोका है कि मैंने आपकी नजरों ने समझा गाना जो सुना है कमाल गाना है। और फिर वो चले गए और मेरे पिताजी ने माताजी की तरफ देख के कहा कि देखो मेरे लिए अवार्ड यही है।

0: संगीतकार मदन मोहन ने थोड़े समय तक फौज में नौकरी की थी। जब चेतन आनंद ने बनाई फिल्म हकीकत तो संगीत की जिम्मेदारी सौंपी मदन मोहन को और उन्होंने इस फिल्म में दिया बड़ा ही शानदार संगीत, जिसकी मिसाल है ये देशभक्ति गीत।
1: कर चले हम फिदा

दोस्तों, मदन मोहन न केवल सुरीले संगीतकार थे बल्कि उन्होंने सुरीला स्वर भी पाया था। वो खुद भी गाते थे। आकाशवाणी लखनऊ में काम करते हुए मदन मोहन ने संगीत के राग रागिनियों का भी रियाज और प्रयोग किया। इन राग रागिनियों का उन्होंने फिल्मी गानों में भी खूब प्रयोग किया।

सन 1975, जुलाई का भीगा भीगा मौसम, जुलाई के 14 तारीख को मदन मोहन ने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया।

0: शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम छाया गीत में। मैं हूं विधि जैन। रूठना मनाना, ये तो प्यार का ही रूप है। शायद वो रूठकर हक जताते हैं और हम मनाकर प्रेम। वो रूठते हैं तो उदास नहीं, प्यारे लगते हैं, और हम मनाते हैं तो बेसहारा लगते हैं। और सहारा देने को वो मान भी जाते हैं और फिर प्रेम अपना कुछ यूं दिखाते हैं।

ना यूं खामोशियों की ओट में खुद को छुपाइए, मेरी आंखों की बेचैनी जरा आकर पड़ जाइए। खता मुझसे हुई होगी मगर इतनी

हम जानते हैं वो दूर जा रहे हैं, पर मन से नहीं, बस इतरा रहे हैं। बुरा तो लग

लगा था हमारी बातों का उन्हें, पर अब लगता है बस यूं ही वो भाव खा रहे हैं। इसीलिए हमारी कलम ने लिखा कि चलो अब मुस्कुरा दो, ये गुस्सा छोड़ भी दो, मेरी खातिर अपनी जिद का रिश्ता तोड़ भी दो। जानती हूं ये रूठना बस बहाना है तुम्हारा, मुझसे और थोड़ा प्यार जताना है तुम्हारा।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे
0: हाँ सम

0: किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,

अंतराल के बाद पुनः स्वागत है कार्यक्रम छाया गीत में. हम बात कर रहे हैं रूठने की और मनाने की. और अगर प्रेयसी रूठ जाए और कारण पता ना हो तो, पर मनाना तो जरूरी होता है ना. और मनाने के लिए थोड़ी सी जरूरत तो की जा सकती है और थोड़ी सी मेहनत भी. तो कहती है कलम की, तेरी खामोशियों में भी सदाएं सुन रहा हूँ मैं, तेरे रुखसार पर ठहरी दुआएं चुन रहा हूँ मैं, जो तेरी आंखें बरसों से कह ना पाई मुझसे, उन्हीं अनकही बातों के अफसाने बुन रहा हूँ मैं.

किसी के रूठने से दिल तड़प जाता है, उसको मनाने के लिए भी दिल रह ही जाता है। रूठने मनाने के सिलसिले में कई सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और प्यार और मुस्कुराता है। कभी कभी रूठे दिल को देखकर तड़पन और मुस्कुराते देखकर मन की खुशी दोनों ही बड़ी खूबसूरत होती है। कहती है कलम कि मैं आपके नाम की खुशबू लिए फिरती हूँ सांसों में, मेरे एहसास की दुनिया में फिर से मुस्कुराइए। न जीत मेरी न आपकी मोहब्बत की हो बस, चलिए अब मान भी जाइए और मुझे गले लगाइए।

रूठना इजाजत देता है और करीब आने की, और ये मनाना इजाजत देता है फिर से मुस्कुराने की। ये रूठने मनाने के शिकवे के शिकायतों के इन पर्दों को धीरे धीरे हटाकर ही प्रेम का सुंदर रूप दिखाई देता है। रूठना मनाना इसकी भी एक हद होनी चाहिए, एक हद के बाद रूठे हुए को मान भी जाना चाहिए। और बस ऐसे ही जो रूठा

वो रूठ तो सकता है, यह उसका अधिकार है, पर मानना ये भी उसके काम में ही आता है। तो रूठिए पर जल्दी मान जाइए, इसीलिए तो कहा है कलम ने, ये जो रूठे हैं लब आपके, मौसम भी उदास है, बहारों की तरह फिर से मेरे आंगन में आइए। मैं अपने हर तर्क को अब प्रेम में बदल दूंगी, आप बस एक बार दिल से मुझे अपनाइए। नजर झुक झुक के कहती है बहुत कुछ आज भी, लेकिन मेरे अल्फाज से पहले मेरी धड़कन को पाइए। जो बीती बात थी उसको हवाओं में बिखरने दें, नए सपनों की चादर फिर मोहब्बत पर बिछाइए।

अब अगर रूठे तो जल्दी मान जाना, अगर शिकवे हो तो जल्दी से मिटा देना, क्योंकि जीवन मुस्कुराने के लिए है और साथ बिताने के लिए। रूठना मनाना एक पल का हो तो अच्छा है, अगर लंबा चले तो बड़ा दुखदाई। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, रूठे को मनाते रहिए, अगर कोई मनाए तो जल्दी से मानते रहिए। छाया गीत कार्यक्रम में आज इतना ही। अब आज्ञा दीजिए विधि जैन को। नमस्कार।

0: रोबीला और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हम वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन,
2: कौन आया?

FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी जोधपुर के FM सन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में होंगे, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और

0: विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमिर
2: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK-India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a three-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA, which will enter into force from 15th of next month. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
3: partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very highly strategic partnership, whether it comes to technology, investments, defense, and critical minerals. Our shared objective to fight against terrorism, our effort to bring global peace and stability, our joint effort in several multilateral